这里广播电台，听众朋友们，请收听拉达长的歌曲。

8:45 मिनट हुए हैं। आइए अब सुनते हैं श्री रामचरित मानस से संगीतमय प्रस्तुति। आज आप सुनेंगे बालकांड भाग 127।

बहुओं समेत चारों पुत्रों को देखकर माताएं परम आनंद मग्न हैं। वेद सम्मत विधियों तथा कुल की रीति के अनुसार वे अर्घ्य पावड़े देती नव विवाहित जोड़ियों को परिछन के लिए महल में ले चली। माताओं द्वारा लोक रीतियां संपन्न हुई। सभी भाइयों ने देवताओं तथा पितरों का पूजन किया। देवगण यद्यपि अदृश्य हैं, फिर भी मानो अंतरिक्ष से आशीर्वाद दे रहे हैं, और आनंदित माताएं उन आशीर्वचनों से अपने अपने आंचल भर ले रही हैं। जब गुरु तथा ब्राह्मणों समेत राजा दशरथ महल में पधारे तो रानियों ने आदर सहित सबके चरण धोए, उन्हें स्नान कराया गया और भली भांति पूजे जाकर उन्होंने भोजन किया। राजा ने गाधी पुत्र विश्वामित्र की विशेष रूप से पूजा करके अपने को धन्य माना।

0: षष्ट्यधिकद्वादशशतकोटि रूप्यकाणाम् अनुमोदनं प्रदत्तम्। नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् सूचनाप्रसारणमन्त्री अश्विनी वैष्णवः अवदत् यत् अनया परियोजनया आन्ध्रप्रदेशकर्णाटकयोः मध्ये रेलसम्पर्कः अधिकः सुदृढः भविष्यति।
1: आज अप्रूवल हुआ है गुंतकल से बिल्लारी थर्ड एंड फोर्थ लाइन और उसके आगे फिर होसपेट से हुबली थर्ड एंड फोर्थ लाइन का ऑलरेडी डीपीआर अंडर प्रिपरेशन है। ये करने से नॉर्थ कर्नाटका का एक कंप्लीट इकोनॉमिक कॉरिडोर बनता है। कर्नाटक आंध्र प्रदेश दोनों को जोड़ेगा। ये एक बड़ा मेजर ब्रिज है वेदावती रिवर पे और उसके अलावा 7 मेजर ब्रिजेस है, 52 माइनर ब्रिजेस है और 3 साल का ये प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन है।
0: तेन एतदपि सूचितं यत् देशे त्रयाणां रसायनोद्योगिक संकुलानां स्थापनाय भव्य इति भारतोद्योगिक विकास योजना रसायन इत्येषा योजना मन्त्रिमण्डलेन अनुमोदिता। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः रूमानिया देशस्य बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज इत्यनेन विश्वविद्यालयेन डॉक्टर ऑनरीस कौसा इति मानद विद्या वाचस्पति उपाधिना सम्मानिता। अयं सम्मानः तस्याः लोकसेवायां शिक्षाक्षेत्रे सामाजिक समावेशे च विशिष्ट योगदानस्य भारत रोमानिया देशयोः सम्बन्ध सुदृढीकरणे च मान्यता स्वरूपः प्रदत्तः। सम्मानम् अंगीकुर्वति राष्ट्रपतिः एतत् सम्माननं भारतस्य 1.4 अर्बुदजनेभ्यः समर्पितवती इति वार्ताः।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
2: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य
4: घर। क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। सरकार ने पेपर लीक रोकने और कड़ी सजा के प्रावधान वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। संसद में अगले सप्ताह विधेयक पेश किए जाने की संभावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक रोकने के लिए प्रस्तावित सुधारों पर अपने वीडियो पर युवाओं से मिले सुझावों के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। कहा, आपसी संबंध और अधिक घनिष्ठता के साथ आगे बढ़ेंगे। सरकार और सीजेपी के प्रतिनिधियों के बीच आज नई दिल्ली में तीसरे दौर की वार्ता होगी। भारत ने काला सागर में वाणिज्यिक जहाज एमवी ओमर्फी पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। हमले में एक भारतीय नाविक की मौत। मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा और ओडिशा के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को पहला पदक मिला। झंडू कुमार पैरा भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतें बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी है। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। श्री मोदी ने बृहस्पतिवार को एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
6: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इस पे कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठगंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं, हम लोग को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए देश के युवाओं को धन्यवाद दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने युवाओं के जबरदस्त समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया।
7: थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू।
5: वीडियो को अब तक 30 करोड़ 30 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है। ये पहले 24 घंटों में सबसे अधिक देखा जाने वाला वीडियो है। सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों से जुड़ी मांगों को लेकर

0: कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल के साथ आज एक और दौर की बातचीत करेगी। इससे पहले कल भी नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह ने सीजेपी प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की थी, जिसके बाद श्री नड्डा ने बताया कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार को लेकर सीजेपी की मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया है। उन्होंने बताया कि सीजेपी ने तीन प्रमुख मांगे रखी हैं और पेपर लीक रोकने के लिए कुछ सुझाव भी दिए हैं।
1: बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई। उनकी मुख्यतः तीन डिमांड थी और पांच शामिल हुए।
0: दिल्ली पुलिस ने पेपर लीक और परीक्षा संबंधी अन्य अपराधों की जांच के लिए एक विशेष कार्यबल एसटीएफ का गठन किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये कार्यबल लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत आता है।
2: दिल्ली पुलिस ने कहा है कि अलग अलग प्राधिकारियों की ओर से आयोजित होने वाली पब्लिक परीक्षाओं से जुड़े अपराधों की जांच तेजी से और पेशेवर तरीके से विशेष कार्यबल द्वारा की जाएगी। इनमें संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड, बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के साथ साथ केंद्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग और स्टाफ के भर्ती के लिए उनसे जुड़े हुए और अधीनस्थ कार्यालय शामिल है। जाँच के अलावा विशेष कार्यबल मुकदमा चलाने वाली एजेंसियों के साथ बेहतर तालमेल भी बनाए रखेगी ताकि तेजी से मुकदमा चलाया जा सके और ये पक्का किया जा सके कि ऐसे मामलों में सुनवाई रोजाना हो। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। एनटीए ने महाप्रबंधक स्तर के वरिष्ठ पेशेवर पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन प्रकाशित किए हैं। संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिभा सेतु पोर्टल द्वारा 16 युवा पेशेवरों की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर लगातार हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने बताया है कि सुरक्षा कारणों से आज सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 18 स्टेशन बंद हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
4: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रोमानिया के बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उनकी विशिष्ट सार्वजनिक सेवा, शिक्षा और सामाजिक समावेश के प्रति प्रतिबद्धता तथा भारत रोमानिया संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। राष्ट्रपति ने सम्मान स्वीकार करते हुए इसे भारत की जनता को समर्पित किया और कहा कि ये दोनों देशों के लोगों के बीच अटूट मित्रता को दर्शाता है। राष्ट्रपति ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तकनीकी परिवर्तन के इस युग में विश्वविद्यालयों की जिम्मेदारी है कि वे ये सुनिश्चित करें कि ज्ञान का मार्गदर्शन विवेक, नैतिकता और करुणा द्वारा किया जाए।
2: टुडे एज द वर्ल्ड इज बीइंग रिसेप्ट बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल टेक्नोलॉजीज एंड अदर रैपिड साइंटिफिक एडवांसेस, यूनिवर्सिटीज लाइक दिस हैज इवन ग्रेटर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू एंश्योर दैट नॉलेज इज गाइडेड बाय विजडम, ethics and compassion. India's national education policy

0: reflects this vision by promoting innovation, research, creativity, and international academic collaboration.
1: भारत सरकार ने कहा है कि सिंधु जल संधि तब तक स्थगित रहेगी जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान के उन मीडिया दावों को खारिज किया जिनमें भारत पर जानबूझकर बाढ़ लाने का आरोप लगाया गया था।
2: रिसेंट इंक्रीज इन फ्लोज
3: चिनाब नदी में जल प्रवाह में हालिया वृद्धि 20 से 23 जुलाई के दौरान जम्मू और आसपास के जलग्रहण क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश का परिणाम है। नदी के जल प्रवाह में वृद्धि एक प्राकृतिक जल वैज्ञानिक प्रतिक्रिया है और ये भारत द्वारा जानबूझकर किए गए किसी भी प्रयास का परिणाम नहीं है।
2: नॉट द रिजल्ट ऑफ एनी डेलिबरेट एक्शन बाय इंडिया।
1: भारत ने काला सागर में वाणिज्यिक पोत एमवी ओमोफ्री पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। हमले को अस्वीकार्य बताते हुए भारत ने सभी संबंधित पक्षों से समुद्री नौवहन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 18 जुलाई को काला सागर से गुजरते समय पोत पर हमला हुआ। हमले में एक भारतीय नाविक की मृत्यु हो गई। पोत पर 3 भारतीय नागरिकों सहित चालक दल के 10 सदस्य सवार थे। अन्य 2 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने आज पुष्टि की कि मोजाम्बिक ध्वज वाले एलपीजी टैंकर दिशा पर ईरानी जल क्षेत्र में हुए हमले के बाद जहाज पर सवार भारतीय चालक दल के सभी 28 सदस्य सुरक्षित हैं। दूतावास ने आधिकारिक बयान में एलपीजी टैंकर से जुड़ी घटना की पुष्टि की और कहा कि चालक दल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वो स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में हैं। लद्दाख के द्रास में स्थित करगिल युद्ध स्मारक ऑपरेशन विजय में भारत की जीत की स्मृति में मनाए जाने वाले 27वें करगिल विजय दिवस के भव्य समारोहों की मेजबानी के लिए पूरी तरह से तैयार है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: द्रास का कारगिल वॉर मेमोरियल 27वें कारगिल विजय दिवस समारोह के लिए पूरी तरह से तैयार है। शहीदों की याद में बनाए गए इस स्मारक को विशेष रूप से सजाया गया है। 2 दिवसीय समारोह का आगाज आज युद्ध संस्मरण गौरव में संस्कृति और शौर्य संध्या जैसे कार्यक्रमों के साथ हो रहा है। कल 26 जुलाई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के रूप में श्रद्धांजलि समारोह में शामिल होंगे। द्रास कारगिल से आकाशवाणी समाचार के लिए मैं इनायत अली।
1: मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज बहुत तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, दक्षिण आंध्र कर्नाटक और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी आज मध्यम से तेज बारिश की संभावना है। असम में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। राज्य में 1,15,000 से अधिक लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली है। राज्य में बाढ़ से मरने वालों की कुल संख्या 61 हो गई है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने अपना पहला पदक जीत लिया है। झंडू कुमार ने पैरा भारोत्तोलन की पुरुष हैवीवेट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा T20 मैच आज शाम 4:30 बजे से हरारे में खेला जाएगा। भारत के स्क्वाश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने कनाडा के ओंटारियो में विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स फाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया है। सेमीफाइनल में अनाहत ने मिस्र के बाब सामे को 3-1 से हराया। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
5: धन्यवाद कनक। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के 47 अधिकारियों को बर्खास्त किए जाने की खबर आज के अखबारों की पहली सुर्खी है। हिंदुस्तान ने इसे नीट को लेकर सरकार की बड़ी कार्रवाई बताया है। अमर उजाला लिखता है आक्रोश का असर, NTA से 47 अफसर बर्खास्त। नवभारत टाइम्स की हेडलाइन है पेपर लीक पर होगा 10 करोड़ रूपये जुर्माना, 10 साल की सजा। संशोधन बिल को कैबिनेट की मंजूरी, कड़ी सजा का प्रस्ताव। दैनिक जागरण कहता है कानून बदला, कार्रवाई हुई, फिर भी CJP टस से मस नहीं। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर अटकी बात। दैनिक भास्कर ने लिखा है कानून में संशोधन को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी, NTA में बदलाव की तैयारी। राजस्थान पत्रिका ने इसे बवाल थामने का प्रयास बताया है। नवभारत टाइम्स ने NTA पेपर लीक बिल में संशोधन पर अपने संपादकीय में लिखा है सरकार तेजी से निर्णय लेकर छात्रों को यकीन दिलाने का प्रयास कर रही है कि उनकी आवाज अनसुनी नहीं रह गई है। पत्र लिखता है केंद्र द्वारा नीट में किए जा रहे सुधारों की सर्वोच्च न्यायालय लगातार निगरानी करेगा। छात्र अब मूलभूत बदलाव चाहते हैं और शीर्ष अदालत की निगरानी से

0: ब्रिक्स में मदद मिलेगी। सोशल मीडिया प्रसारण को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला जनसत्ता में सबसे ऊपर है। अनुमति के बिना कार्यवाही को पोस्ट करने पर रोक। लोकसत्य लिखता है, सोशल मीडिया पर नहीं डाल पाएंगे कोर्ट की वीडियो। कक्षा 6 से 8 में कौशल शिक्षा अनिवार्य करने के केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के निर्देश को भी पत्र ने स्थान दिया है। अमरीका द्वारा भारत से आयातित वस्तुओं पर 10% शुल्क लगाए जाने को राजस्थान पत्रिका ने ट्रंप का नया दांव बताया है।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने पेपर लीक रोकने और कड़ी सजा के प्रावधान वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। संसद में अगले सप्ताह विधेयक पेश किए जाने की संभावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक रोकने के लिए प्रस्तावित सुधारों पर अपने वीडियो पर युवाओं से मिले सुझावों के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। सरकार और सीजेपी के प्रतिनिधियों के बीच आज नई दिल्ली में तीसरे दौर की वार्ता होगी। और ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को पहला पदक मिला। झंडू कुमार ने पुरुषों के हेवीवेट पैरा भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस। गवर्नमेंट अप्रूव्स एंटी पेपर लीक्स ड्राफ्ट बिल फॉर स्ट्रिक्टर पनिशमेंट। लेजिस्लेशन लाइकली टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट नेक्स्ट वीक। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी थैंक्स यंगस्टर्स फॉर द सजेशंस टू हिज वीडियो ऑन प्रपोज्ड रिफॉर्म्स against paper leaks issue, says relations will continue with more bonding. Government and CJP to hold third round of talks today. President Draupadi Murmu conferred Dr. Honoris Causa in Romania for a distinguished public service. New Delhi strongly condemns attack on commercial vessel in the Black Sea, claiming life of an Indian seafarer. Heavy rainfall expected in parts of Gujarat, Konkan, Goa and Odisha. And in Commonwealth Games, Jhandu Kumar clinches bronze medal for India in the men's heavyweight para powerlifting. President Draupadi Murmu was conferred the honorary title of Doctor Honoris Causa by the Bucharest University of Economic Studies in Romania in recognition of a distinguished public service, commitment to education and social inclusion, and contribution to strengthening India-Romania relations. The Union Cabinet has approved a draft bill to set up fast-track courts and to ensure stricter punishment in cases of paper leaks and exam malpractices. The Cabinet meeting chaired by Prime Minister Narendra Modi at the Parliament House complex approved the draft bill. Sources told Akashvani News that the proposed legislation is expected to be introduced in the Parliament next week. The National Testing Agency NTA has issued advertisements for a set of senior professional appointments at the level of general manager. It has also opened the engagement of 16 young professionals through the Pratibha Setu portal of the Union Public Service Commission. The NTA in a statement said that these measures represent the first concrete step in the institutional rebuild of the agency that has been implemented in line with the recommendations of the higher level committee of experts chaired by Professor K. Radhakrishnan. NTA has notified 4 positions for general manager on contract, each for an initial term of 3 years. It said that the engagement of young professionals has been undertaken for the first time. Prime Minister Narendra Modi thanked everyone for the responses and positive suggestions received to his video, where he announced the government's decision to bring a strict law to punish those involved in paper leaks. In the video message, Modi said that the new bill incorporating provisions for strong action against paper leaks will be introduced in the ongoing session of Parliament next week. The draft bill, as announced by the Prime Minister in the Instagram video shared by him, was approved by the Union Cabinet yesterday. In a fresh video message released through his Instagram handle yesterday, Mr. Modi said the relations will continue with more bonding.
3: Thank you, friends. मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा।
2: Mr. Modi created a new world record with the most views on a reel in 24 hours, garnering 303 million views as of now. The earlier record was 300 million views. Delhi Police has constituted a special task force, STF, to investigate offences relating to paper leaks and other examination-related offences under the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2020.

0: Vishwanathan Anand becomes FIDE interim president, reports a pioneer. Jurgen Klopp named new Germany football coach, informs Hindustan Times. And finally, spectacular cultural mix gives Commonwealth Games a fresh start, writes the Asian Age. And with that, it's back to you, Abhishek.
1: Thank you, Subhadra. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Government approves anti-paper leaks draft bill for stricter punishment. Legislation likely to be introduced in Parliament next week. Prime Minister Narendra Modi thanks youngsters for the suggestions to his video on proposed reforms against paper leaks issue, says relations will continue with more bonding. Government and CJP to hold third round of talks today. President Draupadi Murmu conferred Dr. Honoris Causa in Romania for a distinguished public service. New Delhi strongly condemns attack on commercial vessel in the Black Sea, claiming life of an Indian seafarer. Heavy rainfall expected in parts of Gujarat, Konkan, Goa and Odisha. And in the Commonwealth Games, Jhandu Kumar clinches bronze medal for India in the men's heavyweight para powerlifting. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खबरें। हुकूमत ने पेपर लीक वाकयात की रोकथाम के लिए ज्यादा सख्त सजा से मुतालिक बिल के मसौदे को मंजूरी दे दी है। उम्मीद है कि यह बिल पार्लियामेंट में अगले हफ्ते पेश किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नौजवानों का शुक्रिया अदा किया है कि उन्होंने पेपर लीक वाकयात की रोकथाम के लिए मुजवजा इस्लाहात से मुतालिक उनके वीडियो पर तजावीज पेश की हैं। उन्होंने कहा कि ये ताल्लुकात मजीद मजबूती के साथ ताल्लुकात जारी रहेंगे। हुकूमत और CJP आज तीसरी बार बातचीत करेगी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को उनकी इम्तियाजी अवामी खिदमात पर रोमानिया ने डॉक्टर ऑनरिस कोजा के खिताब से नवाजा है। भारत ने बहरे अस्वद में कमर्शियल जहाज पर किए गए हमले की सख्त मजम्मत की है, जिसमें एक भारतीय मल्लाह की मौत हो गई थी। गुजरात, कोंकण, गोवा और उड़ीसा के कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। और दौलत मुश्तरका खेलों में झंडू कुमार ने मर्दों के हैवी वेट पैरा पावर लिफ्टिंग मुकाबले में भारत की तरफ से कांसे का तमगा हासिल किया है। अब खबरें तफसील से। मरकजी काबीना ने तेजी से काम करने वाली अदालतें कायम करने और पेपर लीक से निमटने और इम्तिहान में गलत तौर तरीके अपनाने पर सख्त सजा को यकीनी बनाने से मुतालिक बिल के एक मसौदे को मंजूरी दे दी है। पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सदारत में बिल के इस मसौदे को मंजूर किया गया। जराए ने हमारे नामनिगार को बताया कि उम्मीद है कि यह मुजवजा बिल पार्लियामेंट में अगले हफ्ते पेश किया जाएगा। इसी दौरान इम्तिहान के निजाम में इस्लाहात करने की एक बड़ी कोशिश के तौर पर इम्तिहानात का इनेकाद कराने वाली एजेंसी NTA ने 47 अफसरान को बर्खास्त कर दिया। जराए के मुताबिक इनमें से कुछ एहलकारों के खिलाफ कानूनी और फौजदारी कार्रवाई भी की जाएगी। ये इकदाम NTA में मुकम्मल तौर पर तब्दीली लाने का एक हिस्सा है। इम्तिहानात मुनाकिद कराने से मुतालिक कौमी एजेंसी NTA ने जनरल मैनेजर की सतह पर सीनियर पेशावर अफराद के तकरूर के लिए इश्तहारात जारी किए हैं। उसने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के पोर्टल प्रतिभू सेतु के जरिए 16 नौजवान पेशावर अफराद की खिदमात हासिल करने के लिए भी दरख्वास्त तलब की है। NTA ने एक बयान में कहा है कि इन इकदाम से एजेंसी की इदारा जाती तश्कील 9 के पहले इकदाम की अक्कासी होती है। NTA ने कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर 4 जनरल मैनेजर के ओहदों को नोटिफाई किया है, जिनमें से हर एक की इब्तदाई मुद्दत 3 साल मुकर्रर की गई है। उसने बताया कि नौजवान पेशावर अफराद की पहली मर्तबा खिदमात हासिल की जा रही है। दिल्ली पुलिस ने पेपर लीक के वाकयात और इम्तिहान से मुतालिक दीगर जराइम की तहकीकात के लिए एक खसूसी टास्क फोर्स STF तश्कील दी है। ये टास्क फोर्स सरकारी इम्तिहानात में नाजायज तौर तरीकों की रोकथाम से मुतालिक 2024 के कानून के तहत तश्कील दी गई है। तफसील हमारे नामनिगार से।
3: दिल्ली पुलिस ने एक बयान में कहा है कि यह टास्क फोर्स मुख्तलिफ अथॉरिटीज़ के जरिए मुनक़िद कराए जाने वाले सरकारी इम्तहानात से मुतालिक जराइम की फौरी पेशावराना और जामे तहकीकात कराएगी। इन इम्तहानात में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, रेलवे भर्ती बोर्ड्स, बैंकिंग अमले के इंतखाब का इदारा, इम्तहानात का इनेकाद कराने वाली कौमी एजेंसी और मरकजी हुकूमत की इदारतें

0: और महकमे नीज अमले की भर्ती के लिए इनसे मुंसलिक और ज़ेरी दफातर शामिल हैं। तहकीकात के अलावा ये खुसूसी टास्क फोर्स मुकदमा चलाने वाली एजेंसियों के साथ मुअसर तालमेल रखेगी ताकि इस तरह के मुकदमात में तेज़ी लाने के लिए रोज़ाना समात को यकीनी बनाया जा सके। शिवांग मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर।
1: दिल्ली पुलिस ने पेपर लीक के वाकयात और इम्तिहान से मुतालिक दीगर जराइम की तहकीकात के लिए एक खुसूसी टास्क फोर्स STF तश्कील दी है। ये टास्क फोर्स सरकारी इम्तिहानात में नाजायज तरीकों की रोकथाम से मुतालिक 2024 के कानून के तहत तश्कील दी गई है। दिल्ली पुलिस ने एक बयान में कहा कि ये टास्क फोर्स मुख्तलिफ अथॉरिटीज के जरिए मुनक़िद कराए जाने वाले सरकारी इम्तिहानात से मुतालिक जराइम की फौरी पेशावराना और जामे तहकीकात कराएगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो से मुतालिक मौसूला मुस्बत रद्दअमल और तजावीज़ पर हरेक का शुक्रिया अदा किया है, जिसमें उन्होंने पेपर लीक मामले में मुलव्वस अफराद को सजा देने का एक सख्त कानून तश्कील देने की हुकूमत के फैसले का ऐलान किया था। एक वीडियो पैगाम में जनाब मोदी ने कहा कि पेपर लीक मामलात की रोकथाम के लिए सख्त कार्रवाई से मुतालिक शिकों को शामिल करते हुए एक नया बिल अगले हफ्ते पार्लियामेंट के इस इजलास में पेश किया जाएगा। बिल के इस मुसवदे को कल मरकजी काबीना ने मंजूरी दी। इस मुसवदे का ऐलान वजीर आजम ने अपने एक इंस्टाग्राम वीडियो में किया था। जनाब मोदी ने एक ताज़ा वीडियो पैगाम में, जो उनके इंस्टाग्राम हैंडल से कल जारी किया गया है, कहा कि ये ताल्लुकात मजीद मजबूती के साथ जारी रहेंगे।
2: थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा।
1: हुकूमत इम्तिहान के निजाम में इस्लाहात और पेपर लीक की रोकथाम के इकदाम के CJP के मुतालबात पर आज इसके वफद के साथ एक बार फिर बातचीत करेगी। इससे पहले मरकजी वजरा JP नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में CJP वफद से मुलाकात की थी। मीटिंग के बाद नामा निगारों से बात करते हुए जनाब नड्डा ने कहा कि मीटिंग के दौरान उन्होंने इम्तिहान के निजाम में इस्लाहात के बारे में CJP के मुतालबात को पूरे सब्र तहमुल के साथ सुना। जनाब नड्डा ने कहा कि CJP ने तीन असल मुतालबात सामने रखे और इम्तिहान पेपर लीक पर काबू पाने के लिए इस्लाहात की कुछ तजावीज पेश की।
3: बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई। उनकी मुख्यतः तीन डिमांड थी और पांच शामिल।
1: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को उनकी मुमताज अवामी खिदमत, तालीम और समाजी शमूलियत के लिए उनकी अहदबस्तगी और भारत रोमानिया ताल्लुकात को मजबूत बनाने में उनके ताउन के एतराफ़ में रोमानिया की बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज़ की जानिब से डॉक्टर ऑनरिस कोजा के एजाजी खिताब से नवाजा गया है। इस एजाज़ को कबूल करते हुए सदर जमहूरिया ने यह अवार्ड भारत के 140 करोड़ लोगों के नाम वक्फ किया और कहा कि ये दोनों ममालिक के अवाम के दरमियान देरीना दोस्ती की अक्कासी है। भारत और रोमानिया के दरमियान गहरे सकाफती और तहजीबी ताल्लुकात पर रोशनी डालते हुए सदर जमहूरिया मुर्मू ने एक सदी कबल रविंद्रनाथ टैगोर के दौरे बुखारेस्ट को याद किया। उन्होंने मुश्तरका तहकीकी फैकल्टी और तलबा के तबादलों के जरिए मजीद तालीमी तआवुन की हौसला अफजाई की और ऐलान किया कि भारत ने रोमानिया के लिए ITEC ट्रेनिंग स्लॉट्स को दोगुना कर दिया है।
4: For decades, Romanian universities have welcomed Indian students, particularly in medicine, engineering, and technology. I would encourage Romanian educational institutions to deepen cooperation through joint research and faculty and student exchanges. I hope that my visit will lead to new academic partnerships and encourage more students and researchers from Romania to engage with India.
1: मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
5: बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज़ में माहौल गर्मजोशी, वक़ार और मसरत से भरपूर था, क्योंकि वहां सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को यूनिवर्सिटी का अहम एजाजी डॉक्टरेट का खिताब पेश किया गया। अजीमुशान ऑडिटोरियम में एकेडमिक रोप में मलबूस फैकल्टी मेम्बरान, तलबा, सफारतकारों और मुमताज़ मेहमानों से भरा हुआ था, जिन्होंने खड़े होकर सदर जमहूरिया का पुरजोश इस्तकबाल किया। ये तकरीब सिर्फ एक तालीमी तकरीब नहीं थी, बल्कि भारत और रोमानिया के दरमियान बढ़ती हुई दोस्ती का जश्न भी थी, जिसमें बामी एहतराम और उम्मीद का जज्बा पूरा हॉल महसूस कर रहा था। रोमानिया से सुभाश्री महापात्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
1: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है।

0: भारत ने बहरे अस्वद में कमर्शियल एमवी ओमोर्फी जहाज पर हमले की सख्त मजम्मत की है, जिसमें एक भारतीय शहरी की मौत हो गई थी। भारत ने तिजारती जहाजों पर किए जाने वाले हमलों को नाकाबिले कबूल करार दिया और सभी मुतालिका फरीकों से कहा है कि वो समंदर में आबदोरफ्त और बैन अलाक्वामी तिजारत की हिफाजत को यकीनी बनाएं। वजारत खारजा के तर्जुमान इस जहाज पर 18 जुलाई को हमला किया था। वजारत खारजा के मुताबिक इस जहाज पर 18 जुलाई को हमला किया गया था, जब यह जहाज बहरे अस्वद से गुजर रहा था। इस जहाज में अमले के 10 अफराद सवार थे, जिनमें 3 भारतीय शहरी भी थे। वजारत खारजा ने बताया कि इस हमले में 1 भारतीय मल्लाह की जान चली गई और 2 भारतीय बाशिंदे जहाज में महफूज हैं। वजारत ने एक बयान में मुतासरा कुनबों से ताजियत का इजहार किया है और कहा है कि भारत तिजारती जहाजों को निशाना बनाकर किए गए इस तरह के हमलों और अमले के बेकसूर अरकान की जिंदगियों को जोखम में डालने की वाजह तौर पर सख्त मजम्मत करता है। ईरान की हदूद में मोजम्बिक के परचमबरदार एलपीजी टैंकर दिशा पर हुए हमले के बाद इसमें सवार अमले के तमाम 28 भारतीय महफूज हैं। तेहरान में भारतीय सिफारतखाने ने इसकी तस्दीक की है और एलपीजी टैंकर दिशा के साथ पेश आने वाले वाकये की बात तस्लीम की है। एक सरकारी बयान में सिफारतखाने ने कहा है कि वो अमले की खैर वाफियत को यकीनी बनाने के लिए मकामी अफसरान के साथ राबते में है। हुकूमत ने कहा है कि वादी सिंध का समझौता उस वक्त तक इल्तवा में रहेगा जब तक पाकिस्तान सरहद पार की जाने वाली दहशतगर्दी की हिमायत से बाज नहीं आ जाता। नई दिल्ली में नामनिगारों से बात करते हुए वजारत खारजा के तर्जमान रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तानी मीडिया की इन खबरों को मुस्तरद कर दिया कि भारत पड़ोसी मुल्क में जानबूझकर सैलाब की सूरत हल पैदा कर रहा है। कल वजीर दिफा राजनाथ सिंह श्रद्धांजलि समारोह में बहैसियत मेहमान खसूसी शिरकत करेंगे। तफसील हमारे नामनिगार से।
1: द्रास में वाकई कारगिल वॉर मेमोरियल 27वीं कारगिल विजय दिवस की तकरीबात की तैयारियों की तकमील के बाद पुरवकार और पुरजोश मंजर पेश कर रहा है। 2 रोजा यादगारी तकरीबात का आगाज आज से हो रहा है, जबकि कल वजीर दिफा राजनाथ सिंह ऑपरेशन विजय के शोधा को खिराज अकीदत पेश करने में कौम की क्यादत करेंगे। हजारों विजिटर साबिक फौजियों शोधा के अहलखाना और फौजी एहलकारों की इन यादगारी तकरीबात में शिरकत की तवक्को है। ये तकरीबात 1999 की कारगिल जंग के दौरान भारतीय मुसल्ला फौज की गैर मामूली शुजात हिम्मत और अजीम कुर्बानी को एक अजीम शान खिराज अकीदत हैं। कारगिल से इनायत अली रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
0: ग्लासगो में 2026 के दौलत मुश्तरक खेलों में भारत ने मेडल जीतने का आगाज कर दिया है। झंडू कुमार ने मर्दों के हैवी वेट पैरा पावर लिफ्टिंग में कांसे का तमगा हासिल किया। उन्होंने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए दूसरी कोशिश में 190 किलोग्राम वजन उठाया। इस तरह उन्होंने 130.9 पॉइंट्स के साथ कांसे का तमगा हासिल किया। मर्दों के क्रिकेट में आज हरारे में भारत 3 मैच की T20 सीरीज के दूसरे मैच में मेजबान जिम्बाब्वे से मुकाबला करेगा। यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 4:30 बजे शुरू होगा। भारतीय टीम को सीरीज में 1-0 से सबकत हासिल है। उसने जुमेरात को पहले मैच में 7 विकेट से जीत हासिल की थी। भारत की स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने आज सुबह कनाडा के ओंटारियो में मिस्र की बार्ब समय को सेमीफाइनल में 3-1 से हराकर आलमी जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के खवातीन सिंगल्स के फाइनल में पहुंचकर तारीख रकम की है। भारत की 18 साला अनाहत इस अहम जूनियर मुकाबले के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने मुत्तला किया है कि कौमी राजधानी में सिक्योरिटी के सबब 18 स्टेशनों को सुबह 7:30 बजे से दूसरी हिदायत जारी होने तक कल बंद कर दिया गया है। इनमें राजीव चौक, पटेल चौक, नई दिल्ली सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, आईटीओ, मंडी हाउस, सुप्रीम कोर्ट और दीगर स्टेशन शामिल हैं। अलबत्ता DMRC ने वाजे किया है कि राजीव चौक, मंडी हाउस और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पर ट्रेन तब्दीली की सहूलियात बरकरार रहेंगी। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं मुजीब अख्तर।
2: शुक्रिया असलम। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर अखबारों ने पेपर लीक मामले में कसूरवार को सख्त सजा दिए जाने वाले तरमीम बिल के मसौदे को काबीना की तरफ से मंजूरी मिलने की खबर को सुर्खी बनाया है, जिसमें कसूरवारों को 10 साल की जेल और 10 करोड़ रुपए जुर्माने का इल्तिजाम रखा गया है। रोजामा प्रताप ने पेपर लीक मामले में NTA के 47 अफसरों को बर्खास्त किए जाने की खबर को जली सुर्खी के साथ शाया किया है। रिपोर्ट के मुताबिक NTA इंतजामिया में गड़बड़ियों की शिकायतों के बाद ये बड़ा कदम उठाया गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल रात एक वीडियो पैगाम

0: अदा किया है कि उन्होंने पेपर लीक वाकयात की रोकथाम के लिए मुजवजा असलाहत से मुतालिक उनके वीडियो पर तजावीज़ पेश की हैं। उन्होंने कहा कि ये ताल्लुकात मजीद मजबूती के साथ जारी रहेंगे। हुकूमत और CJP आज तीसरी बार बातचीत करेगी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को उनकी इम्तियाजी अवामी खिदमात पर रोमानिया ने डॉक्टर ऑनरिस कोजा के खिताब से नवाजा है। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।
1: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर। 8:45 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम हमारी सेहत।
2: स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत में स्वीकार करिए अपने दोस्त शालिनी मित्तल का नमस्कार। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे एक परिचर्चा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं डॉक्टर जवाहरलाल जैन।
3: श्रोताओं नमस्कार। हर वर्ष 25 जुलाई विश्व डूबना रोकथाम दिवस के रूप में मनाया जाता है और एक खास विषय या थीम पर केंद्रित है और इस वर्ष का थीम है एकजुट होकर इस स्थिति को बदलना, यूनाइट टू टर्न द टाइड ऑन ड्राउनिंग। श्रोताओं विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 2025 से 2035 तक इस विषय पर एक रणनीति, एक स्ट्रेटजी बनी है और एक अभियान की व्यवस्थित की जा रही है जिसमें समुदाय, सर्वाइवर्स, कम्युनिटी, बिहेवियर चेंजेस, हाउ टू इम्प्रूव वाटर सेफ्टी का कंसेप्ट है और उसका जिक्र है। डूबना जैसी विश्वव्यापी समस्या पर एक विशेष परिचर्चा के लिए आमंत्रित विशेषज्ञों से आपका परिचय करा दूं। हमारे आमंत्रित विशेषज्ञ हैं डॉक्टर बीके राव जो कि चेयरमैन हैं क्रिटिकल केयर मेडिसिन सर गंगाराम हॉस्पिटल न्यू दिल्ली और भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित हैं। हमारी दूसरी विशेषज्ञ हैं प्रोफेसर डॉक्टर मीनाक्षी पाहुजा जो कि प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन लेडी श्रीराम कॉलेज ऑफ वुमेन दिल्ली यूनिवर्सिटी और एक इंटरनेशनल स्विमर हैं। और हमारे तीसरे विशेषज्ञ हैं मिस्टर रणवीर शर्मा जो कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी भारतीय खेल प्राधिकरण के स्विमिंग कोच हैं और काफी बार इंडियन टीम के साथ बाहर जा चुके हैं। डॉक्टर राव सबसे पहले तो आपसे मैं ये समझना चाहूंगा क्योंकि आजकल रोजाना अखबारों में कभी भी रोज खबर सुनने को मिलती है, क्या ये जो डूबने वाली जो प्रॉब्लम है क्या ये मेडिकल प्रॉब्लम है या ये पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है, आपकी राय?
4: अगर जो न्यूज में आता है वो अधिकतर डेथ होती है, इतने लोग मर गए, अगर डेथ की बात करो तो ये मेडिकल प्रॉब्लम है। लेकिन अदरवाइज अगर ड्राउनिंग की आप बात करते हैं तो वो एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है, एक सोशल प्रॉब्लम है, क्योंकि ड्राउनिंग का असली अगर आप हैंडल करें इसको या कम करना चाहें तो प्रिवेंशन इसका असली आंसर है। मेडिकल केयर कंट्रीब्यूट करती है उसकी रिकवरी में या उसको आगे क्या होगा डूबने के बाद। डूबना किसे कहते हैं
3: रणबीर जी? जैसा डॉक्टर राव कह रहे हैं डूबना किसे कहते हैं, और एक अनुमान के अनुसार हर वर्ष भारत में 30,000 लोगों की डेथ होती है ड्राउनिंग से और दुनिया का सबसे ज्यादा ग्लोबली इंडिया की फिगर्स हाईएस्ट है, उसके बाद में गुआना आता है साउथ अमेरिका। तो क्या ये जो ड्राउनिंग है आप किसको कहते हैं डूबना?
5: सर देखिए जो डूबना जो वर्ड है उसमें जब हम जो हमारी एक्टिविटी को कवर करने के लिए जब हमारा जो पानी है जो हमारे शरीर में जाने के बाद हमारी जब एक्टिविटी बंद हो जाती, क्योंकि जब आदमी पूरा डूब जाता है या फिर जब उसकी एक्टिविटी बंद हो जाती है पूरी बॉडी में पानी चला जाता है ऑटोमेटिकली वो फ्लोट पे आ जाता है। उस फ्लोटिंग से पहले का जो फेज होता है जिसमें हम डीपली जाते जाते पूरे डीप चले जाते हैं उस कंडीशंस को हम डूबना कहते हैं जहां हमारी एक्टिविटी एकदम से बंद हो जाती है।
3: डॉक्टर मीनाक्षी जैसा कह रहे हैं डूबने की समस्या निश्चित रूप से गंभीर है और आप इंटरनेशनल स्विमर है, इंग्लिश चैनल आपने पार किया, लेक ज्यूरिच आपने पार किया, अब ये बताइए मुझे कि डूबने के कारण क्या है? कैसा कहते हैं कि साहब एक छोटा बच्चा भी डूब सकता है, जो एक साल से कम है वो टब में डूब गया या बाथ सिंक में डूब गया और या बाल्टी में डूब गया, एक साल से चार साल के बच्चे हैं वो घर में लोगों ने स्विमिंग पूल बना रखे हैं वो उसमें डूब गया, तो आप क्या समझते हैं ये स्विमिंग जो इतना छोटा बच्चा कैसे डूब जाता है, रिस्क फैक्टर्स क्या है? शुरुआत इससे करें करेंगे, फिर बात करेंगे कि हम क्या स्कूल्स में या कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटी में स्विमिंग पूल की व्यवस्था या सुविधाएं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, और स्विमिंग हर एक को सीखनी चाहिए, क्योंकि क्या हम स्विमिंग को एक एक्सरसाइज माने, स्विमिंग को एक स्पोर्ट्स माने, स्विमिंग को एक थेरेपी माने, आप क्या कहेंगे?
6: डॉक्टर जवाहरजन, आपका सवाल बहुत दुरुस्त है, बट ये मैं आपको पार्ट्स में इसका आंसर देना चाहूंगी। जैसे कि आप रिस्क फैक्टर की बात कर रहे हैं, देखिए जब छोटे बच्चे होते

0: हैं वो जरा से भी पानी के भाव में, जैसे आप छोटे स्विमिंग पूल में भी लेके गए, ये मान लिया आपने कि 2 फीट पानी है, बच्चा खड़ा हो पा रहा है, बट जब पानी में जरा सा मूवमेंट बनता है बच्चा गिर जाता है, हेड टर्न हो जाता है, तो उसकी वजह से बच्चे की ड्राउनिंग हो जाती है। तो उसी तरीके से आप ये अंदाजा लगाइए कि आपको बच्चे को अनसुपरवाइज नहीं छोड़ना है। जहां बच्चे से आपने सुपरविजन हटा दी और आपने उसको अनअटेंडेड छोड़ दिया, जरा सा पानी का भाव स्विमिंग पूल के अंदर उनको गिरा देगा पानी के अंदर, और हेड टर्न होते ही बच्चे की ड्राउनिंग हो जाएगी। उसी तरीके से जैसे बड़े लोग हैं जो थोड़े एज के हैं, एडवेंचर में आ जाते हैं, दोस्तों का पीयर प्रेशर, अरे मैं देख लूंगा डीप में, चल मैं संभाल लूंगा, दे आर नॉट ट्रेन्ड लाइफ गार्ड। किसी के पुश करने पे, पीयर प्रेशर में आप गहरे पानी पे मत कूदिए। आपको शैलो वाटर्स में रहना है, वेस्ट से बिलो पे रहना है। जब आप एक माहिर स्विमर हो जाए तब आप गहरे पानी की तरफ अपना रुख करिए। सावधानी सबसे इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर स्विमिंग पूल्स पे आप देखेंगे बोर्ड लगा होता है, स्विम एट योर ओन रिस्क, राइट? वो इसलिए लगा के छोड़ा हुआ है कि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि स्विमिंग एक रिस्क है। अगर आप एक बेहतरीन तैराक नहीं है, सावधानियों के बिना एंड विदाउट टेकिंग प्रिकॉशंस, ये मत सोचिए कि मैं कर जाऊंगा जोश में। आपका एक ब्रीदिंग पैटर्न है, किस तरह से आपने स्विमिंग सीखी है, वो सब चीजें ध्यान रखनी चाहिए, और जान से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। ये हमारे यहाँ पे इतना ज्यादा प्रेशर बिल्ड कर दिया जाता है, पूल पार्टीज हो रही हैं, ये हो रही हैं। आप आए दिन जैसे डॉक्टर राव ने बताया कि जिस तरह से प्रेशराइज हो जाते हैं लोग, ये गलत है। और हर जगह सेफ्टी नॉर्म्स बनाए गए हैं कि स्विमिंग पूल की गाइडलाइंस हैं, उसे फॉलो करना चाहिए। जहां भी आप गाइडलाइंस से, सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज करेंगे, वहां हादसे होने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं।
1: डॉक्टर राव, रिस्क फैक्टर्स क्या है? हु आर एट रिस्क?
2: रिस्क में सबसे बड़ा वो है जिसको स्विमिंग नहीं आती और वो डीप वाटर में उतरता है, सबसे बड़ा रिस्क वो है, बिकॉज इट्स अ रिस्की बिहेवियर। नेक्स्ट वो है जो कि हालात की वजह से होता है। आपके घर में पानी है, टब है, बच्चे को आपने छोड़ दिया, मदर कहीं बिजी हो गई, उसके बाद बच्चा गया और टब में उतर गया, तो वो अनसुपरवाइज बच्चा जो है वो एक रिस्क है अगर उसके पास वाटर सोर्स है जिसमें वो उतर सकता है। तीसरा होता है कि आपकी एज क्या है। यूजुअली यंगर जो बच्चे होते हैं, ऑलमोस्ट 50% डेथ्स 18 साल से कम में होती है। उसके बाद आता है कि कोई एसोसिएटेड आपको डिजीज है या आप एक रिस्की बिहेवियर में करते हैं। डिजीज में जैसे आप समझ लीजिए आपको ऐसी कोई चीज है जो कि आपका बैलेंस खराब करेगी, ऐसी कोई रिस्क है जिसमें आपका हेड बहुत क्लियर नहीं है, मान लीजिए अल्कोहल पी हुई है आपने, ड्रग्स ली हुई है आपने, ऐसी चीज है जैसे आपको पानी में सीजर हो गया तो आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे उसको। तो इन लोगों के अंदर स्पेशल प्रिकॉशन आपको लेनी होती है कि या तो ये पानी में जाए ना, और अगर जाए तो सुपरवाइज जाए, दैट मीन्स कि कोई वॉच ओवर कर रहा है ताकि अगर आपको कुछ हुआ तो वो आपको बचा ले। और तीसरा, आप सारे प्रिवेंटिव मेजर्स करेंगे, जैकेट लेंगे, लाइफ बॉयज लेंगे, जो भी लेंगे, तो इन लोगों के अंदर वो वाला होता है। पर अधिकतर वो रिस्क पे है जो कि जाने अनजाने पानी में उतर जाते हैं। जैसे मान लीजिए आती है कि स्कूल के अंदर स्विमिंग पूल था, एक अभी आई थी कि गोल्फ कोर्स में एक हैजार्ड था, वाटर हैजार्ड, बच्चों ने टापा और उसमें उतर गए। दिस इज अ रिस्की बिहेवियर, क्योंकि वो जैसे कह रहे हैं आप, वहां कोई बचाने वाला नहीं है और इनको स्विमिंग आती नहीं है, दे हैव नो आइडिया कि उसकी वॉल ऑलमोस्ट वर्टिकल है, वो सोचते हैं धीरे धीरे गहरा होगा ये, तो वहां पे वो फंस जाएगा।
1: डॉक्टर मीनाक्षी, 53% डेथ कहा जाता है कि स्विमिंग पूल्स में होती है, और आपने इतनी इंटरनेशनल स्विमिंग करी है, तो स्विमिंग पूल्स की क्या कोई क्राइटेरिया कुछ होना चाहिए कि साहब आपने स्विमिंग करते हो, तो क्या स्विम सूट का कोई कलर स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई हो कि भाई ये वाला कलर कोडिंग आप करके जाओगे, आपने नियॉन ऑरेंज लिया या ब्राइट पिंक लिया या ये ब्लू लिया, तो ये सेफ कलर है तो दूर से पहचाना जाएगा कि भाई इसकी कलर कोडिंग अच्छी है, कैप लगाई हुई है, या कोई कलर कोडिंग की कोई जरूरत नहीं है, गर्म पानी होना चाहिए स्विमिंग पूल में सीखने के लिए या ठंडे पानी में? आपने इतनी इंटरनेशनल स्विमिंग, आप बताइए मुझे कि स्विमिंग पूल में क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए?
0: देखिए, स्विमिंग पूल्स के साथ ना यूजर्स का एक बिहेवियर बहुत इम्पोर्टेंट है। हर स्विमिंग पूल के बाहर आप देखेंगे कि डेक एरिया मार्क करा जाता है कि शैलो एंड कहाँ है, यहाँ 3 फीट पानी है, यहाँ 2 फीट पानी है, यहाँ 4 फीट है, यहाँ 6 फीट है। तो जब एक यूजर स्विमिंग पूल में आता है तो उसे पहले ये ओरिएंटेशन देनी चाहिए स्विमिंग पूल के स्टाफ के द्वारा कि आपको तैरना आता है या नहीं आता। अगर वो यूजर कह रहा है उसे तैरना नहीं आता, दैट मीन्स दैट पर्सन शुड रिमेन, उन्हें शैलो वाटर्स में रहना है जब तक कि वो अपना प्रोत्साहन बढ़ाएं और ट्रेनिंग लें और इस लेवल पे आएं कि वो गहरे पानी में जा सकें। तब तक उन्हें अपने आप को सेफ प्ले करना है और शैलो एरिया में रहें।

0: तो स्विमिंग पूल पे, हर स्विमिंग पूल पे ये मैंडेटरी होता है कि आप एरिया को मार्क करिए, इंडिकेट कीजिए कि ये शैलो एंड है, 2 फीट से बह रहा है, यहाँ 3 है। अगर स्लोप है तो स्लोप को इंडिकेट करा जाए, ताकि जो यूजर्स हैं दे आर वेल अवेयर कि एकदम शार्प स्लोप आएगा, वो डीप में फिसल सकते हैं। इसी तरह से डीप एंड को भी मार्क करा जाता है कि ये 8 फीट गहरा है, 9 फीट गहरा है या ये 12 फीट गहरा है। क्योंकि कई बार, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, कि लोग डाइव ले जाते हैं, उन्हें ये अंदाजा नहीं है कि कितना गहरा है, दे बैंग देयर हेड और हेड इंजरी हुई, वहीं पे डेथ हो गई। सो बहुत प्रिकॉशंस के साथ एक इंसान को चलना चाहिए जब वो स्विमिंग पूल में है। देखिए, स्विमिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल है। इससे आप अपनी जिंदगी बचा सकते हैं। मैं तो आपके कार्यक्रम के माध्यम से सबसे अपील करना चाहूंगी कि स्विमिंग को आप स्कूल्स में कंपलसरी कीजिए। क्योंकि सबसे पहली चीज, अगर हम देखें, अगर ड्राउनिंग के लिए हम सेफ गार्ड करना चाहते हैं, एक इंसान को अगर अपनी जान बचानी आती है तो कम से कम ड्राउनिंग का लेवल डाउन होगा। ये एक एजुकेशन की तरह है, ये एक लाइफ स्किल है, हर किसी को आना चाहिए। इसमें हमें प्रोत्साहन देने की बहुत जरूरत है। और बड़ी खुशी हो रही है देख के कि पहले दिल्ली में बहुत कम सरकारी स्कूल्स के अंदर स्विमिंग पूल की फैसिलिटी थी। अब ओवर द इयर्स स्विमिंग पूल सरकारी स्कूल्स में, सर्वोदय में, केंद्रीय विद्यालय में, हर जगह पढ़ रहे हैं। जो बच्चे अपनी एजुकेशन के साथ वंचित थे कि भाई इट्स एन एक्सपेंसिव इंडेवर, नहीं अफोर्ड कर सकते, हर बच्चे की पहुंच के बाहर है, बट अब सरकार इतने प्रयास कर रहे हैं। हमारी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के भी स्विमिंग पूल्स दिल्ली में हैं, चाहे वो NDMC के हैं, चाहे MCD के हैं, एंड दे आर वेल मेंटेन्ड स्विमिंग पूल।
1: रणवीर जी, जैसा डॉक्टर मीनाक्षी के, ये बताइए कि आप कोच हैं, तो कोचिंग अगर करनी है, या कोई पेरेंट्स आता है कि बच्चे को जी मेरे स्विमिंग सिखा दीजिए, तो व्हाट एज यू शुड स्टार्ट? कहते हैं स्पोर्ट्स में हमेशा कहते हैं कि नर्चर देम यंग, कैच देम यंग।
2: स्विमिंग सिखाने से पहले हमें स्विमिंग का एक पैटर्न जो होता है, जैसे कोई भी बच्चा जिसको पता नहीं है स्विमिंग का, या कोई भी इंसान जब आता है, तो जो स्विमिंग पूल का जो रिसेप्शंस हैं उन पे अगर हम गाइडलाइन रखें स्विमिंग की, कि इस चीज से ड्राउनिंग होती है, या अगर आपको स्विमिंग नहीं आती है तो आपको, जैसे बहुत सारे स्कूल्स हैं या स्विमिंग पूल्स हैं, उनमें जैसे रेड कैप का एक कोड होता है, जब हम स्विमिंग करते हैं तो कॉस्ट्यूम वो पानी के अंदर चला जाता है, तो हमारा जो सबसे ऊपर रहता है वो हेड
1: सर कैप ही दिखती है।
2: अब दूर से अगर हम किसी को आइडेंटिफाई करें कि ये नॉन स्विमर है या ये स्विमर है, तो वो कैप से हम उसको कोड कर सकते हैं। तो मोस्टली जैसे काफी सारे जो जिनको पता है कि भाई एक कलर कोडिंग कितना इंपॉर्टेंट है, तो वो अगर हम जैसे रेड कैप है या ब्लैक कैप है, एक ही तरह का कोड अगर हम सभी जितने भी बिगनर स्विमर हैं या जो जिनको स्विमिंग नहीं आती है या जो स्विमिंग सीख रहे हैं, उनको अगर हम एक कोड के माध्यम से अगर हम उनको स्विमिंग पूल के अंदर जाने की एंट्री देते हैं, तो ये मेरे हिसाब से कम अगर हम ज्यादा नहीं माने तो 20% जो ड्राउनिंग है, जो स्विमिंग पूल की है, वो हम कम कर सकते हैं। क्योंकि वहां जो स्टाफ होता है उसको भी ये एजुकेट किया जाता है कि जितने भी इस कोड के या इस कलर की कैप जिन्होंने वियर की हुई है, उनको स्विमिंग नहीं आती है, तो वो सबसे ज्यादा उनका जो अटेंशन है वो इसी कोड, इसी कलर के ऊपर रहेगा। और फिर जैसे आपने पूछा कि किस एज से हम स्टार्ट कर
1: जी
2: सकते हैं, तो एज देखिए, हम 6 to 8 हमारी जो आइडियल एज है स्विमिंग के लिए वो मानी गई है, क्योंकि इस टाइम पे बच्चे की जो अंडरस्टैंडिंग है या फिजिकल ग्रोथ है, ये सारी चीजें, और कुछ ऐसे ब्लॉक्स भी होते हैं जो हमारी फिजिकली जो ग्रोथ होती है, तो वहां पे हर एक बच्चे की अपनी जो अंडरस्टैंडिंग जो रेशो होता है उस एज में, वो बहुत ज्यादा वो ब्लॉक ओपन हो जाता है। तो वहां पे जाके हम बच्चे को अगर ये बोलते हैं कि बेटा आप ये कीजिए, उस बात को वो जल्दी कैच कर लेता है, वो अंडरस्टैंडिंग लेवल उसका वहां पे जो ब्लॉक होता है उसमें वो ज्यादा रहता है, जैसे हाइट का है, स्पीड का है, इंडोरेंस का है, तो ये हर एक ट्रेनिंग पैटर्न्स में अपने ब्लॉक्स रहते हैं। तो ये जो एज है ये सबसे अच्छी एज मानी गई है कि यहाँ हम स्विमिंग सिखाने के लिए अच्छे बच्चों को हम प्रोत्साहन कर सकते हैं, उनको एजुकेट कर सकते हैं। स्विमिंग जैसे हमें जीने के लिए खाना सांस लेना जरूरी है, वैसे ही अगर हम स्विमिंग को अपनी लाइफ के अंदर बता दें कि हर एक इंसान को कि आपको स्विमिंग कितनी जरूरी है, क्योंकि ये सबसे जरूरी है कि हमें उस चीज की वैल्यू पता होना। क्योंकि स्विमिंग आज हमें, हमारे इंडिया की अगर हम

0: बात करें तो बहुत कम अवेयरनेस है कंपेयर टू अदर कंट्रीज। इसीलिए आज हम अगर कंपिटिटिव स्विमिंग की भी बात करें तो आज हम बहुत पीछे हैं, इसीलिए पीछे हैं।
1: डॉक्टर मीनाक्षी, आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर?
2: देखिए, मैं ये कहना चाहूंगी कि स्विमिंग हेल्थ प्लेजर एंड सेफ्टी, आप सेहत के लिए दायरे से देखिए, तैराकी बहुत इम्पोर्टेंट है एक लाइफस्टाइल, एक अच्छे लाइफस्टाइल के लिए। जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा, बड़ा कामिंग इफेक्ट है आपकी लाइफ के स्ट्रेस दूर करने के लिए, बहुत ही अच्छे फिटनेस एक्टिविटी है अगर आप हेल्थ पर्सपेक्टिव से देखें। अगर आप इसे स्पोर्ट्स के दायरे में लेके आते हैं तैराकी को, तो फिर आपकी अचीवमेंट्स हैं, फिर आप स्टेट लेवल खेल रहे हैं, नेशनल खेल रहे हैं, इंटरनेशनल खेल रहे हैं, कंट्री का तिरंगा फहरा रहे हैं, हाईएस्ट लेवल पोडियम पे जा रहे हैं, वो अलग दायरा है। जहां एजिंग और दूसरी बात आती है, वहां अगेन इट इज वेरी थेरापेटिक। सब जानते हैं पानी में ग्रेविटी इज जीरो, आपका बॉडी वेट 1/10 रहता है। जो लोग अर्थराइटिस से, दूसरी समस्याओं से, बहुत से हेल्थ इश्यूज से जूझ रहे हैं, पानी से पड़ा, उनके लिए कोई थेरेपी नहीं है। सो ये आपका देखने का दायरा है। एंड इट इज अ मदर स्पोर्ट, लेट्स सेलिब्रेट वाटर, इट्स अ वेरी पावरफुल एलिमेंट ऑफ नेचर। और इसका जितने कुदरत ने बहुत दिया है, जितना इसका फायदा उठा सकें, आई थिंक वो बहुत इम्पोर्टेंट।
1: डॉक्टर मीनाक्षी, अब ये कैसे पता लगे, मान लीजिए सुपरविजन भी है, वो गार्ड खड़ा है या लाइफ गार्ड खड़ा है, कोच खड़ा है, कैसे पता लगे कि फलां व्यक्ति लेडी डूब रही है?
2: देखिए, कई बार ऐसा होता है कि अच्छे से अच्छा तैराक भी क्रैम्प आ जाता है, ऑल ऑफ अ सडन आपकी नस पे नस चढ़ गई, ऑल ऑफ अ सडन आप वहीं के वहीं स्टेशनरी हो जाते हैं। तो इसीलिए लाइफ गार्ड को बहुत अलर्ट रहना जरूरी है। कई बार लोग सिर्फ आवाज नहीं लगा पाते, सिर्फ हाथ से ही इशारा कर पाते हैं कि मुझे मदद की आवश्यकता है। अगर वो चीज आपने कैच कर ली, तब तो लोग मदद के लिए एकदम आ जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि स्विमिंग पूल्स के अंदर लोग गेम्स खेल रहे होते हैं, प्रैंक्स कर रहे होते हैं, तो लाइफ गार्ड भी सोच रहा होता है कि भाई डुबकी लगाने का, सांस होल्ड करने का नीचे प्रैक्टिस कर रहा है, ये कर रहा है, वो भी डिस्टर्ब नहीं करते। बट अच्छी चीज ये है, अगर आप कोई प्रैंक कर रहे हैं या ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं, पानी में होल्ड कर रहे हैं, तो आप स्टाफ को बताइए कि सर मैं ये कर रहा हूँ, ताकि जो स्टाफ ऑन ड्यूटी है वो अलर्ट रहे। ये एक सुपरविजन की बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। बट अब धीरे धीरे जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, दिल्ली में स्विमिंग पूल्स हैं, सब धीरे धीरे सीसीटीवीज और वो सब इंस्टॉल कर रहे हैं, ताकि सावधानियां और ज्यादा बढ़ सकें। और पीछे जब गवर्नमेंट ने रूल्स वगैरह थोड़े मॉडिफाई करे हैं स्विमिंग पूल के, पहले डाइविंग के पूल स्विमिंग पूल्स के साथ अटैच होते थे, अब धीरे धीरे जो स्टैंडर्ड हमारा फीना का इंटरनेशनल बॉडी का जो रूल है कि हाँ आपको 6.5 फीट का एक स्टैंडर्ड स्विमिंग पूल बनाना है और वो करना है, ताकि गहराई को वो कम से कम रखें, ताकि ये हादसे कम हो।
1: डॉक्टर राव, एक मेडिकल कंडीशन के हिसाब से आदमी डूबता क्यों है?
3: नहीं, डूबता क्यों है? बिकॉज उसको तैरना नहीं आता। पॉइंट इज कि डूबना कहते किसको है मेडिकली? जो लेमैन की टर्मिनोलॉजी है उसमें है कि इसके फेफड़े में पानी चला गया, पर पानी जाने से क्या होता है, वहां मेडिकल साइंस उसकी डिटेल में जाती है। आपकी जो लाइनिंग है लंग के अंदर, वो डैमेज होती है, उसके अंदर से फ्लूड बाहर आएगा, ब्लड बाहर आना शुरू होगा, ऑक्सीजन अंदर जाने बंद हो जाएगी। अगर ऑक्सीजन आपके दिमाग में नहीं गई, आप सांस लेना बंद कर दोगे। अगर आपने सांस लेना बंद किया तो आपका हार्ट, किडनी और बाकी ऑर्गन सारे जाएंगे। ये सारी चीज कंट्रीब्यूट करती है कि ड्राउनिंग से डेथ कैसे हो
1: ऑन द स्पॉट। डॉक्टर मीनाक्षी, ये जब वो ड्राउन हो गया, डूब गया, या आपने उसे निकाल लिया, तो आप ऑन द स्पॉट क्या करेंगे?
2: देखिए, सबसे पहले जब आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये कैजुअलिटी है, ड्राउन हो रही है, उसको आप सपोर्ट देके आप पानी से बाहर लेके आए हैं, उसके बाद आपको सबसे पहले उसका एयरवे खोलने की वो कोशिश रहती है। और लाइफ गार्ड जो ऑन ड्यूटी होते हैं, सबको फर्स्ट एड और ये टेक्निक्स सिखाई जाती हैं, उसके बिना उनको सर्टिफिकेशन नहीं मिलता है। अच्छे तैराक होने के साथ साथ लाइफ गार्ड ऑन ड्यूटी को ये सब चीजें कंपलसरी हैं, फर्स्ट एड देना और साथ साथ सीपीआर। ये एक बहुत ही अहम चीज है और ये बहुत सीरियस मैटर है जब वहां बात आती है। यहाँ तक कि जब स्विमिंग पूल चलाने की आपको परमिशन मिलती है, लाइसेंस मिलती है, आपको वहां पे ऑक्सीजन सिलेंडर रखना कंपलसरी है, स्ट्रेचर होना जरूरी है, पूरा फर्स्ट एड का बॉक्स आपका रेडी होना चाहिए। अगर इमरजेंसी क्रिटिकल कंडीशन वहां पे है, तो एम्बू बैग आपके होने वहां बहुत जरूरी होते हैं, इसके बिना आपको स्विमिंग पूल का लाइसेंस नहीं मिलता है। और वहां के जो चलाने वाले हैं स्विमिंग पूल, वो सब ट्रेंड लोग होते हैं कि इमीडिएटली, देखिए डॉक्टर साहब आपको बता सकते हैं कि कितना ऑक्सीजन का लेवल आपको देना है, बट जो स्विमिंग पूल का स्टाफ है उसे वो ट्रेनिंग देनी चाहिए कि ऑक्सीजन का सिलेंडर तो है,

0: पर आपको देनी ही नहीं आती, तो वो एक समस्या है। ये सब चीज़ें आप धीरे धीरे एड्रेस हो रही हैं, और जो लाइफगार्ड की ट्रेनिंग है और स्पेशलाइज तरीके से इम्प्रूव हो रही है, बट CPR इज़ वेरी
1: सीपीआर पर
0: इम्पोर्टेंट।
1: बात करेंगे डॉक्टर राव से। रणबीर जी, ये बताएं कि जो एक ट्रेंड एथलीट है या एथलीट नहीं भी है, एक आम इंसान है, वो तो स्विमिंग सीख रहा है, अब जो पैरा वाले जो लोग हैं, क्या वो भी स्विमिंग करते हैं? आप तो उस पर आप बहुत काम कर रहे हैं, आप भारतीय प्राधिकरण से जुड़े हैं, खेल प्राधिकरण से, आप क्या समझते हैं कि वो मुश्किल काम है या वो आसान काम है, और उन्हें सिखाना चाहिए नहीं सिखाना चाहिए?
2: देखिए सर, सिखाना चाहिए, मैं सिखाना चाहिए इसमें मैं डेफिनेटली बोलूँगा कि उनको सिखाना चाहिए। और जो दूसरा है आपका कि इन बच्चों के लिए मुश्किल है, तो डेफिनेटली क्योंकि एक डिसेबिलिटी उनके पास पहले से है,
1: जी
2: तो जो हमारी जो सोसाइटी में अवेयरनेस की कमी है उसकी वजह से पेरेंट्स अपने बच्चों को फ्रंट पे लाना ही नहीं चाह रहे हैं जो आज की सिचुएशंस है। और हम अभी धीरे धीरे जितने भी कोचिज हैं, मैम हैं, हम लोग धीरे धीरे यही कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी सोसाइटी में ये अवेयर कर सकें, पेरेंट्स को बता सकें, और जितने भी कॉम्पिटिशन्स हमारे पैरा के होते हैं उनमें भी हम जहाँ जहाँ जाते हैं कि आपको ये एक डिसेबिलिटी नहीं है, ये आपकी जीवन का एक भाग है, इसके साथ आपको कैसे आगे आप बढ़ सकते हो वो हम उन लोगों को सिखाते हैं। डिसेबिलिटी एक अलग चीज है, स्विमिंग एक स्पोर्ट, एक हमारी ऐसी इम्पोर्टेंस है लाइफ की कि स्विमिंग जो सीख जाता है उसकी डिसेबिलिटी को ओवरकम कर लेता है। अब बहुत सारे बच्चे मेरे पास ऑटिज्म, ऑटिस्टिक, ऐसे बहुत सारे डिसेबल्ड बच्चे आते हैं जिनकी स्पीच कम होती है, स्विमिंग जिसने स्टार्ट किया है या जो कंटिन्यू स्विमिंग कर रहे हैं जिनकी स्पीच कम है उनकी स्पीच आ जाती है, जिनकी स्पीच क्लियर नहीं है उनकी स्पीच क्लियर हो जाती है, जिनके मूवमेंट क्लियर नहीं है उनके मूवमेंट क्लियर हो जाते हैं, जो चल नहीं पाता है स्विमिंग के कारण वो चल पड़ता है, चलने के साथ साथ धीरे धीरे वो दौड़ भी लेता है। मैंने खुद अपने बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, मेरे पास एक लड़का है, पहले वो 5-7 फीट तक चल नहीं सकता था विदाउट एनी हेल्प, आज वो 400 मीटर ट्रैक रनिंग, 800 मीटर रनिंग भी करता है। तो ये सब स्विमिंग के बेनिफिट्स हैं। और जो डिसेबिलिटी है स्विमिंग वाटर रेजिस्टेंस के कारण, क्योंकि जो वाटर प्रेशर होता है, अगर हम जैसे बहुत सारे जितने भी मोस्टली हमारे ज्वाइंट्स हैं, तो ज्वाइंट्स पे जो प्रेशर आता है, जो वाटर प्रेशर आता है, वो स्विमिंग में उस ज्वाइंट के चारों तरफ रहता है। अगर हम जिम में कोई एक्सरसाइज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे नी का रिहैब हुआ है, डॉक्टर साहब और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे, अगर मुझे बोला गया कि आपने नी में थोड़ी स्ट्रेंथनिंग करनी है, तो वो स्ट्रेंथनिंग जब हम करते हैं, तो जब हम वो मूवमेंट करते हैं, तो वो मूवमेंट में जिम के अंदर या स्ट्रेंथ रनिंग में उस पर्टिकुलर एक साइड ही उसको प्रेशर मिलता है। बट अब अगर उसी चीज को हम पानी के अंदर लेके आए, तो वो पानी के अंदर उसके चारों तरफ उस सेम प्रेशर मेंटेन करता है। तो ये इसका स्विमिंग का सबसे अच्छा है और सबसे बेस्ट वे है, क्योंकि वाटर थेरेपी से ही बहुत सारे ज्वाइंट्स हैं, लगामेंट्स हैं, जब हम रिहैब करते हैं, आजकल आप देखिए बाहर जितनी भी कंट्रीज हैं तो स्विमिंग रिहैब में सबसे ज्यादा वो वाटर थेरेपी इसीलिए यूज करते हैं।
1: ऑन द स्पॉट वेन्यू पे क्या CPR दिया जा सकता है? और अगर CPR देना है या ऑक्सीजनेशन देनी, आपने उसे अस्पताल पहुंचा दिया, तो अस्पताल में क्या उसका वो होगा?
3: जब एक इंडिविजुअल शख्स, बच्चा हो या बड़ा हो,
1: जी
3: जब वो बाहर आता है, खुद आए या कोई लाए, तो तीन कंडीशन हो सकती है उसके साथ। या तो वो खांस रहा है पर कॉन्शियस है, पर उसकी सांस ठीक है, खांसी आ रही है उसको। दूसरा है कि वो ब्रेथलेस है, खांस रहा है,
1: फूल रहा है,
3: सांस फूल रहा है उसका, पर वो कॉन्शियस है। तीसरा, वो खांस नहीं रहा, वो सांस नहीं ले रहा, वो कॉन्शियस नहीं है। ये तीन चीज ले पर्सन और ट्रेन्ड आदमी एक ही जैसे देखता है। मैं उसकी कॉन्शियसनेस देखूंगा, इज ही रिस्पॉन्सिव, कुछ बोला हिलाया। दूसरा, उसका रेस्पिरेशन, क्या वो सांस ले रहा है। तीसरा, उसका पल्स। यहां से शुरू होती है कहानी, जो डिफर करती है एक कार्डियक अरेस्ट जो कि दिल की वजह से होता है, और एक कार्डियक अरेस्ट जो ड्राउनिंग से होता है। ड्राउनिंग इज प्राइमरली अ रेस्पिरेटरी कंडीशन, इज नॉट अ कार्डियक कंडीशन। दिल में उसको कुछ नहीं था, उसको ऑक्सीजन नहीं मिली क्योंकि रेस्पिरेशन नहीं चला, इसलिए हार्ट रुका। तो फर्स्ट अटेंशन जो बाईस्टैंडर्ड है उसकी होती है रेस्पिरेशन पे, हार्ट पे नहीं होती। उसमें अगर आपको लगता है कि ये सांस नहीं ले रहा, आप ऑक्सीजनेशन को छोड़ दीजिए, तो आप उसको 5 रेस्क्यू ब्रेथ माउथ टू माउथ देंगे, एंड यू विल वॉच कि उसकी चेस्ट ऊपर उठे। इन लोगों के अंदर पानी पेट में भी भरा है, वो नाक से गया।

0: मुंह से गया पर अल्टीमेटली पेट में भरा है। एक कॉमन मिसकंसेप्शन है कि अगर आप उसका पेट दबाएंगे और उसके मुंह से पानी निकल गया तो वो ठीक हो जाएगा
1: जी।
0: ये एक मिसकंसेप्शन है, ये मेडिकली प्रूवन चीज नहीं है, इनफैक्ट इससे हार्म हो सकता है। ये आदमी और बच्चा अनकॉन्शियस है, अगर आप इसके स्टमक के पानी को मुंह में लाएंगे तो वहां से वो इसके लंग में जरूर जाएगा,
1: एस्पिरेट कर सकता
0: पहले
1: है।
0: नहीं गया था अब जाएगा, और स्टमक खाली करने से आपको कोई फायदा नहीं होता। तो पहली चीज आप इसको रेस्क्यू ब्रीदिंग दीजिए, काफी सारे वही रेस्क्यू ब्रीदिंग से उनकी किक इन हो जाती है और वो अपने आप सांस लेने लगेंगे। अगर वो नहीं लेते तो फिर आपको उसको देना है, एम्बू बैग से दीजिए, ऑक्सीजन लगा के दीजिए, फिर देखिए उसकी पल्स नहीं चल रही तो आपको मसाज देनी पड़ेगी, जो CPR आप बोल रहे हैं। अगर डिफिब्रिलेटर है तो वो लगेगा, अगर उसको लगता है आपको कि ये सब करते हुए उसकी आ गई या नहीं आई रेस्पिरेशन या हार्ट, ही हैज टू बी मूव्ड और शी हैज टू बी मूव्ड टू हॉस्पिटल, देयर इज नथिंग एल्स यू कैन डू ऑन द साइट।
1: तो डॉक्टर राव, अगर वो हॉस्पिटल पहुंच जाता है तो हॉस्पिटल पहुंचने के बाद उसका क्या आप इलाज करते हैं अगर उससे बचाना है तो?
0: लंग में जो पानी गया वो अपने आप एब्जॉर्ब होगा, हम उसको नहीं निकालते। ट्रेकिया हमारी 20 से 25 मिलीमीटर डायमीटर की है, एंड जहां पर होता है उसका वो 0.5 मिलीमीटर है, जो बॉल पेन की निब के बराबर है, टिप के बराबर है। 23 जनरेशन डिविजन के बाद आप उसे जो मर्जी कर लीजिए, उल्टा लेटा लीजिए, टांग दीजिए, पानी नहीं निकलेगा उसका, वो उसके अंदर चला गया और एब्जॉर्ब होगा। जो इंजरी हुई उसके डिपेंडिंग ऑन कि हम उसको वेंटिलेट करेंगे, ऑक्सीजन देंगे, जो जो उसके ऑर्गन इन्वॉल्व हुए उनको सबको सपोर्ट करेंगे, अल्टीमेटली अगर वो बहुत टाइम तक नहीं डूबा रहा तो वो पानी एब्जॉर्ब होने के बाद उसके चेंजेस रिवर्ट हो जाते हैं, एनी सर्वाइव्स। पर अगर वो डूबा रहा बहुत दिन या उसको CPR नहीं मिली 10 मिनट तक, तब उसका आउटकम अच्छा नहीं होगा।
1: तो CPR में बेसिकली आपको क्या करना चाहिए या
0: रेस्पिरेशन
1: क्या करना चाहिए?
0: सिर्फ माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन।
1: कितनी देर तक?
0: जब तक आप अस्पताल नहीं पहुंचते, जब तक वो ब्रीद नहीं करता, जब तक आपको एम्बू बैग नहीं मिलता।
1: एज ए फिजिशियन, एज ए मेडिकल एक्सपर्ट, आप कुछ सलाह देना चाहेंगे पेरेंट्स को, नागरिकों को, जनता को, कि आप अपने बच्चों को स्विमिंग सिखाएं लेकिन काइंडली इन कंडीशंस को जरूर फॉलो करें, क्या सलाह देना चाहेंगे?
0: तीन चीजें, अगर आप घर की बात करते हैं और घर के इमीडिएट सराउंडिंग की बात करते हैं
1: जी,
0: तो ये गार्ड वार्ड नहीं चलते
1: जी,
0: क्योंकि छोटा बच्चा डूबता है
1: जी।
0: सो सुपरविजन केयर इज मोर इम्पॉर्टेंट देन कीपिंग एनी गार्ड। अगर आप पब्लिक प्लेसेस की बात करते हैं तो वहां पे यू शुड क्रिएट बैरियर्स सो दैट यू डोंट हैव एक्सेस टू द वॉटर बॉडी। आप पानी में नहीं जाएंगे तो डूबेंगे नहीं। तीसरा ये है कि जहां आप चाहते हैं कि पानी में जाया जाए, जैसे स्विमिंग पूल्स हैं
1: जी,
0: तो वहां पे जो सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं वो लेनी चाहिए आपको, कोच, लाइफ बॉयज, सेग्रीगेशन बिटवीन डीप एंड
1: शैलो वाटर,
0: ऑल दोस थिंग्स शुड बी देयर।
1: मीनाक्षी, आप क्या कहना चाहेंगे?
2: देखिए, चेक उसी भी लेवल का कंपटीशन हो, बेसिक फर्स्ट एड और लाइफ गार्ड ऑन ड्यूटी होना बहुत जरूरी है। इन सेफ्टी से हमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, और हर जगह इंडिकेशंस, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ये शैलो एंड है, ये डीप एंड है, ताकि यूजर वेल अवेयर हो, जो बिगनर हैं वो आइडेंटिफाई करे जाएं, अलग सेग्रीगेट करे जाएं, ताकि ट्रेंड लोग अलग तैर रहे हैं, बिगनर्स अलग एरिया में हैं, सब एक दूसरे का ध्यान करें, ये नहीं कि एक दूसरे से टकरा रहे हैं, कोई किसी पे जंप कर जाए। तो एक पूल में भी आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। और जब आप नेचुरल ओपन वाटर बॉडीज की बात करते हैं, नदी हैं, पॉन्ड्स हैं, आज भी हम देखते हैं रिवर के बैंक्स पे, पॉन्ड्स पे, साउथ इंडिया में देखिए, वेस्ट में देखिए, आप बंगाल में देखिए, बहुत अच्छे तैराक हैं जो पानी में और ये खुली ओपन वाटर बॉडीज में तैरना सीखते हैं, प्रशिक्षण ले रहे हैं, बट सावधानियों के साथ, सुपरविजन, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, बिना सुपरविजन के, बिना ऑब्जर्वेशन के पानी में जाना बहुत खतरनाक है। और हर चीज का एक एरिया मार्क करते हैं, जो लोग पॉन्ड में भी स्विमिंग करते हैं वो पूरा का पूरा एरिया एक मार्क करके कि ये शैलो एरिया है, यहाँ सिखाया जाएगा
1: जी।
2: सो ये सब चीजें अगर ध्यान रखी जाए और सारे सेफ्टी गैजेट्स वहां पे अवेलेबल हो, जैसा मैंने आपको बताया।
0: ये तो इंडिविजुअल्स की बात हुई
1: जी।
0: लेट्स टॉक ऑफ मासेस। बाढ़ आई, 100 आदमी डूब गए
1: जी।
0: एक फेरी डूब गई, उसमें 150 आदमी गया
1: जी।
0: दीज आर ऑल सेफ्टी इश्यूज। सेफ फेरी का डिजाइन ठीक नहीं था, फेरी ओवरलोडेड थी, सो दीज आर एक्सीडेंटल कॉसेस। एंड थर्ड इज दी साइकोसोशल, क्योंकि डोंट फॉरगेट दैट ड्राउनिंग से डेथ बाय सुसाइड भी होती
1: है। हाँ, सुसाइडल डेथ भी एक बहुत बड़ा इश्यू है।
0: सो इट इज नॉट जस्ट कि आप बचा पाएंगे, उसका
1: बिहेवियरल चेंज भी होना बहुत जरूरी है। डॉक्टर बीके राव, डॉक्टर मीनाक्षी पाहुजा, रणबीर शर्मा जी, आपने जो आज बहुत ही एक महत्वपूर्ण जानकारी दी कि बहुत ही बर्निंग टॉपिक है ड्राउनिंग, और क्यों हम इससे कैसे बचाव कर सकें, इसकी रोकथाम हो सके।

0: सके और जो प्रेशियस लाइव्स हैं वो बचाई जा सके। और इस परिचर्चा में भाग लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: अभी आप ये परिचर्चा सुन रहे थे, संचालन कर रहे थे डॉक्टर जवाहरलाल जैन। इसी के साथ आज की स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत अब यहीं समाप्त होती है। फिर मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए स्वीकार करिए हमारा नमस्कार। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।
2: नमस्कार, धरती आकाश के इस अंक में आप सबका स्वागत है।
3: जैसा कि हमारे सुनने वाले जानते हैं कि हम अपने इन पत्रिका कार्यक्रमों के माध्यम से प्रत्येक सप्ताह उन तक नई नई जानकारियां नए नए विशेषज्ञों के द्वारा पहुंचाते रहते हैं। जैसा कि पता चला है 22 जुलाई 2026 को कि सिक्किम के नामची जिले में NHPC के निर्माणाधीन तीस्ता विद्युत परियोजना की सुरंग में एक दुर्घटना हो गई और सूचना अनुसार 20 श्रमिकों की मृत्यु हो गई है। इस तरह की दुर्घटनाएं उस पनबिजली परियोजना के लिए या बांध बनाने के लिए होती रहती है। आखिर बांध की सुरक्षा के उपाय क्या हो सकते हैं, इस पर तकनीकी क्या है, इसका विज्ञान क्या है, किस तरह से जगह का और उस जमीन का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है और उस तकनीक के अलावा इसमें जन जागरूकता किस तरह की होनी चाहिए लोगों के लिए, इन सब बातों पर विस्तृत जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ आकाशवाणी के स्टूडियो में उपस्थित है डॉक्टर विजेंद्र कुमार मिश्रा। आप भारत सरकार के राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण में पैनल बद्ध तकनीकी विशेषज्ञ हैं, साथ ही राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भारत सरकार में विशेषज्ञ के रूप में कार्य कर चुके हैं और डिजास्टर एंड क्लाइमेट एक्शन फेडरेशन नई दिल्ली के संस्थापक भी रहे हैं। हमारे दूसरे विशेषज्ञ हैं श्री मनी कुमार। आप असम एकीकृत नदी बेसिन प्रबंधन कार्यक्रम, मेघालय की एशियाई विकास बैंक समर्थित जलवायु अनुकूलन एवं सामुदायिक जल संचयन परियोजना, सिक्किम की जल विद्युत परियोजनाओं, मराठवाड़ा क्षेत्र के विभिन्न नदी जोड़ों एवं जल हस्तांतरण से जुड़े विभिन्न परियोजनाओं में अपनी तकनीकी विशेषज्ञता दे चुके हैं। डॉक्टर विजेंद्र कुमार मिश्रा जी और श्री मनी कुमार जी, आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में स्वागत है।
4: नमस्कार।
3: सबसे पहले हम बात करते हैं बांध के सुरक्षा की, विज्ञान की, तकनीक और जन जागरूकता की। तो एक जब बांध का निर्माण किया जाता है तो उस जगह का चुनाव और बांध की क्षमता, इन सब का निर्धारण कैसे किया जाता है मिश्रा जी?
4: तो बांध का जो चुनाव होता है उसके लिए कई तरह के साइंटिफिक और रिसर्च स्टडीज की आवश्यकता होती है। जब भी सरकार किसी भी क्षेत्र में बांध बनाने के लिए घोषणा करती है उसके पहले उनको सबसे प्रमुख 3 से 4 तरह की साइंटिफिक स्टडीज करनी होती है। सबसे पहले तो बांध बनाने के लिए जो उपयुक्त स्थान है उसके लिए उसका जियोलॉजिकल और साइस्मिक स्टडीज सबसे मैंडेटरी होता है, बिकॉज जहां पर बांध बनेगा उसके अंदर की भू संरचना क्या है, उसमें जियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स क्या है, कौन कौन से रॉक प्रोफाइल में वो डैम बनने जा रहा है, तो उसके रॉक की स्टेबिलिटी और वहां पे जो सोयल की स्टेबिलिटी, इन दोनों का असेसमेंट बहुत डिटेल्ड रूप में किया जाता है। इसके साथ साथ उसकी टोपोग्राफी के एस्पेक्ट को देखना बहुत जरूरी, बिकॉज बांध बनाने के लिए जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो बेसिकली विस्तृत हैं, जैसे कि हाइड्रोलिटिक प्रोजेक्ट जनरेशन है, इरिगेशन के प्रोजेक्ट्स हैं, फ्लड कंट्रोल्स हैं और अन्य हैं। तो इसके साथ साथ जो उस बांध बनाने के लिए जो लोकेशन का चुनाव करना है वहां पे जो अर्थक्विक की क्या प्रोफाइल है, तो उसके लिए साइस्मिक स्टडीज भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसके साथ साथ एनवायरमेंटल जो इम्पैक्ट हो सकता है बांध बनाने के दौरान या बांध बनाने के बाद, वहां की जो बायोडाइवर्सिटी है या इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होंगे, उन सब के लिए बेसिकली मुख्यतः 3 तरह की स्टडीज प्रमुख होती है, जो कि जियोलॉजिकल असेसमेंट, उसमें उनका स्ट्रक्चरल असेसमेंट, साथ में साइस्मोलॉजिकल भूवैज्ञानिक या वहाँ का जो अर्थक्वेक का निर्धारण, साथ में उसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट और सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट को देखा जाता है।
3: अब जैसा कि अभी वर्तमान में मानसून का समय है और बारिश अनिश्चित होती जा रही है, कभी कभी काफी एक ही साथ बहुत सारी बारिशें हो जाती है और कई बार लोग उसका पूर्वानुमान नहीं कर पाते हैं संबंधित जो विशेषज्ञ होते हैं, तो मानसून के दौरान बांधों के लिए सबसे बड़ी चुनौतियां क्या होती है और ऐसे समय में किस तरह की विशेष सावधानियों का पालन किया जाता है?
4: इस संदर्भ में डैम जो ऑपरेटर्स होते हैं या जो अलग अलग प्रबंधन के जो डैम्स हैं, जैसे कुछ डैम्स तो प्राइवेट ओन्ड होते हैं, कुछ डैम भारत सरकार के नियंत्रण में होते हैं, उनका समय समय पे होता रहता है। इसमें जो डैम में जो वर्कर हैं वहाँ के डैम के इंचार्ज हैं, वो प्री एंड पोस्ट मानसून एक इंस्पेक्शन अपने तरीके से करते हैं, साथ

0: यही जो भी डैम ऑपरेटर्स हैं या डैम यूनिट्स हैं, उन डैम यूनिट में एक इमरजेंसी एक्शन प्लान, एक विस्तृत जो है खाका सरकार तैयार करवाती है, जो कि नेशनल डैम सेफ्टी एक्ट में एक मैंडेटरी उनका एक डॉक्यूमेंट है। तो इमरजेंसी एक्शन प्लान जो होता है उसमें अगर कोई इमरजेंसी डैम में आती है, अचानक जल स्तर बढ़ता है या अगर डैम के ब्रेक की सिचुएशन होती है, तो उसमें जो इमरजेंसी एक्शन प्लान में जो भी प्रोटोकॉल्स दिए होते हैं, जैसे कि मान लीजिए गेट में अचानक पानी बढ़ रहा है, तो उस संदर्भ में क्या करें, उसमें डैम को ओपन करें, साथ में उनके जो डिजास्टर रिस्पांस के जो प्रोटोकॉल्स हैं, जैसे कि स्टेट में आपका डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको सूचना देना, उसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज हैं, साथ में SDRF, NDRF, पुलिस, तो जब भी इस तरह की अचानक कोई दुर्घटना होने का ऑब्जर्वेशन होता है तो इमरजेंसी एक्शन प्लान में उसके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बने हुए होते हैं, वो पूरी तरह से निर्धारित होते हैं और नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी को वो सारी सूचनाएं रहती हैं कि कौन से पर्टिकुलर डैम में उसका ईएपी क्या है और ईएपी के अंदर कौन कौन से जो प्रभारी हैं या अधिकारी हैं जो नियुक्त हैं, किनका क्या काम है। तो इमरजेंसी जो एक्शन प्लान है वो एक डिटेल डॉक्यूमेंट होता है और उसमें डैम में आने वाली कोई भी समस्या है या अचानक जल स्तर बढ़ रहा है या कोई डिजास्टर ऊपर आ गया, कोई ग्लॉफ का इंसिडेंस हो गया, उसमें जो भी सावधानियां बरतनी है उसके लिए ईएपी अपने आप में एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट होता है और ये एनडीएसए के एक मैंडेटरी जो एक डॉक्यूमेंटेशन है, असेसमेंट है, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
1: ये क्या कानूनी प्रावधान?
0: ये कानूनी प्रावधान है नेशनल डैम सेफ्टी एक्ट में। ये जितने भी छोटे या बड़े स्तर के डैम है, क्योंकि भारत में अभी करीब धर्मा जो पोर्टल है करीब 6,500 से ज्यादा डैम जो है उसमें रजिस्टर्ड है। धर्मा पोर्टल जो नेशनल सीडर सेंटर वाटर कमीशन का एक डिजिटल रिकॉर्ड है भारत में जितने भी छोटे बड़े डैम है, वही ओल्ड एज डैम है जो 100 साल से अधिक कुछ डैम्स है, करीब 290 डैम भारत में ऐसे है जो कि 100 साल से ऊपर या ओल्ड एज डैम्स है, वही 50 साल से पुराने डैम करीब 1,000 से अधिक उनकी संख्या है। तो इन सब के रख रखाव, उनके स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी असेसमेंट, या अगर कोई वहाँ पे दुर्घटना हो जाती है डाउन स्ट्रीम में जो जनता वहाँ रहती है, लोग रहते हैं, बड़ी बड़े मतलब बस्तियां हैं, एक डिस्ट्रिक्ट में कोई एक डैम है उसका जो कैचमेंट एरिया है या उसका जो इम्पैक्ट एरिया है अगर बांध टूटता है वो काफी बड़ा है। तो इस केस में भारत सरकार ने जो डैम सेफ्टी एक्ट 2021 में बनाया है, उस डैम सेफ्टी एक्ट में इमरजेंसी एक्शन प्लान और उसका डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान भी एक मैंडेटरी ऑप्शन है, वो हर डैम यूनिट अपने लेवल पे बनाता है, उसमें सारे प्रोटोकॉल्स प्रोसीजर्स को लिख करके कंसर्निंग जो SDSO है और NDSO उसको जमा करना पड़ता है, तो सारा जो क्रियान्वयन है वो उसी एक्शन प्लान के हिसाब से ही ऑपरेट होता है।
1: मनी कुमार जी, जो बांध के जो डाउन स्ट्रीम में लोग रह रहे हैं उनके लिए सुरक्षा बहुत जरूरी होती है, क्योंकि कई बार वो पहाड़ी इलाकों में देखते हैं नदी सूखी है, अचानक पानी छोड़ा जाता है, तो उस स्थिति में इवैल्यूएशन के लिए या इवैक्यूएशन के लिए किस तरह की प्लानिंग होती है और वहाँ के लोगों को क्या किसी तरह का ट्रेनिंग दिया जाता है, मॉक ड्रिल किया जाता है, प्रशिक्षण या जन जागरूकता कार्यक्रम आदि किया जाता है, तो वो किस तरह का है?
2: NDA के प्रोटोकॉल के तहत आज के डेट में जितने भी डैम्स हैं उनका हम लोग डैम ब्रिज एनालिसिस करते हैं। डैम ब्रिज एनालिसिस या डैम ब्रेक एनालिसिस के आधार पे हम ये जानते हैं कि अगर डैम ब्रिज कर जाता है, चाहे जो भी सर्कमस्टांसेज हो, या तो एक्सट्रीम फ्लड हो, क्लाउड ब्रस्ट हो, ग्लोफ का इफेक्ट हो, एकाएक ज्यादा पानी आ जाता है, हालांकि हमारे डैम्स में उसका प्रोविजन रहता है, फिर भी अगर उस तरह के अगर सिचुएशंस आ जाते हैं उसके लिए हम लोग एक डैम ब्रेक एनालिसिस करते हैं। ये इसका प्रावधान NDSA में किया गया है, ये हर डैम्स के लिए आवश्यक होता है। और उस डैम ब्रेक एनालिसिस के बाद हम देखते हैं कि अगर डैम ब्रेक करता है, डैम फेलुअर होता है, तो उसका पानी डाउन स्ट्रीम में नीचे के क्षेत्र में कहाँ तक फैलता है, उसका एक्सटेंट कहाँ तक जाता है और वो पानी का जो जमाव होता है उसका क्या डेप्थ है, किस वेलोसिटी से वहाँ पहुँचता है, उसके अराइवल का समय क्या है, ये सारी जानकारी हम लोग उस एनालिसिस के आधार पे निकालते हैं और एक इमरजेंसी एक्शन प्लान बनता है और उस इमरजेंसी एक्शन प्लान में वो सारा चीज समाहित रहता है और अकॉर्डिंगली हम लोग एक प्लान इवैक्यूएशन का भी उसमें रखते हैं कि अगर इस टाइप की स्थिति आ जाती है, अगर ये हमारा एरिया इनंडेट हो जाता है तो वहाँ के लोगों को कैसे हम इवैक्यूएट करेंगे, और इसमें हमारा पूरा सिस्टम्स लगा होता है, हमारे केंद्रीय एजेंसी, राज्य स्तर की एजेंसी और लोकल प्रशासन और कम्युनिटी, ये सारे मिल के इस आपदा से हम लोग निजात पाते हैं। तो ये सारा प्रावधान किया हुआ है और आज की स्थिति में हम उसको करने में सक्षम है।
0: इसमें कुछ चीजें मैं जोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि मैं डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी में भी एक्सपर्ट रहा हूँ, तो नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी के साथ साथ इमरजेंट सिचुएशन में अगर कोई डिजास्टर आती है, अचानक फ्लड लेवल हो गया या ऊपर कोई लैंडस्लाइड हो गया या ग्लॉफ हो गया, तो उस सिचुएशन में

0: में डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बना हुआ है, क्योंकि डैम जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है वो तीन लेवल का स्ट्रक्चर भारत में बनाता है। ऊपर तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है जो नेशनल लेवल पे पॉलिसी बनाती है, गाइडलाइंस बनाती है, उसके बाद स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज बनी हुई है, इसके बाद जो लोकल जो प्रशासन है वहां पे डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है। और डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का ये मैंडेट होता है कि अपने क्षेत्र में डिस्ट्रिक्ट में अगर इस तरह के कोई डैम या क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बने हुए हैं तो वहां पे समय समय पे मॉक ड्रिल हो, एक प्रॉपर सिचुएशन को क्रिएट करके, जैसे मान लीजिए कि अचानक दुर्घटना हो जाए तो उस केस में लोकल कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया जाता है, लोकल जो वहां पे प्रधान होते हैं उनको बुलाया जाता है और एक पूरा मॉक ड्रिल किया जाता है कि उस सिचुएशन में कैसे करें। सपोज अगर इवैक्यूएशन मास इवैक्यूएशन प्लान करना है तो कैसे करें, तो उसमें पूरा डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी फुली इन्वॉल्व होता है,
1: उसमें लोगों को अवेयर
0: किया जाता है।
1: आजकल जलवायु परिवर्तन का प्रभाव हर जगह दिखने को आ रहा है, अत्यधिक वर्षा, अचानक बाढ़, फ्लड्स के भी आ जाते हैं। ऐसी स्थिति में आप दोनों के अनुसार अंत में जानना चाहेंगे कि विज्ञान, आधुनिक तकनीक, प्रभावी कानून और जन जागरूकता, इन चारों के समन्वय से भारत को बांध सुरक्षा के क्षेत्र में और अधिक सक्षम कैसे बनाया जा सकता है।
2: जहाँ तक बांध की सुरक्षा का सवाल है तो हमारे देश में नेशनल डैम सेफ्टी एक्ट 2021 बना है जिसका हम लोग पालन कर रहे हैं। 2021 के पहले वैसा कोई यूनिफॉर्म फ्रेमवर्क, लीगल फ्रेमवर्क नहीं था और जो भी होता था वो CWC केंद्रीय जल आयोग के गाइडलाइंस में किया जाता था। लेकिन ऐसा पाया गया कि बहुत सारे हमारे जो बांध हैं वो एक स्टेट के नहीं दो स्टेट के जुडिक्शन को कवर करते हैं, या फिर वैसी स्थिति में अगर कहीं कोई रिस्क है तो एक यूनिफॉर्म लीगल फ्रेमवर्क होना जरूरी होता है। तो ये सोचते हुए 2021 में एक लीगल फ्रेमवर्क तैयार किया गया, नेशनल लेवल पे एक कमेटी बनी और एक नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी का गठन किया गया। उसी तरह से फिर राज्य स्तर पे भी एक कमेटी है और कमेटी के अलावे एक ऑर्गेनाइजेशन स्टेट लेवल ऑर्गेनाइजेशन का भी गठन किया गया जिसे स्टेट SDSO के नाम से जाना जाता है। तो ये सारे चीज एक्ट के हिसाब से गठित किए गए हैं। अब रहा कि ये हमारे डैम्स के संचालन में मदद करते हैं और जो ओनर्स हैं इसको फॉलो अप करें, डैम सेफ्टी के लिए इसके प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें, इसका सर्विलेंस प्रॉपरली होना चाहिए, मॉनिटरिंग होना चाहिए, ऑपरेशन मेंटेनेंस होना चाहिए, ये सारे चीज हमारे जो अथॉरिटी है उसको देखते रहते हैं कि किसी तरह की उसमें कोई कमी तो नहीं है और उसमें वो मदद करते हैं।
0: जैसा कि आपने बताया क्लाइमेट चेंज जलवायु परिवर्तन बहुत बड़ी समस्या है और हमारे डैम जितने भी हैं बिकॉज बहुत सारा पानी उनमें स्टोर होता है, तो उसके लिए NDSE की जो गाइडलाइन है उसमें कई सारे प्रावधान है, जैसे कि CDSE है, कॉम्प्रिहेंसिव डैम सेफ्टी इवैल्यूएशन, वो अभी मैंडेटरी है सारे डैम्स को करना है और वो 2026 दिसंबर तक सारे डैम को कम्प्लीट करना है। अभी भारत सरकार में जितने भी स्टेट में डैम्स है सब लोगों ने भी CDSE करवाने का ऑलमोस्ट एकदम बीड़ा उठाया हुआ है। मैंने भी काफी सारे डैम में CDSE में मैं कार्यरत हूँ, पार्टिसिपेट भी किया है। जो डैम सेफ्टी के इश्यूज हैं बहुत ही कंसर्न में है और सारे डैम ऑपरेटर्स इवन भारत सरकार, राज्य सरकार, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज भी सेफ्टी को लेकर के कई सारे कदम उठा रहे हैं। इसमें कई सारे जो प्राइवेट कंपनीज हैं उसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं रिस्क असेसमेंट्स करने के लिए और इसमें जैसे कि 8-10 मैंडेटरी कंप्लायंस है, स्टडीज है, जैसे कि आपका CDSE है वो सबको करना है, इमरजेंसी एक्शन प्लान सबको बनाना है, डैम ब्रेक एनालिसिस सबको करना है, हजार्ड क्लासिफिकेशन होना अनिवार्य है क्योंकि डाउन स्ट्रीम में लोग रहते हैं तो रिमोट सेंसिंग GIS का उपयोग करके कैचमेंट एरिया में फ्लड लेवल कितना बढ़ेगा,
1: ड्रोन वगैरह से भी
0: असेसमेंट करते हैं। और पिछले करीब 8-10 साल में हमने बहुत सारे डैम फ्लड में डैम को टूटते हुए देखा, जैसे चमोली इवेंट 2021 हुआ, सिक्किम में 2023 में, और आपने आज जिक्र किया कि बहुत बड़ी बड़ी दुर्घटना हुई। तो इन सबको देखते हुए NDSE एक्ट में काफी सारे कंप्लायंस और स्टडीज ऑलरेडी एक्सपर्ट ने बताया हुआ है और उन सबका पालन भी डैम ऑपरेटर्स चाहे प्राइवेटली ओन डैम हो या गवर्नमेंट संचालित जो भी डैम हो उसको कर रहे हैं। और अभी भारत सरकार ने रिसेंटली करीब 100-101 लोगों की लिस्ट भी जारी किया एक्सपर्ट की और वो सब लोग अलग अलग प्रदेशों में जहाँ जैसा उनका हो रहा है वो लोग अपने हिसाब से उसको असेसमेंट में इन्वॉल्व है। भारत सरकार इस पे बहुत सचेत है और मैं तो ये कहूंगा कि पिछले 8-10 सालों में डैम सेफ्टी में भारत ने बहुत अच्छा काम किया, चूंकि एक ड्रिप प्रोग्राम वर्ल्ड बैंक फंडेड है जिसमें डैम के रिपेयर और सारी सुविधा की गई है, साथ में धर्मा पोर्टल जो डिजिटल रिकॉर्ड ऑफ डैम है, इसके पहले हमारे पास नहीं थे इतने रिकॉर्ड, तो धर्मा पोर्टल में करीब 6,600 से अधिक डैम जो है ऑलरेडी रिकॉर्ड में है और उसमें सब कुछ असेसमेंट वगैरह स्काडा सिस्टम के थ्रू सब कुछ हो रहा है।
1: निश्चित रूप से बांध के निर्माण के बाद बांध की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण होती है।

0: हैं। डॉक्टर विजेंद्र कुमार मिश्रा जी और श्री मणि कुमार जी, आप आकाशवाणी के स्टूडियो में आए और आपने बांध सुरक्षा, विज्ञान, तकनीक और जन जागरूकता विषय पर विस्तृत जानकारियां दी। आकाशवाणी आने के लिए और इन सब जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: इसी के साथ धरती आकाश का ये अंक यहीं संपन्न होता है। प्रस्तुतकर्ता थे दिलीप झा।
3: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल।

प्रेजेंट रॉक दी मोरमो नायब रईस जमहूर सी पी राधा कृष्णन व नखुत वजीर नरेंद्र मोदी बेदस्ताए हिंदी के दरबार रिहा मुश्तरकुल मुनाफे 2026 दर ग्लासगो स्कॉटलैंड बेहतरीन आरजू हाईरा दादेन तय पुस्ताइए रसान हाइये इज्तिमाही रैबरान मजकूर इतमान करदन के बाजी कुरान हिंद महारत अजम व वर्जिशकारी रा बा मुलहम साजी मिल्लत निशान ख्वानदाद व बे किश्वर शिकोह जलाल ख्वानदाद पायान बख्श अखबार अज रेडियो दिल्ली इंजॉय दिल्ली शनंदगान अजीज व इनफ

ಹೇ ಬಾಳ್ಕೆ ಬುದ್ಧ ಸಿರಿ ಇಟ್ಟ ಕರ್ಮ

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए देश के युवाओं को धन्यवाद दिया है। श्री मोदी ने युवाओं के जबरदस्त समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया।
1: थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू।
0: वीडियो को अब तक 30 करोड़ 30 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है। ये पहले 24 घंटों में सबसे अधिक देखा जाने वाला वीडियो है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए नया विधेयक संसद के मौजूदा सत्र में अगले सप्ताह पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। श्री मोदी ने बृहस्पतिवार को एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है। सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों से जुड़ी मांगों को लेकर कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल के साथ आज एक और दौर की बातचीत करेगी। इससे पहले कल भी नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह ने सीजेपी प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की थी। श्री नड्डा ने बैठक को सकारात्मक बताया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि संसद के बाहर मीडिया को दिए गए बयान के साथ एआई का दुरुपयोग कर छेड़छाड़ की गई और एक डीप फेक वीडियो तैयार कर उसे गलत सूचना फैलाने के उद्देश्य से प्रसारित किया गया। सोशल मीडिया पर साझा किए गए पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि इस मामले में आज सुबह चाणक्यपुरी पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि फर्जी वीडियो बनाने, प्रसारित करने या उसे बढ़ावा देने में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रहे उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल एनएस राजा सुब्रमणी ने कहा है कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर हो रहे प्रदर्शनों के कारण 30,000 सेना के जवानों ने इस्तीफा दे दिया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि ये वीडियो फर्जी और एआई से तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 के प्रतिभागियों से बातचीत करेंगे। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 400 से अधिक युवा प्रतिभागी प्रधानमंत्री से बातचीत करेंगे। भारत ने काला सागर में वाणिज्यिक पोत एमवी ओमोरफिम पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। हमले को अस्वीकार्य बताते हुए भारत ने सभी संबंधित पक्षों से समुद्री नौवहन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने अपना पहला पदक जीत लिया है। झंडू कुमार ने पैरा भारोत्तोलन की पुरुष हैवीवेट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। उन्होंने 190 किलोग्राम भार उठाकर तीसरा स्थान हासिल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एथलीट झंडू कुमार को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कुमार के प्रदर्शन को शानदार बताया और कहा कि ये उपलब्धि उनकी अदम्य शक्ति, अटूट दृढ़ संकल्प और वर्षों के अनुशासित प्रयासों का सशक्त उदाहरण है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण 6 दिनों तक स्थगित रहने के बाद वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा आज से दोबारा शुरू हो गई है। कश्मीर के संभागीय आयुक्त अंशुल गर्ग ने आकाशवाणी समाचार को ये जानकारी दी। वहीं असम में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। राज्य में 1,15,000 से अधिक लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली है। सबसे अधिक प्रभावित जिले शिवसागर, चराईदेव और जोरहाट हैं। राज्य में बाढ़ से मरने वालों की कुल संख्या 61 हो गई है। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। वहीं गुजरात में तेज बारिश के बाद बचाव और राहत कार्य युद्ध स्तर पर चलाए जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में राज्य के 265 क्षेत्रों में बारिश हुई है। राज्य राहत आयुक्त ने 5 मौतों की पुष्टि की है। मौसम विभाग ने कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आज मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Anuja Kumar. The Union Cabinet has approved a draft bill to set up fast-track courts and to ensure stricter punishment in cases of paper leaks and exam malpractices. The Cabinet meeting chaired by Prime Minister Narendra Modi at the Parliament House complex approved the draft bill. Sources told Akashwani News that the proposed legislation is expected to be introduced in the Parliament next week. Prime Minister Narendra Modi posted a fresh video message on his Instagram handle last night, thanking everyone for the responses and positive suggestions received to his previous video, where he had announced the government's decision to bring a strict law to punish those involved in paper leaks. In the fresh video message, Mr. Modi said the relations will continue with more bonding.
1: Thank you, friends. मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था, उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए. Thanks to everybody. ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा.
2: Mr. Modi created a new world record with the most views on a reel in 24 hours, garnering 303 million views as of now. The earlier record was 300 million views. Meanwhile, in a major bid to bring out serious examination reforms, the National Testing Agency NTA has terminated 47 officials from service. This is part of a complete overhaul of the NTA following controversy over paper leaks. Delhi police has constituted a special task force to investigate offences relating to paper leaks and other examination-related offences under the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. The government will hold another round of discussions with the CJP delegation today on its demands for reforms in the examination system and measures to prevent examination paper leaks. Union Ministers JP Nadda and Dr. Jitendra Singh met the CJP delegation in New Delhi yesterday. Talking to media after the meeting, Mr. Nadda said that during the meeting they gave a patient hearing to the demands of the CJP regarding reforms in the examination system. Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal today said that his remarks to the media outside Parliament had been maliciously doctored, using artificial intelligence to create and circulate a deepfake video in an attempt to spread misinformation. In a social media post, Mr. Goyal said he had filed a police complaint and an FIR has been registered at the Chanakipuri police station this morning. In Ladakh, Kargil War Memorial at Dras is fully prepared to host the grand celebrations of the 27th Kargil Vijay Divas, commemorating India's victory in Operation Vijay. The two-day commemorative events beginning today with a series of programs honoring the courage and supreme sacrifice of the Indian Armed Forces who laid down their lives during the 1999 Kargil War. Tomorrow, Defence Minister Rajnath Singh will lead the nation in paying homage to the martyrs of Operation Vijay. In Jammu and Kashmir, the annual Sri Amarnath Yatra and Sri Mata Vaishno Devi Yatra resumed today after remaining suspended for 6 days due to inclement weather conditions. The Yatris have been advised to strictly adhere to the advisories issued by the administrations for a safe pilgrimage. In Assam, more than 1,15,000 people have taken shelter in relief camps as the flood situation continues to remain grim, with the worst impact being felt in Sibasagar, Charaideo and Jorhat districts. 14 more flood-related deaths have been reported. Rescue and relief operations are being carried out on a war footing following the heavy rains in Gujarat. 5 deaths confirmed so far by State Relief Commissioner. The IMD has forecast very heavy rainfall today in parts over Gujarat, Konkan and Goa, Madhya Maharashtra, Odisha and Rajasthan. Dev Shayani Ashadhi Ekadashi, one of the most sacred observances dedicated to Lord Vishnu, is being observed today. Prime Minister Narendra Modi extended his greetings to the citizens on the sacred occasion. In men's cricket, India will take on hosts Zimbabwe in the second T20 international of the three-match series at Harare at 4:30 p.m. Indian time in the afternoon. In squash, India's Anahat Singh created history by reaching the women's singles final of the World Junior Championships after defeating Egypt's Barb Sameh 3-1 in the semi-final at Ontario in Canada. The 18-year-old became the second Indian player to enter the final of this prestigious tournament. And that is the end of this news bulletin.

0: घर आंगन।
1: जी हाँ, कार्यक्रम है घर आंगन। आप सुन रहे हैं एफएम गोल्ड चैनल एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप हमें सुन सकते हैं आकाशवाणी के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज़ पर और डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर भी। और आज के इस कार्यक्रम में हम हैं आपके साथ, मैं राधा पाठक
2: और मैं हूँ दीपा भूषण।
1: हम दोनों का प्यार भरा
2: नमस्कार। राधा कैसी हो?
1: बहुत अच्छी हूँ,
2: बहुत दिन बाद मुलाकात।
1: हाँ, आपकी मुस्कुराहट देख के तो वैसे भी मन में बहुत प्रसन्न हो जाता है।
2: और देखो राधा, मौसम सुहाना हो रहा है और हमारे श्रोतागण घर आंगन कार्यक्रम सुनने के साथ साथ सुहाने मौसम का भी आनंद ले रहे हैं।
1: और इस आनंद को और बढ़ाने के लिए हम घर आंगन कार्यक्रम में ले आए ढेर सारी काम की बातें और सुरीली खूबसूरत गीत। दीपा जी, कौन सा सुंदर विचार लेकर आई हैं आप?
2: बिल्कुल राधा, जैसा कि हम सब जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि जीवन में ज़्यादा रिश्ते होना ज़रूरी नहीं, बल्कि जो रिश्ते हैं, जो रिश्ते हमारे साथ हैं, उनमें जीवन यानी सच्चाई और अपनापन होना बहुत ज़रूरी है।
1: सच में दीपा, ये बहुत सुंदर संदेश है। जीवन में रिश्तों की संख्या नहीं, बल्कि उनमें प्रेम, विश्वास, ईमानदारी और अपनापन सबसे अधिक मायने रखता है। और जो रिश्ते दिल से जुड़े होते हैं, वही जीवन के सच्चे अर्थों में समृद्ध और सुखद बनाते हैं।

0: देखा ना, हम आ गए अपने कार्यक्रम घर आंगन में, जहां अपनी महिलाओं और श्रोताओं को हम ढेर सारी जानकारी देते हैं।
1: जी हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो आए हैं हम। देखिए ये गीत हमने सुना कोहिनूर फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में।
0: और दोस्तों, अब हम आज बात करेंगे मैदान की, मेडल की नहीं, बल्कि उस मजबूत व्यक्तित्व की जो मैदान से निकल कर आता है।
1: बिल्कुल, हम अपनी बेटियों की पढ़ाई, अच्छे स्कूल, करियर और भविष्य की बहुत चिंता करते हैं, लेकिन एक सवाल है, क्या हम उतना ही ध्यान इस बात पर देते हैं कि हमारी बेटियां किसी न किसी खेल से भी जुड़ी हों?
0: बिल्कुल दोस्तों, और यही तो बात है। अक्सर खेल को हम अक्सर सोचते हैं कि ये मनोरंजन या खाली समय बिताने का साधन है, लेकिन सच तो ये है कि खेल जीवन की सबसे अच्छी पाठशाला है।
1: बिल्कुल, और खेल जो है वो सिर्फ शरीर को मजबूत नहीं बनाते बल्कि मन और व्यक्तित्व को भी गढ़ते हैं। खेल सिखाते हैं अनुशासन, समय का महत्व, हार के बाद दोबारा उठना, जीत के बाद विनम्र रहना, सही समय पर सही निर्णय लेना, और सबसे बड़ी बात है दीपा, दूसरों के साथ मिलकर आगे बढ़ना।
0: बिल्कुल सही कहा राधा। और दोस्तों, खेल का मतलब केवल क्रिकेट, हॉकी या बैडमिंटन नहीं है। अगर आपकी बेटी को दौड़ना पसंद नहीं तो कोई बात नहीं, हो सकता है उसे शतरंज पसंद हो, किसी को तीरंदाजी अच्छी लगती है, किसी को शूटिंग, किसी को तैराकी।
1: और जब परिवार विश्वास करता है तो बेटियां कमाल करती हैं। हमारी बेटियां लगातार विश्व स्तर पर भारत का परचम लहरा रही हैं।
0: और राधा, इसके पीछे क्या है? एक ऐसा परिवार जिसने कहा खेलो, हम तुम्हारे साथ हैं, यही विश्वास किसी भी बेटी की सबसे बड़ी ताकत बन जाता है।
1: और दीपा, मुझे लगता है कि हर बेटी का लक्ष्य मेडल जीतना होना भी नहीं चाहिए। खेलना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे व्यक्तित्व निखरता है, आत्मविश्वास आता है, लोगों में घुलना मिलना सीखा जाता है, समाज को समझा जा सकता है, चुनौतियों का सामना किया जा सकता है और मानसिक रूप से मजबूती भी मिलती है।
0: और बिल्कुल आज राधा, बिल्कुल सही बात कही तुमने। और आज तनाव, प्रतिस्पर्धा और तेजी से बढ़ती दुनिया में मानसिक मजबूती सबसे बड़ी आवश्यकता है। खेल हमें सिखाते हैं कि हर हार अंत नहीं होती, बल्कि अगली जीत की तैयारी होती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही बात कि हर हार जो है वो अंत नहीं होती, क्योंकि जिंदगी में ये सबक बहुत जरूरी है कि हार अंत नहीं होती बल्कि अगली जीत की तैयारी होती है। याद रखिए दोस्तों, खेलों का सबसे बड़ा पुरस्कार मेडल नहीं होता, सबसे बड़ा पुरस्कार होता है एक स्वस्थ शरीर, एक सशक्त मन, सही निर्णय लेने की क्षमता,
0: बिल्कुल।
1: अनुशासित जीवन और सकारात्मक व्यक्तित्व।
0: तो आइए दोस्तों, आज हम एक छोटा सा संकल्प लेते हैं, अपनी बेटियों को सिर्फ पढ़ने का ही नहीं, खेलने का भी पूरा अवसर देंगे। क्योंकि जब एक बेटी खेलती है तो केवल एक खिलाड़ी नहीं बनती, वह जीवन की हर चुनौती का सामना करने वाली एक सशक्त नागरिक बनती है।

0: श्रोताओं, अभी आपने गीत सुना सच हुए सपने तेरे, फिल्म थी काला बाजार और गायिका थी आशा भोसले।
1: एफएम गोल पर चल रहा है कार्यक्रम, कौन सा कार्यक्रम चल रहा है जी, घर आंगन। और हम अपनी महिलाओं से, श्रोताओं से बातें कर रहे हैं ढेर सारी। आज है 25 जुलाई, जब मनाया जाता है विश्व डूबने से बचाव दिवस, यानी वर्ल्ड ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे। इस दिन का मुख्य उद्देश्य पानी में डूबने की घटनाओं और उससे होने वाले हादसों के प्रति जागरूकता को बढ़ाना है।
0: बिल्कुल राधा, तुमने सही जानकारी दी। और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार हर साल बहुत से लोग पानी में डूबने से अपनी जान गंवा देते हैं।
1: और इसके बचाव के उपाय भी बता दीजिए दीपा जी।
0: इसके बचाव के लिए पानी तक पहुंच को नियंत्रित करने के लिए बैरियर लगाना बहुत जरूरी है, बच्चों के लिए सुरक्षित स्थान प्रदान करना, तैराकी सिखाना और सुरक्षित बचाव तकनीकों का प्रशिक्षण देना राधा बहुत जरूरी
1: जैसे
0: है।
1: जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे कि खेल सीखना सिखाने चाहिए बच्चों को, हाँ, तो तैराकी तो भी उसी में आता है कि तैराकी भी हमें अपने बच्चों को जरूर सिखानी चाहिए।

0: ठंडी हवा काली घटा, ये गीत अभी आपने सुना। फिल्म थी मिस्टर एंड मिसेस 55। गायक कलाकार थे गीता दत्त और साथी। और राधा, अब तुम कहो तो कुमाऊं की बात
1: बिल्कुल
0: करें
1: बिल्कुल।
0: और एक गीत तुमने सुना होगा, बेड़ू पाको बारमासा सुनाया गया। ये
1: हाँ
0: कुमाऊं से बहुत
1: बिल्कुल,
0: फेमस गीत है और ये धुन सुनते ही मन जो है उत्तराखंड की हरी भरी वादियों में पहुंच जाता है। और दोस्तों, उत्तराखंड की पहचान सिर्फ उसके पहाड़, नदियाँ और लोकगीत ही नहीं, बल्कि उसकी समृद्ध सांस्कृतिक परंपराएं भी हैं। और ऐसी ही एक खूबसूरत परंपरा है पिछौड़ा, जिसकी आज हम बात करने वाले हैं
1: पिछौड़ा
0: राधा।
1: यानी दुपट्टा, जिसे विवाहित महिलाएं लहंगे या साड़ी के ऊपर ओढ़ती हैं। ये पीले और लाल रंग का होता है
0: बिल्कुल
1: और उस पे
0: बिल्कुल
1: कुछ
0: बिल्कुल
1: डिजाइनिंग होती है। एक सुंदर और पारंपरिक परिधान है। एक बात और मुझे याद आई यहाँ दीपा, कि दिल्ली में हम जो ये पिछौड़ा तरीके का दुपट्टा हम ओढ़ते हैं, जो हम दिल्ली के महिलाएं किसी भी त्योहार पे, उसे हम बोलते हैं पीलिया। वो
0: अच्छा,
1: उसी तरीके का होता है, बस थोड़ा सा डिजाइन चेंज होता है।
0: बिल्कुल राधा। और कुमाऊं में इसे विवाह, जनेऊ, नामकरण, देवी पूजन, हरेला, नवरात्र और दूसरे मांगलिक अवसरों पर महिलाएं बड़े सम्मान के साथ इसको धारण करती हैं। खासकर विवाह में दुल्हन को पिछौड़ा ओढ़ाने की परंपरा सौभाग्य और सुखी दाम्पत्य जीवन की मंगल कामना से भी जुड़ी है।
1: और दीपा, इसकी बनावट भी बहुत खास होती है।
0: बहुत खास।
1: पारंपरिक जो पिछौड़ा होता है, वो हल्के पीले या केसरे रंग के कपड़े पर बनाया जाता है। उस पर लकड़ी का नक्काशीदार मोहरों से लाल रंग के सुंदर डिजाइन छापे जाते हैं, और पीला और लाल रंग मिलके जो
0: बहुत
1: खूबसूरती
0: सुंदर,
1: आती है ना,
0: बहुत
1: वो
0: बहुत
1: बहुत ही खूबसूरत
0: बहुत
1: होता
0: प्यारा
1: है।
0: लगता है राधा। और इसके बीच में स्वस्तिक, सूर्य, चंद्रमा, शंख, घंटी, कलश और कमल जैसे शुभ प्रतीक बनाए जाते हैं, जो सुख, समृद्धि और मंगल का संदेश देते हैं।
1: वाह वाह वाह, यानी पिछौड़े का हर रंग और हर आकृति अपने आप में एक कहानी बताती है।
0: पर

0: महबूबा फिल्म का ये गीत हमने सुना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में। और राधा, हम फिर आ जाते हैं जो हम बात अभी कर रहे थे अपने श्रोताओं से पिछौड़े की, कुमाऊं के। और एक रोचक बात मैं और बताना चाहूँगी कि जो पहले पिछौड़ा जो था पूरी तरह से हाथ से ही बनाते थे, अब लकड़ी के ब्लॉकों से छपाई की जाती थी और प्राकृतिक रंगों का उपयोग होता था। आज भले ही आधुनिक तकनीक आ गई है, लेकिन आज भी हाथ से बने पारंपरिक पिछोड़े की पहचान और सम्मान आज भी कायम है। आज भी लोग उसी तरह से उसको देखते हैं।
1: मुझे
0: और
1: तो ये देखकर बहुत अच्छा लगता है दीपा, कि आज की युवा पीढ़ी भी अपनी संस्कृति से
0: बिल्कुल
1: जुड़ रही है, चाहे वो देश हो या विदेश। शादी और धार्मिक अवसरों पर गर्व से पिछौड़ा पहना जाता है।
0: बिल्कुल, और इसमें स्थानीय महिला स्वयं सहायता समूहों और शिल्पकारों का भी बड़ा योगदान है। वे इस पारंपरिक कला को जीवित रखे हुए हैं, इससे हमारे सांस्कृतिक विरासत सुरक्षित रहती है और स्थानीय लोगों को, राधा देखो, रोजगार भी मिल जाता
1: और
0: है।
1: पिछौड़ा जो है वो सिर्फ एक परिधान नहीं होता, बल्कि हमारी संस्कृति है, हमारी पहचान है, हमारी परंपरा है और हमारी सांस्कृतिक विरासत का जीवंत प्रतीक है, और जो आने वाली पीढ़ियों को अपनी जड़ों से जोड़ता
0: जोड़ता
1: है।
0: है।

0: अभी आपने फिल्म तुमसा नहीं देखा का एक गीत सुना। आवाजें थी मोहम्मद रफी और आशा भोसले दी की।
1: और दीपा, हम बात करेंगे अब एआई की। जी हाँ, आजकल
0: बिल्कुल
1: तो एआई बहुत चल रहा है,
0: बहुत बहुत
1: क्योंकि मशीनों में इंसानों जैसी सोचने और निर्णय लेने की क्षमता है। आज हमारे दैनिक जीवन को आसान और तेज और स्मार्ट बनाने के लिए जो एआई है वो बहुत प्रमुख साधन बन चुका है, पहले से ही है।
0: बिल्कुल
1: अब
0: पहले
1: गूगल
0: से
1: मैप्स खोलते हैं, हम मैप देखते हैं, कहीं जाते हैं, कोई नई भाषा सीखनी होती है, कोई भी हम सोशल मीडिया में गाने देखते हैं या फिल्में देखते हैं, वो सब एआई ही तो है।
0: AI
1: अब डिजिटल तकनीक जो है, ये हर पल बदलती दुनिया में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बड़ी वजह बनता जा रहा है। इसकी बहुत ज़रूरत होगी, हर समय इसकी ज़रूरत है हमें। लेकिन अब एआई से जुड़ी नई नई जानकारियाँ, ऐप्स और टूल्स की जो भरमार है ना, उसने तनाव को बढ़ा दिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि एआई हमारे काम को आसान बनाने के लिए आया है, लेकिन यदि इसका उपयोग संतुलित तरीके से न किया जाए तो मानसिक तनाव भी हो सकता है। हर समय नई तकनीक को अपनाने और उसके बारे में जानने की कोशिश लोगों को तनाव में डाल रही है। अब इसके कुछ उपाय आप दीपा जी बताइए।
0: हाँ, मैं बिल्कुल अपने श्रोताओं को इसके उपाय बताती हूँ। इसके लिए आप आवश्यक नोटिफिकेशन ही चालू रखें, स्क्रीन टाइम सीमित करें, काम के दौरान बीच बीच में छोटा सा ब्रेक जरूर लें, AI का उपयोग केवल आवश्यकता के अनुसार करें, हर नई तकनीक को तुरंत अपनाने का दबाव ना डालें, दिन में कुछ समय मोबाइल और इंटरनेट से पूरी तरह दूर रहें, ये तो बहुत
1: लेकिन
0: ज़रूरी
1: हाँ
0: है।
1: बिल्कुल, क्योंकि लेकिन डिजिटल दुनिया से पूरी तरह से जो दूरी बनाना ना, बिल्कुल संभव नहीं होता, लेकिन उसका संतुलित उपयोग हम कर सकते हैं। हमें
0: बिल्कुल
1: अपने दिमाग में सोचना होगा कि हम बैलेंस कैसे बनाएं, कब फोन का इस्तेमाल करना है, कब एआई का इस्तेमाल करना है, कब
0: बिल्कुल
1: नहीं करना है। यदि हम एआई और डिजिटल साधनों का समझदारी से उपयोग करेंगे तो इसके लाभ भी मिलेंगे और मानसिक तनाव से भी बचा जा सकता है।

0: हूँ। अभी आपने गीत सुना दिल तेरा दीवाना है सनम, फिल्म थी दिल तेरा दीवाना, गायक कलाकार थे लता मंगेशकर मोहम्मद रफी।
1: एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम चल रहा है घर आंगन, और आज का इस कार्यक्रम में हम हैं आपके साथ, मैं राधा पाठक
0: और मैं हूं दीपा भूषण।
1: बातें कर रहे हैं हम काम की, अपनी महिलाओं की, अपने श्रोताओं के काम की बातें हम आपको बता रहे हैं, और अब बात करेंगे बहुत जरूरी, जो किचन से भी जरूरी मतलब जुड़ी हुई है
0: क्या
1: दीपा,
0: बताने वाली हूं
1: और
0: राधा?
1: हम बताने वाले हैं गीला और सूखा कचरा प्रबंधन यानी अपशिष्ट प्रबंधन। अब देखिए घर में जो भी निकलता है कचरा तो उसे डिवाइड करना बहुत जरूरी है, अभी तो सारा इकट्ठा कर दिया जाता है, कई महिलाएं उस कचरे को अलग अलग भी करती हैं, बहुत काबिले तारीफ है ये बात कि वो अलग अलग रखती हैं, लेकिन जिन्हें नहीं पता उन्हें हम बता देते हैं कि गीला और सूखा कचरा प्रबंधन दो मुख्य हिस्से हैं। गीला कचरा सड़ने वाला जैविक कचरा होता है जिससे खाद बनती है जो हरे डिब्बे में जाता है, और सूखा कचरा नहीं सड़ने वाला रिसाइकिल योग्य कचरा होता है, वो नीले डब्बा होता है, इसे अलग रखना पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी है।
0: दोस्तों जो गीला कचरा है ये पूरी तरह से जैविक होता है और प्राकृतिक रूप से सड़ जाता है। इसका उपयोग खाद बनाने के लिए किया जाता है, जैसे फलों और सब्जियों के छिलके, बचा हुआ खाना, चाय की पत्तियां, अंडे के छिलके और पौधों की पत्तियां। गीले कचरे के लिए हम हरा डस्टबिन का उपयोग करते हैं।
1: बिल्कुल सही बताया दीपा, क्योंकि जैसे घास का रंग हरा होता है ना, ऐसे सोचा जा सकता है कि हम उसे खाद बना देंगे तो हरा डस्टबिन हमें याद रहेगा, और जो सूखा कचरा होता है ड्राई वेस्ट वो नीला डस्टबिन में जाता है जिसे

0: जाता है।
1: इसलिए अपने किचन में और घर में हर जगह ध्यान रखिए कि गीला कचरा हमें अलग रखना है
0: और
1: और सूखा
0: सूखा
1: कचरा अलग।
0: अलग।
2: तुम्हें
0: हाँ
2: क्या चुप रहूं,
0: ना
2: दिल में मेरे आज क्या है।
0: क्या है।

0: बिल्कुल कहना है और अपने दिल में जो भी बात है वो हमारे श्रोताओं को भी कहनी है कि ये कार्यक्रम उन्हें हमारा कैसा लग रहा
1: कैसा
0: है। हमारी
1: लगा?
0: ईमेल आईडी पे fmgoalga@gmail.com पे बता देना है कि ये कार्यक्रम कैसा लगता है और क्या क्या चाहते हैं उस कार्यक्रम में। ये गीत हमने लिया था दीवार फिल्म से किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में।
1: और राधा, बारिश का मौसम है, देखो कभी ना कभी घूम फिर के बारिश आ रही है, कभी धूप भी आ जा रही है,
0: और दिल्ली में कहीं बारिश हो रही है कहीं नहीं हो रही है और मौसम बड़ा सुहावना है। पर
1: बहुत सुहावना। और राधा, बरसात की रिमझिम फुहारें हों और ठेले पर ताजे ताजे जामुन दिख जाएं, तो मन अपने आप उनकी ओर खींचा चला जाता है।
0: बिल्कुल दीपा, और जामुन खाते ही सबसे पहले जीभ का जो बैंगनी हो जाना है ना वो याद आता है। बचपन में तो हम सब एक दूसरे को जीभ दिखाकर खूब
1: बहुत
0: हंसते थे।
1: हंसते थे, बहुत सही कहा। लेकिन जामुन सिर्फ बचपन की यादें ही नहीं, सेहत का भी खजाना है। आयुर्वेद में इसे एक गुणकारी मौसमी फल माना गया है।
0: सबसे अच्छी बात यह है कि स्वादिष्ट होने के साथ साथ पौष्टिक भी है। इसमें फाइबर, विटामिन सी, आयरन, एंटीऑक्सीडेंट जैसे कई पोषक तत्व पाए जाते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा राधा। और आयुर्वेद में इसके बीजों का चूर्ण मधुमेह के मरीजों के लिए रामबाण माना जाता है। इसके एंटीऑक्सीडेंट के गुण त्वचा में चमक लाते हैं, साथ ही विटामिन सी आंखों की रोशनी के लिए अच्छा होता है।
0: यही कारण है दीपा कि बरसात के मौसम में

0: जामुन का सेवन शरीर को ताजगी देने के साथ साथ संतुलित आहार का भी अच्छा हिस्सा माना जाता है। और मैं बताऊं रहा था, जामुन खाने के साथ साथ बहुत से लोग घर पर जामुन का शरबत भी बनाते हैं। साथ ही इसमें मौजूद फाइबर पाचन तंत्र में सहायक माना जाता है। मौसम के ताजे फल हमारे भोजन को और भी पौष्टिक बना देते
1: और
0: हैं।
1: एंटीऑक्सीडेंट शरीर की कोशिकाओं की सुरक्षा में भी अपनी भूमिका निभाते हैं। और कहा जाता है कि जो फल जिस मौसम में मिले उसका आनंद उसी मौसम में लेना चाहिए।
0: तो दोस्तों, इस बरसात में जामुन जैसे ताजे और मौसमी फलों को जरूर खाएं, और हाँ, खाने से पहले इन्हें अच्छी तरह धोना ना भूलें। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और प्रकृति के इन अनमोल उपहारों का आनंद लीजिए।

0: लव इन टोक्यो फिल्म में अभी आप लता मंगेशकर को सुन रहे हैं और कार्यक्रम का ये अंतिम गीत है दीपा, और हम चाहते हैं श्रोताओं से इजाजत,
1: और हम भी सायोनारा कहें।
0: सायोनारा, नमस्कार, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।

Pakinggan. आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा आपका घर आंगन। घर आंगन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। असम में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। राज्य में 1,15,000 से अधिक लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली है। सबसे अधिक प्रभावित जिले शिवसागर, चराईदेव और जोरहाट हैं। राज्य में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 61 हो गई है। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। वहीं गुजरात में तेज बारिश के बाद बचाव और राहत कार्य युद्ध स्तर पर चलाए जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में राज्य के 265 क्षेत्रों में बारिश हुई है। राज्य राहत आयुक्त ने 5 मौतों की पुष्टि की है। मौसम विभाग ने कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, दक्षिण आंध्र कर्नाटक और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आज मध्यम से तेज बारिश की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामले में सख्त कानून लाने को लेकर जारी किए गए अपने वीडियो संदेश पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए देश के युवाओं को धन्यवाद दिया है। श्री मोदी ने युवाओं के जबरदस्त समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया।
1: थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू।
0: इस वीडियो को अब तक 30 करोड़ 30 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है। ये पहले 24 घंटों में सबसे अधिक देखा जाने वाला वीडियो है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए नया विधेयक संसद के मौजूदा सत्र में अगले सप्ताह पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दी है। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई।

इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों से जुड़ी मांगों को लेकर कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल के साथ आज एक और दौर की बातचीत करेगी। इससे पहले कल भी नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह ने सीजेपी प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की थी। श्री नड्डा ने इस बैठक को सकारात्मक बताया था। सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई की जाएगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि संसद के बाहर मीडिया को दिए गए बयान के साथ एआई का दुरुपयोग कर छेड़छाड़ की गई और एक डीप फेक वीडियो तैयार कर उसे गलत सूचना फैलाने के उद्देश्य से प्रसारित किया गया। सोशल मीडिया पर साझा किए गए पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि इस मामले में आज सुबह चाणक्यपुरी पुलिस थाने में FIR दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि फर्जी वीडियो बनाने, प्रसारित करने या उसे बढ़ावा देने में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रहे उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल NS राजा सुब्रमणि ने कहा है कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर हो रहे प्रदर्शनों के कारण 30,000 सेना के जवानों ने इस्तीफा दे दिया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि ये वीडियो फर्जी है और AI से तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा से टेलीफोन पर बातचीत की और राज्य में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। सोशल मीडिया पर पोस्ट में श्री शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें राहत पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्यों में केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। श्री शर्मा ने कहा कि असम के लोग इस कठिन समय में प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन और अटूट समर्थन के लिए उनके प्रति अत्यंत आभारी हैं। प्रधानमंत्री मोदी कल शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम से प्रतिभागियों से बातचीत करेंगे। इस अवसर पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 400 से अधिक युवा प्रतिभागी प्रधानमंत्री से बातचीत करेंगे। खेलों में ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने अपना पहला पदक जीत लिया है। झंडू कुमार ने पैरा भारोत्तोलन की पुरुष हैवीवेट स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। उन्होंने 190 किलोग्राम भार उठाकर तीसरा पदक जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एथलीट झंडू कुमार को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कुमार के प्रदर्शन को शानदार बताया और कहा कि ये उपलब्धि उनके अदम्य शक्ति, अटूट दृढ़ संकल्प और वर्षों के अनुशासित प्रयासों का सशक्त उदाहरण है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, चैनल है आकाशवाणी का इंद्रप्रस्थ, और मैं हूं आपकी रेडियो साथी दुर्गेश सारस्वत। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हिंदी सिनेमा में कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो समय बीत जाने के बाद भी दिलों में अपनी जगह बनाए रखती हैं। बिल्कुल, हम ऐसी ही कई सारी फिल्म आपके साथ साझा करते हैं इस कार्यक्रम में, और आज भी हम एक ऐसी ही कालजयी फिल्म के बारे में बात करेंगे जिसने हिंदी सिनेमा को एक नई फिल्म की कहानी से जोड़ दिया, एक नए आत्मविश्वास और मानवीय संवेदनाओं से जोड़ दिया, एक ऐसी मिसाल जो आज भी दर्शकों के मन को छू जाती है। तो चलिए इस फिल्म को इस गीत से पहचानने की कोशिश कीजिए कि हम आज किस फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं।

जी बिल्कुल ठीक पहचाना आपने श्रोताओं, ये फिल्म है दिल एक मंदिर। साल 1963 में आई इस फिल्म का निर्देशन किया था सीवी श्रीधर ने, और फिल्म में राजेंद्र कुमार राजकुमार और मीना कुमारी ने अपने सशक्त अभिनय से कहानी को जीवंत बना दिया। वहीं अगर हम संगीत की बात करें तो यहाँ शंकर जयकिशन के मधुर संगीत और शैलेंद्र और हसरत जयपुरी के गीतों ने इस फिल्म को अमर बना दिया। आज के सफर में हम और आप कई सारे ऐसे नगमे सुनेंगे जो इस दिल एक मंदिर की कहानी के चुनिंदा गीत हैं, और उनसे जुड़ी कुछ रोचक बातें भी करेंगे और इस कहानी के बारे में भी जानकारी देंगे। शुरुआत करते हैं उस मधुर गीत से जो प्रेम की कोमल भावनाओं से बेहद खूबसूरती से अभिव्यक्त करता है। प्रस्तुत है फिल्म दिल एक मंदिर का ये गीत।

तो दोस्तों, ये था दिल एक मंदिर का एक बहुत ही शानदार गीत, जिसे सुनकर आज भी दिल में पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। तो चलते हैं फिल्म की कहानी की तरफ।

कहानी एक ऐसे दंपत्ति की है जो प्यार में, सच्चे प्यार में डूबे हुए होते हैं। कहते हैं कि सच्चा प्यार केवल साथ निभाने का नाम नहीं होता, बल्कि हर मुश्किल में एक दूसरे के लिए त्याग करने का नाम होता है। और ऐसी ही भावनाओं से भरी फिल्म है ये दिल एक मंदिर की कहानी। कहानी एक शादीशुदा जिंदगी और प्यार और विश्वास से भरी हुई है, जिसमें एक दंपत्ति होता है जिनकी ज़िंदगी में प्यार और विश्वास कूट कूट के भरा होता है। लेकिन अचानक उनकी खुशियों पर संकट आ जाता है जब कहानी में पति का किरदार निभाने वाले अभिनेता की गंभीर बीमारी की चपेट में आ जाते हैं। इलाज की जिम्मेदारी होती है एक मशहूर डॉक्टर के हाथों में। आखिरकार कहानी में भावनात्मक मोड़ तब आता है जब पता चलता है कि ये जो डॉक्टर हैं वो कभी पत्नी के पुराने प्रेमी रह चुके हैं। अब डॉक्टर के सामने एक कठिन परीक्षा है, क्या वह अपने पुराने प्रेम को याद करेगा या अपने पेशे की शपथ निभाकर मरीज की जान बचाएगा। कहानी का अगला भाग हम आपको इस गीत के बाद बताएंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ।

तो दोस्तों, इस गीत से पहले हम बात कर रहे थे फिल्म की कहानी की, जिसमें डॉक्टर साहब के पास ये कश्मकश होती है कि वो अपने प्यार के साथ जाएं या फिर अपने पेशे के साथ। वहीं दूसरी ओर पत्नी अपने पति के प्रति पूरी तरह समर्पित रहती है और हर परिस्थिति में उसका साथ नहीं छोड़ती। तो आखिरकार डॉक्टर अपने व्यक्तिगत भावनाओं से ऊपर उठकर अपना कर्तव्य निभाते हैं और मरीज का सफल इलाज करते हैं। आखिरकार फिल्म का संदेश भी यही है कि जो सच्चा प्रेम होता है श्रोताओं, त्याग, ईमानदारी और कर्तव्य में छिपा होता है। रिश्तों की जो मजबूती होती है ना, वो विश्वास और समर्पण से बनती है, ना कि केवल भावनाओं से। ऐसी ही न जाने हिंदी सिनेमा में कितनी फिल्मों की कहानी के बारे में हम आपको बता चुके हैं, लेकिन कुछ फिल्में और उनके संगीत ऐसे होते हैं जो समय के साथ कितनी भी समय निकल जाए वो बदलते नहीं हैं। समय ज़रूर बदलता है, तकनीक बदलती है, लेकिन जो अच्छा संगीत होता है ना, वो अपना आकर्षण कभी भी होता नहीं है या कम नहीं होने देता। यही एक कारण है कि दिल एक मंदिर के गीत जो हैं, आज भी रेडियो, संगीत मंचों और श्रोताओं की यादों में उतने ही ताज़ा हैं जैसे ही।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे. सो इजी.
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए. RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए.

तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये गीत ज़रूर पसंद आया होगा। सुमन कल्याणपुर की आवाज़ और शंकर जयकिशन का संगीत। अपने भाव, संगीत और गायकी के कारण ऐसे तमाम गीत आज भी श्रोताओं की पसंद बने हुए हैं। आज के कार्यक्रम एक ही फिल्म से मैं बस इतना ही। उम्मीद है कि ये फिल्म दिल एक मंदिर और इससे जुड़े सदाबहार गीत और उनकी कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अपनी प्रतिक्रियाएं हमें अवश्य भेजिए। अगले अंक में आपसे फिर मिलेंगे एक और यादगार फिल्म और उसके मधुर गीतों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी दुर्गेश सारस्वत को दीजिए अनुमति। नमस्कार। चलते चलते सुनते हैं ये इसी फिल्म का एक और प्यारा सा गीत।

0: 4 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ 7 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਕੁਐਸ਼ ਖਿਡਾਰਨ ਅਨਾਹਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਜੂਨੀਅਰ ਸਕੁਐਸ਼ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸਿੰਗਲਜ਼ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਮਿਸਰ ਦੀ ਬਾਬ ਸਮੇਰ ਨੂੰ 3-1 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਨਾਹਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮਿਸਰ ਦੀ ਰੁਕਾਇਆ ਸਲੈਮ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਮੈਚ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਤੀ 10:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਣ ਲਓ। ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ CJP ਦੇ ਵਫਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗੀ। ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ 27ਵੇਂ ਕਾਰਗਿਲ ਵਿਜੈ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨਾਂ ਸਮਾਰੋਹ ਅੱਜ ਦਰਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮੰਤ ਬਿਸਵ ਸਰਮਾ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਨਾਥ ਜੀ ਯਾਤਰਾ ਲਗਾਤਾਰ 6 ਦਿਨ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਵਿਚਕਾਰ 3 T20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮੈਚ ਅੱਜ ਹਰਾਰੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਕੁਐਸ਼ ਖਿਡਾਰਨ ਅਨਾਹਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਜੂਨੀਅਰ ਸਕੁਐਸ਼ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਸਿੰਗਲਜ਼ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸ਼ਾਮੀ 6:20 'ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਨਮਸਕਾਰ।
1: ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ 'ਤੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 1:50 ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ ਉਰਦੂ ਸਮਾਚਾਰ।
2: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं हबीब रहमान। आसाम में सैलाब की सूरत हाल नाजुक बताई जाती है। मरने वालों की तादाद बढ़कर 61 तक पहुंच गई है। 1 लाख से ज्यादा अफराद ने इमदादी कैंपों में पनाह ले रखी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हर मुमकिन इमदाद का यकीन दिलाया है। गुजरात में बारिश से मुतासर इलाकों में बचाव और इमदादी काम जोर शोर से जारी है। भारतीय साहिली मुहाफिजों ने 170 महसूर अफराद को बचाया है। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ यात्रा और श्री माता वैष्णो देवी यात्रा फिर से शुरू हो गई है। खराब मौसम की वजह से 6 दिन से ये यात्रा मुअत्तल थी। आज सरकार और CJP के दरमियान इम्तिहानात में इस्लाहात और पेपर लीक की रोकथाम के इकदाम पर तीसरे दौर की गुफ्तगू होगी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 4 खसूसी अदालतें नामजद की हैं, जिनमें पेपर लीक और मुतालिका बदुदुमानियों के मामलात की तेजी से समाप्त होगी। भारत की अनाहत सिंह ओंटारियो में स्कॉश की खवातीन की आलमी जूनियर चैंपियनशिप के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। और भारत और जिम्बाब्वे की मर्दों की क्रिकेट टीम के दरमियान आज तीसरे पहर हरारे में दूसरा T20 मैच खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। आसाम में सैलाब की सूरत हाल बदस्तूर संगीन बताई जाती है। वहां 1,15,000 से ज्यादा लोगों ने इमदादी कैंपों में पनाह ले रखी है। खबरों में कहा गया है कि ये शिवसागर, चराईदेव और जोरहाट जिले में सबसे ज्यादा मुतासिर हुए हैं। मजीद 14 अफराद के हिलाक होने की खबर मिलने के बाद सैलाब से वाबस्ता वाकयात में मरने वालों की तादाद बढ़कर 61 हो गई है। धीखू, दिसांग और धानसीरी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिससे सूरत हाल और बिगड़ गई है। बचाव इमदादी काम जारी हैं। आफात से निमटने वाली टीमें और जिला हुक्काम मुतासर इलाकों पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्वा सरमा से टेलीफोन पर बात की और रियासत में सैलाब की सूरत हाल का जायजा लिया। जनाब शर्मा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि वजीर आजम ने सैलाब की तबाहकारियों और इमदादी कामों की पेशरफ्त वगैरह के बारे में जानकारी हासिल की है। उन्होंने कहा है कि वजीर आजम ने बाजाबादकारी, तामीर नो की कोशिशों और इमदादी कामों के लिए मरकजी सरकार की तरफ से हर मुमकिन इमदाद का यकीन दिलाया है। उधर गुजरात में मूसलाधार बारिश के बाद बचाव और इमदादी काम जंगी पैमाने पर जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 265 तालुका में बारिश हुई है। रियासत की इमदाद से मुतालिक कमिश्नर ने बारिश से वाबस्ता वाकयात में 5 अफराद

0: की जाने तलफ होने की तस्दीक की है। खबरों के मुताबिक भारत के साहिली मुहाफिजों ने 170 महसूर अफराद को बचाया है। हुकाम ने बचाव और इमदादी काम तेज कर दिए हैं और मुतासर इलाकों के हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। जम्मू और कश्मीर में सालाना श्री अमरनाथ यात्रा और श्री माता वैष्णो देवी यात्रा आज फिर से शुरू हो गई है। खराब मौसम की वजह से 6 दिन मुअत्तल रहने के बाद आज से ये यात्रा शुरू हुई है। हुक्काम हालात पर लगातार नजर रखे हुए हैं ताकि यात्रियों के तहफ्फुज़ को यकीनी बनाया जा सके और यात्रा खुशउसलूबी से जारी रह सके। यात्रियों को मशवरा दिया गया है कि वो इंतजामिया की तरफ से जारी हिदायात पर सख्ती से अमल करें। नायब सदर सीपी राधाकृष्णन ने आज कहा है कि ऐवान में गुजारा जाने वाला हर दिन, हर घंटा, हर मिनट और हर लम्हा जमहूरियत को मजबूत बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। नई दिल्ली में राज्यसभा के 9 मुंतखब और नामजद अरकान के लिए मुनाकिदा 2 रोजा तारुफी व तरबियती प्रोग्राम की इफ्तताही तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बहस मुबाहसा हमेशा किसी नतीजे और फैसले तक पहुंचना चाहिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज आषाढ़ी एकादशी के पवित्र मौके पर शहरियों को अपनी नेक ख्वाहिशात पेश की। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि ये शुभ दिन अकीदत और हमदर्दी के अबदी पैगाम का है। वजीर आजम ने दुआ की कि भगवान विट्ठल का आशीर्वाद सभी के लिए खुशी, भाईचारा और खुशहाली लेकर आए और मुल्क को एक बेहतर मुआशरे की जानिब रहनुमाई करे। हुकूमत आज सहपहर नई दिल्ली में CJP के वफद के साथ तीसरे दौर की बातचीत करेगी। इस बातचीत में इम्तिहान के निजाम में इस्लाहात और पेपर लीक को रोकने के इकदामात पर तबादले ख्याल किया जाएगा। ये मीटिंग सहपहर 3:30 बजे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मुनाकिद होगी। इससे कबल मरकजी वजरा JP नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में CJP के वफद से मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए JP नड्डा ने कहा कि हुकूमत ने इम्तिहान के निजाम में इस्लाहात से मुतालिक CJP के मुतालबात को पूरी संजीदगी और तवज्जो से सुना है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 4 खसूसी अदालतों को नामजद किया है जिनमें इम्तहानात का पर्चा लीक होने और मुतालिका बदउनवानियों के मामलात की तेजी से समाअत की जाएगी। यह हिदायत दी गई है कि फर्द जुर्म दाखिल होने के 3 महीने के अंदर अंदर समाअत मुकम्मल की जाए। कायम मकाम चीफ जस्टिस विवेक रूसिया ने भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर की जिला और एडिशनल सेशन अदालतों को खसूसी अदालत नामजद किया है। इससे पहले मरकज ने इम्तिहानात से मुतालिक बदउनवानियों के मामलात की जल्द समाअत का यकीन दिलाया था और वजीर आला मोहन यादव ने भी 4 शहरों में खसूसी अदालतें बनाने का ऐलान किया था। लद्दाख में 27वीं करगिल विजय दिवस की मुनासबत से 2 रोजा यादगारी तकरीबात का आगाज आज दरास में हुआ। इन तकरीबात का मकसद ऑपरेशन विजय में भारत की फतेह को याद करना और 1999 की करगिल जंग में अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले शहीदों को खराज अकीदत पेश करना है। इस मौके पर युद्ध संस्मरण प्रोग्राम का इनेकाद किया गया जिसमें ऑपरेशन विजय पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म, बहादुर फौजियों को खराज तहसीन, शहीदों के अहले खाना से मुलाकातें और जंग में शामिल फौजियों की तजुर्बात शामिल थे। कल वजीर दफा राजनाथ सिंह करगिल विजय दिवस की मरकजी तकरीबात की क्यादत करेंगे और करगिल जंगी यादगार पर शहीदों को खराज अकीदत पेश करेंगे।
1: द्रास का कारगिल वॉर मेमोरियल 27वें कारगिल विजय दिवस की तकरीब के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। शहदा की याद में तामीर किए गए इस यादगार को खुसूसी तौर पर सजाया गया है। 2 रोजा तकरीबात का आगाज आज युद्ध संस्मरण गौरव में संस्कृति और शौर्य संध्या जैसे प्रोग्रामों के साथ हो रहा है। कल 26 जुलाई को वजीर दिफा राजनाथ सिंह मेहमान खुसूसी की हैसियत से श्रद्धांजलि समारोह में शिरकत करेंगे और करगिल जंग के अजीम शहदा को खराज अकीदत पेश करेंगे। कारगिल विजय दिवस मुल्क के बहादुर जवानों के शुजात, कुर्बानी और हुब्बुल वतनी को सलाम पेश करने का एक बावकार मौका है। कारगिल से आकाशवाणी समाचार के लिए मैं इनायत अली।
0: उड़ीसा का पवित्र शहर पुरी आज शाम सालाना रथ यात्रा की सबसे शानदार और अहम रसूमात में से एक सुनहरी लिबास की तकरीब का गवाह बनने जा रहा है। इस मौके पर भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा को शानदार सुनहरी लिबास और जेवरात से आरास्ता किया जाएगा। लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने मांग की है कि वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान को काबीना से हटाया जाए। आज नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस

0: रहनुमा ने यह मुतालबा भी किया कि एहतजाज के दौरान जो लोग तलबा पर मुबैना तौर पर हमले के जिम्मेदार हैं उनकी जवाबदेही की जाए। भारत की स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने कैनेडा के ओंटारियो में मिस्र की बारब सामह को सेमीफाइनल में 3-1 से हराकर आलमी जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के खवातीन सिंगल्स फाइनल में पहुंचकर तारीख रकम कर दी है। भारत की 18 साल अनाहत इस अहम जूनियर मुकाबले के फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। इससे पहले 2005 में जोशीना चिनप्पा ने यह कामयाबी हासिल की थी। अब खिताबी मुकाबले में उनका सामना आज रात मिस्र की रुकैया सालिम से होगा। तवक्को है कि यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 10:30 बजे होगा। मर्दों के क्रिकेट में आज हरारे में भारत 3 मैचों की T20 सीरीज के दूसरे मैच में मेजबान जिम्बाब्वे से मुकाबला करेगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 4:30 बजे शुरू होगा। आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। आसाम में सैलाब की सूरत हाल नाजुक बताई जाती है। मरने वालों की तादाद बढ़कर 61 तक पहुंच गई है। 1 लाख से ज्यादा अफराद ने इमदादी कैंपों में पनाह ले रखी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हर मुमकिन इमदाद का यकीन दिलाया है। गुजरात में बारिश से मुतासर इलाकों में बचाव और इमदादी काम जोरों शोर से जारी है। भारतीय साहली मुहाफिजों ने 170 महसूर अफराद को बचाया है। जम्मू और कश्मीर में श्री अमरनाथ यात्रा और श्री माता वैष्णो देवी यात्रा फिर से शुरू हो गई है। खराब मौसम की वजह से 6 दिन से ये यात्रा मुअत्तल थी। आज सरकार और CJP के वक्त के दरमियान इम्तिहानात में इस्लाहात और पेपर लीक की रोकथाम के इकदाम पर तीसरे दौर की गुफ्तगू होगी। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 4 खसूसी अदालतें नामजद की हैं जिनमें पेपर लीक और मुतल्लिका बदउनवानियों के मामलों की तेजी से समाप्त होगी। भारत की अनाहत सिंह ओंटारियो में स्क्वाश की खवातीन के आलमी जूनियर शिप के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। भारत और जिम्बाब्वे की मर्दों की क्रिकेट टीम के दरमियान आज तीसरे पहर हरारे में दूसरा T20 मैच खेला जाएगा। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: Good afternoon. This is Akashvani. I am Anuja Kumar with the midday news. The headlines. Flood situation in Assam remains critical as death toll reaches 61. Over 1 lakh people take shelter in relief camps. Prime Minister Narendra Modi assures all possible assistance. Rescue and relief operations in full swing in rain-hit Gujarat. Over 40,000 people evacuated. Shri Amarnath Yatra and Shri Mata Vaishno Devi Yatra in Jammu and Kashmir resume after remaining suspended for 6 days due to inclement weather. Government to hold third round of talks with CJP delegation on exam reforms and paper leak prevention measures this afternoon. Madhya Pradesh High Court designates 4 special fast-track courts for trial of cases relating to paper leak and related irregularities. In squash, India's Anahat Singh enters women's singles final of World Junior Championships at Ontario. And in men's cricket, India to take on hosts Zimbabwe in second T20 at Harare this afternoon. And now the news in detail. The flood situation in Assam remains critical with over 1,15,000 people taking shelter in relief camps. Sibsagar, Charaideo and Jorhat are the worst affected districts. 14 more flood-related deaths have been reported, taking the state's flood death toll to 61. The Diko, Disang and Dhansiri rivers continue to flow above the danger mark, worsening the situation. Relief and rescue operations are underway, with disaster response teams and district authorities providing assistance and closely monitoring the affected areas. Prime Minister Narendra Modi today held a telephonic conversation with Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma and reviewed the flood situation in the state. In a social media post, Mr. Sarma said the Prime Minister sought an update on the extent of the devastation, the progress of relief operations and the challenges being faced on the ground. He said that Prime Minister Modi assured him of every possible assistance from the central government to support the ongoing relief, rehabilitation and reconstruction efforts. Mr. Sarma also said that the people of Assam are deeply grateful to the Prime Minister for his reassurance and steadfast support during this difficult time. In Gujarat, rescue and relief operations are underway on a war footing following heavy rainfall across the state. Severe monsoon conditions continue in the state with heavy rainfall lashing several

0: Cricket India will take on hosts Zimbabwe in the second T20 international of this three-match series at Harare today. The match will begin at 4:30 p.m. in the afternoon. The visitors took 1-0 lead in the game after a dominant 7-wicket win in the opening match on Thursday. In squash, India's Anahat Singh created history by reaching the women's singles final of the World Junior Championships after defeating Egypt's Barb Same 3-1 in the semi-final at Ontario in Canada. The 18-year-old became the second Indian player to enter the final of the prestigious junior tournament after veteran Joshna Chinnappa achieved the feat in 2005. Anahat will now face Egypt's Rukaiya Salem in the title clash at the same venue tonight. The match is expected to begin at around 10:30 p.m. Indian Standard Time. India opened its medal tally at the 2026 Commonwealth Games in Glasgow last night after a para-athlete, Jhandu Kumar, clinched the bronze medal in the men's heavyweight para-powerlifting. Prime Minister Narendra Modi congratulated the para-athlete on the feat. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Flood situation in Assam remains critical as death toll reaches 61. Over 1 lakh people take shelter in relief camps. Prime Minister Narendra Modi assures all possible assistance. Rescue and relief operations in full swing in rain-hit Gujarat. Over 40,000 people evacuated. Sri Amarnath Yatra and Sri Mata Vaishno Devi Yatra in Jammu and Kashmir resume after remaining suspended for 6 days due to inclement weather. Government to hold third round of talks with CJP delegation on exam reforms and paper leak prevention measures this afternoon. Madhya Pradesh High Court designates 4 special fast-track courts for trial of cases relating to paper leak and related irregularities. And in men's cricket, India to take on hosts Zimbabwe in second T20 at Harare this afternoon. And with that, we end the midday news.
1: Namaskar, Akashwani se dopahar samachar ke saath main Farhat Naz. असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर, मरने वालों की संख्या 61 हुई, 1 लाख से अधिक लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर संभव सहायता का आश्वासन, वर्षा प्रभावित गुजरात में बचाव और राहत कार्य जोरों पर, 40,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया, जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण 6 दिन तक स्थगित रहने के बाद श्री अमरनाथ यात्रा और श्री माता वैष्णो देवी यात्रा फिर से शुरू, सरकार और सीजेपी के बीच परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों पर आज तीसरे दौर की बातचीत, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने पेपर लीक और उससे जुड़ी अनियमितताओं के मामलों की सुनवाई के लिए 4 विशेष फास्ट ट्रैक अदालत गठित की, स्क्वैश में भारत के अनाहत सिंह विश्व जूनियर चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची और क्रिकेट में भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा मुकाबला आज हरारे में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है, 1 लाख से अधिक लोग राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित जिले शिवसागर, चराईदेव और जोरहाट हैं। ताजा रिपोर्ट के अनुसार बाढ़ से संबंधित मामलों में 14 और लोगों की मौत हुई, इनमें चराईदेव में 7, शिवसागर में 6 और जोरहाट में 1 व्यक्ति की मृत्यु हुई है। एक रिपोर्ट।
2: राज्य में बाढ़ से मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 61 हो गई है। प्रमुख नदियां दीखो, दिसंग और धनसरी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इससे ऊपरी असम में बाढ़ की स्थिति और भी गंभीर हो गई है। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। आपदा मोचन बल, जिला प्रशासन और अन्य एजेंसियां राहत सामग्री उपलब्ध कराने, फंसे हुए लोगों को निकालने और बाढ़ प्रभावित परिवारों को सहायता प्रदान करने में लगी हुई है। अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं और प्रभावित जिलों राहत उपायों को तेज कर दिया गया है। गुवाहाटी से राकेश डोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा से टेलीफोन पर बातचीत कर बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें राहत पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्यों में केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। श्री शर्मा ने कहा कि असम के लोग इस कठिन समय में प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन और अटूट समर्थन के लिए उनके प्रति अत्यंत आभारी हैं। इस बीच गुजरात में मॉनसून की स्थिति गंभीर बनी हुई है। राज्य के कई हिस्सों में तेज बारिश हो रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है।
3: सीआरपीएफ की 32 प्लांटून और सेना की 6 टुकड़ियां भी विभिन्न जिलों में तैनात की गई है। लगातार हो रही बारिश से राज्य के जलाशयों में जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है।

0: रहा है। सरदार सरोवर नर्मदा बांध में जल भंडारण क्षमता का लगभग 69% पानी भर चुका है, जबकि राज्य के 21 बांधों के लिए हाई अलर्ट जारी किया गया है। जलभराव के कारण यातायात और विद्युत सेवाएं भी प्रभावित हुई है। 34 स्टेट हाईवे समेत राज्य के 600 से अधिक सड़कें एहतियातन बंद कर दी गई है। वहीं मौसम विभाग ने राज्य के विभिन्न जिलों के लिए भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी करते हुए मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: भारतीय तटरक्षक बल ने 22 जुलाई के मध्यरात्रि से चलाए गए 11 बचाव अभियानों के माध्यम से दमन, दादरा और नगर हवेली तथा दक्षिण गुजरात के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फंसे 170 लोगों को बचाया है। वहीं सिक्किम के नामची जिले के फामतम गांव में आज भूस्खलन के कारण 2 लोगों के मारे जाने की आशंका है। नामची के SSP ने बताया कि बचाव अभियान चलाया जा रहा है। 2 घायलों को नामची जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण 6 दिनों तक स्थगित रहने के बाद वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा आज फिर से शुरू हो गई है। कश्मीर के संभागीय आयुक्त अंशुल गर्ग ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि बालतल और पहलगाम दोनों मार्गों से यात्रा फिर से शुरू कर दी गई है। यात्रियों को सुरक्षित तीर्थयात्रा के लिए प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का सख्ती से पालन करने की सलाह दी गई है। इस बीच 6,269 तीर्थयात्रियों का एक नया जत्था आज सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से रवाना हुआ। जम्मू कश्मीर में तेज बारिश के कारण लगातार 6 दिन तक निरस्त रही श्री माता वैष्णो देवी यात्रा आज फिर शुरू हुई। इस मार्ग पर लगातार बारिश, भूस्खलन और अचानक बाढ़ आने के जोखिम के कारण यात्रा को निरस्त कर दिया गया था। तीर्थयात्रियों को अपनी यात्रा के दौरान श्राइन बोर्ड और सुरक्षा एजेंसियों के निर्देशों तथा सुरक्षा परामर्श का पालन करने और मौसम संबंधी जानकारी से अवगत रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने आज गुजरात में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान में भी इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश हो सकती है। वहीं असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, तटीय कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्र, पंजाब, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और उत्तराखंड में भी कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली में भी आज तेज वर्षा हो सकती है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार आज दोपहर नई दिल्ली में कांग्रेस जनता पार्टी CJP के प्रतिनिधिमंडल के साथ तीसरे दौर की वार्ता करेगी। इस बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार और प्रश्न पत्र लीक की घटनाओं को रोकने के उपायों पर प्रतिनिधिमंडल की मांगों पर चर्चा होगी। ये बैठक दोपहर 3:30 बजे कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में आयोजित होगी। इससे पहले केंद्रीय मंत्री JP नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में CJP प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की थी। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में श्री नड्डा ने कहा कि सरकार ने परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी CJP की मांगों को गंभीरता और धैर्यपूर्वक सुना है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने परीक्षा प्रश्न पत्र लीक और उससे जुड़े अनियमितताओं के मामलों की सुनवाई के लिए 4 विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों को नामित किया है। न्यायालय ने निर्देश दिया है कि आरोप पत्र दाखिल होने के 3 महीने के भीतर इन मामलों का निपटारा किया जाए। उच्च न्यायालय ने कहा है कि ये अदालतें राज्य और केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा भेजे गए संबंधित मामलों की भी सुनवाई करेगी। इनका अधिकार क्षेत्र आसपास के जिलों तक विस्तारित रहेगा। न्यायालय ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली में निष्पक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना तथा ऐसे मामलों में त्वरित न्याय उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा है कि राज्य सरकार अब इस घोषणा को अमल में लाते हुए 4 प्रमुख शहरों में विशेष अदालतें स्थापित कर रही है। ये घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के हित में शिक्षा और रोजगार से जुड़े मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए की थी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कल मध्य कोलकाता में कई वामपंथी संगठनों द्वारा नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में आयोजित रैली के दौरान पत्रकारों पर हुए कथित हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने आज विधानसभा में कहा कि इस घटना के संबंध में 7 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामले में सख्त कानून लाने को लेकर जारी किए गए अपने वीडियो संदेश पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए देश के युवाओं को धन्यवाद दिया है। श्री मोदी ने युवाओं के जबरदस्त समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया।
2: थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा।
1: वीडियो को अब तक 30 करोड़ 30 लाख से अधिक

0: बार देखा जा चुका है। ये पहले 24 घंटों में सबसे अधिक देखा जाने वाला वीडियो है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए नया विधेयक संसद के मौजूदा सत्र में अगले सप्ताह पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को भी मंजूरी दे दी है। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि संसद के बाहर मीडिया को दिए गए बयान के साथ एआई का दुरुपयोग कर छेड़छाड़ की गई और एक डीप फेक वीडियो तैयार कर उसे गलत सूचना फैलाने के उद्देश्य से प्रसारित किया गया। सोशल मीडिया पर साझा किए गए पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि इस मामले में आज सुबह चाणक्यपुरी पुलिस थाने में FIR दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि फर्जी वीडियो बनाने, प्रसारित करने या उसे बढ़ावा देने में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर वो सोशल मीडिया पर लगातार नजर रख रही है। आज नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए मध्य दिल्ली के पुलिस उपायुक्त रोहित राजवीर सिंह ने बताया कि फर्जी खबरें और एआई द्वारा निर्मित सामग्री फैलाने वाले 400 से अधिक सोशल मीडिया हैंडल की पहचान कर उन्हें ब्लॉक दिया गया है।
1: दिल्ली पुलिस ने लोगों से अपील की कि बिना पुष्टि वाले दावों पर बिल्कुल भी भरोसा ना करें। हमारी जांच में यह भी सामने आया कि पाकिस्तान से चलाए जा रहे कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स फेक कंटेंट फैला रहे हैं। दिल्ली पुलिस संबंधित एजेंसियों के एक साथ मिलकर ऐसे और अकाउंट्स की पहचान करने पर लगातार काम कर रही है। ऐसे 400 से अधिक हैंडल्स की अब तक पहचान कर ली गई है और उन्हें AI जनरेटेड कंटेंट, डीपफेक वीडियो, एडिटेड तस्वीरें और प्रदर्शन से जुड़ी अन्य झूठी सामग्री फैलाने के कारण ब्लॉक किया गया है।
0: और अभी समाचार मिला है कि नीट पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंपा। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि संसद में बिताया गया हर दिन, हर घंटा, हर मिनट और हर सेकंड लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए समर्पित होना चाहिए। नई दिल्ली में आज राज्यसभा के नव निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों के लिए आयोजित 2 दिवसीय ओरिएंटेशन और प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सदन में होने वाली बहस हमेशा किसी सार्थक निर्णय तक पहुंचनी चाहिए। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रहे उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल NS राजा सुब्रमणि ने कहा है कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर हो रहे प्रदर्शनों के कारण 30,000 सेना के जवानों ने इस्तीफा दे दिया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि यह वीडियो फर्जी और AI से तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 के प्रतिभागियों से बातचीत करेंगे। इस अवसर पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 400 से अधिक युवा प्रतिभागी प्रधानमंत्री से बातचीत करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने आज राज्य विधानसभा में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG की 28 लंबित रिपोर्टें पेश की हैं। इन लंबित रिपोर्ट को पेश करके पश्चिम बंगाल सरकार ने अपना किया गया वायदा पूरा किया। वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने ये रिपोर्ट पेश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर नागरिकों को शुभकामनाएं दी हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारत की स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने इतिहास रचते हुए विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने आज कनाडा के ओंटारियो में खेले गए सेमीफाइनल में मिस्र की बार्ब सामेह को 3-1 से हराया। वहीं फाइनल में अनाहत का सामना आज मिस्र की रुकैया सलीम से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात करीब 10:30 बजे शुरू होने की उम्मीद है। अनाहत सिंह जोशना चिनप्पा के बाद विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने अपना पहला पदक जीत लिया है। झंडू कुमार ने पैरा भारोत्तोलन की पुरुष हैवीवेट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। उन्होंने 190 किलोग्राम भार उठाकर तीसरा स्थान हासिल किया। इस उपलब्धि के बाद उन्होंने खुशी व्यक्त करते हुए अपने कोच और प्रशिक्षकों का आभार व्यक्त किया।
2: बहुत अच्छा लग रहा है, पहला मेडल है हमारा। हमारे पीछे कोच हैं राजेंद्र सिंह और हमारा JP सर हैं, वो भी बहुत सहयोग किए हैं। आज इन्हीं सब बदौलत हमें आज मेडल प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हम पे आज इतना प्रैक्टिस करवाए, प्यार दिए, और भी आगे हम अच्छा करने की कोशिश करेंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एथलीट झंडू कुमार को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कुमार के प्रदर्शन को शानदार बताते हुए कहा है कि ये उपलब्धि उनकी अदम्य शक्ति, अटूट दृढ़ संकल्प और वर्षों के अनुशासित प्रयासों का सशक्त उदाहरण है। क्रिकेट में भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज हरारे में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार शाम 4:30 बजे शुरू होगा। आकाशवाणी कार्यक्रम पर्सन बिहाइंड द स्टोरी श्रृंखला के अंतर्गत हम करगिल युद्ध के जाबाज योद्धा और भारत के पहले ब्लेड रनर सेवानिवृत्त मेजर डीपी सिंह से बातचीत करेंगे। इस बातचीत को आज शाम 5:10 से 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर सुना जा सकता है। श्रोता कार्यक्रम को न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम का पुनः प्रसारण कल दोपहर 12:30 से किया जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दिया। सरकार और सीजीपी के बीच परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों पर आज तीसरे दौर की बातचीत। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने पेपर लीक और उससे जुड़ी अनियमितताओं के मामलों की सुनवाई के लिए 4 विशेष फास्ट ट्रैक अदालत गठित की। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर, मरने वालों की संख्या 61 हुई। 1 लाख से अधिक लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर संभव सहायता का आश्वासन। वर्षा प्रभावित गुजरात में बचाव और राहत कार्य जोरों पर, 40,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण 6 दिन तक स्थगित रहने के बाद श्री अमरनाथ यात्रा और श्री माता वैष्णो देवी यात्रा फिर से शुरू। और खेलों में स्क्वैश में भारत के अनाहत सिंह विश्व जूनियर चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। वहीं क्रिकेट में भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा मुकाबला आज हरारे में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम एक कलाकार। नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आपकी रेडियो सखी निधि वर्मा और लेकर आई हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम एक कलाकार। आप ये भी कह सकते हैं कि किसी कलाकार की फ्लैशबैक की कहानी, जहां पुराने जमाने की कहानियां वापस जिंदा होती हैं। जी हां, आज की कहानी है एक ऐसे इंसान की जिन्होंने बिना कैमरे के सामने आए पूरे बॉलीवुड को कैमरे के पीछे से चलाया। नाम सुनोगे तो कहोगे, अरे ये तो सुना हुआ लगता है। इससे पहले कि हम आपको उनका नाम बताएं, तो उन्हीं का क्यों ना एक गीत सुन लिया जाए।

इस गीत के बाद शायद आपको इस बात का पता तो चल ही गया होगा कि आज हम किस कलाकार के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कलाकार एफ सी मेहरा की, यानी फाकिर चंद मेहरा की। श्रोताओं, एफ सी मेहरा का जन्म 29 अगस्त 1923 को पेशावर में हुआ था। हाँ, वही पेशावर जहाँ से पृथ्वीराज कपूर का पूरा परिवार भी था। इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत रॉयल इंडियन एयर फोर्स से की, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। इसके आगे की कहानी हम आपको बताएं, क्यों ना सुन लिया जाए एक और प्यारा सा गीत।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत।

0: हुए। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक कलाकार और मैं हूं आपकी रेडियो सखी निधि वर्मा। आज हम जिस कलाकार के बारे में बात कर रहे हैं उनका नाम है एफसी मेहरा। इससे पहले हमने आपको बताया था कि इनकी शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी रॉयल इंडियन एयरफोर्स से। एक दिन इनकी ईमानदारी के कारण इनकी जॉब चली गई। जेब खाली थी पर जज्बा उनका फुल ऑन था। इन्होंने छोटे मोटे काम किए। एफसी मेहरा ने 1950 के दशक में भारतीय फिल्म उद्योग में अपना सफर शुरू किया और बहुत जल्द प्रसिद्धि हासिल भी कर ली और इन्होंने ईगल फिल्म्स नामक प्रोडक्शन हाउस की स्थापना की, जहां उन्होंने उस दौर की कुछ प्रतिष्ठित फिल्में बनाईं। शम्मी कपूर और कल्पना अभिनीत फिल्म प्रोफेसर एक संगीतमय कॉमेडी फिल्म थी, जो अपनी आकर्षक कहानी और ए गुलबदन और क्या तुमने है कहा जैसे यादगार गानों के लिए बेहद लोकप्रिय हुई।

एफसी मेहरा ने आम्रपाली, ऐलान, अलीबाबा, अलीबाबा 40 चोर, सोनी महवाल, राम जाने, चमत्कार भी उन्हीं फिल्मों की देन है। मतलब जिस दौर में स्टार, म्यूजिक, कहानी तीनों चाहते थे, एफसी मेहरा ने वो फॉर्मूला पकड़ लिया था। और फिल्म ही नहीं, टीवी भी, जवान संभाल के, ऑफिस ऑफिस, खट्टा मीठा जैसे सीरियल भी ईगल फिल्म से ही आए थे। एफसी मेहरा मुंबई के सबसे पुराने सिनेमा हॉल मिराज के और दिल्ली के प्लाजा के मालिक भी थे। मतलब फिल्म बनाना भी उनका और दिखाना भी उनका। उनके बेटे उमेश मेहरा और राजीव मेहरा भी उनके पदचिन्हों पर ही चले।

श्रोताओं, एफसी मेहरा ने 80 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उनकी फिल्में आज भी चलती हैं, क्योंकि एफसी मेहरा का सिनेमा बिल्कुल साफ सुथरा और एंटरटेनमेंट और अच्छी कहानियों भरा रहा। तो श्रोताओं, अगली बार जब आप प्रोफेसर का सॉन्ग सुनिएगा या सोनी महवाल देखें, तो ईगल फिल्म का वो लोगो आपको ज़रूर याद आएगा। बस आज के लिए इतना ही। जल्द ही आपसे मिलेंगे एक और कलाकार की कहानी के साथ। तो बने रहिए हमारे एक बहुत ही अच्छे आखिरी गीत के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए और अपनी रेडियो सखी निधि वर्मा को इजाजत दीजिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक कलाकार। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम ब्रज माधुरी।

0: रजमाधुरी कार्यक्रम सुनने वाले सभी प्यारे श्रोतान को मेरी यानी श्रुति बुरी की
1: और मेरी यानी वंदना जोरी की राधे राधे। श्रुति बहना, आजकल तो बादल हमते लुका छिपी को खेल खेले, कहूँ तो मेघा घुड़की दे के चले जाए और कहूँ बरसे हैं तो ऐसा बरसे हैं कि बंद है नो ही भूल जाए। इतना जम के बरसे हैं कि सब जगह पानी ही पानी है जाए।
2: हाँ जे तो है, पर जे वर्षा को जल जो है ना, जो पानी है वो कितेक जरूरी है हम सभी के ताई। जल तो मानव की पहली आवश्यकता है, तभी तो रहीमदास जी ने कहे हो कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो ये जो वर्षा को जल है ना, या जल को बहुत संभाल के रखना चाहिए, ये बहुत बड़ा स्रोत है, या कुछ संचित कियो ही जाना चाहिए।
1: बिल्कुल सही कह रही हो श्रुति बहना, भूमंडल पे सबसे बड़ा जल को स्रोत जो है वो वर्षा को जल है। और बहना, मेहनत कश किसान भाई के काजे तो पावस ऋतु को ये जल बहुत महत्व राखे। समय पे वर्षा होना बिनके काजे प्रकृति को सबसे बड़ा उपहार है, वे धरती को समृद्ध करवे में कोई कसर ना छोड़े।
2: हाँ वंदना बहन, प्रकृति तो प्राणी मात्र की जननी है, वो तो सबके काजे वात्सल्य उड़े ले, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव ते लेके हम तक समान भाव ते ममता की बारिश करे है।
1: हाँ।
2: अब वर्षा जल तो सबके काजे हुए है, अब चाहे वाको उचित प्रयोग करो चाहे वाको तिरस्कार करो।
1: हाँ श्रुति बहना, हम आज नेक्सी बारिश है जाए तो हाय हाय करें कि यहाँ पानी भर गया वहाँ पानी भर गया, जबकि प्रकृति के या वात्सल्यमय उपहार को सहेजबे के काजे कई उपाय किए जा सके हैं। बहना, पावस ऋतु में आषाढ़ माह जल प्रबंधन को जल संचयन की तैयारी को माह है।
2: बिल्कुल, हमारे ब्रज में नदी तालाब सरोवर जगह जगह पे बने हुए हैं, इनते अच्छा वर्षा जल संचय को साधन और कहाँ है सके है।
1: सही कह रही है श्रुति बहना, ये प्राचीन साधन आज हु जल संचयन के प्रमुख साधन है। वर्षा ऋतु में जे जल ते लबालब भर जाए, जिन्हें पूरे वर्ष प्रयोग में लाया जा सके है।
2: तभी तो प्राचीन काल में राजा तालाब सरोवर कुआ बावड़ी बनवाते थे।

0: और या काम को बहुत पुण्य को काम कहियो जातो वंदना।
1: हाँ श्रुति बहना, और पहले याद है श्रुति बहना कि घर हू ऐसे होते कि जो उनकी छत होती बिन में मोरी होती, जो सीधे क्यारी में खुलती। और हमारे घर की छत पे जो मोरी ही वो क्यारी में खुलती तो सब्जी भाजी के काजे क्यारी हू तैयार है जाती और वर्षा जल को प्रयोग हू है जातो।
0: देखो वंदना, वर्षा जल की एक एक बूंद अमृत के समान है। अब
1: हाँ
0: ये हम सब पे निर्भर करे है कि हम याको उपहार समझ के स्वीकार करें और याको कैसे प्रयोग करें। अब तो विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है और
1: हाँ
0: नए नए तरीकान ते वर्षा जल संचयन प्रणाली ते समस्या को समाधान हो मिल सके है।
1: बहना, भूमिगत जल स्तर को बढ़ाए बे में घास के मैदानन की हूँ बहुत बड़ी भूमिका हुई। तो आज के समय में घास के मैदानन को जगह जगह विकसित किया जानो बहुत जरूरी है।
0: हाँ, अगर जगह कच्ची है तो पूरा सीमेंट नए बिछाए के टाइल लगाए के काम चलाया जा सके है और वर्षा को जल भूमिगत है सके है। और आजकल तो मोरी की सफाई बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल सही कह रही हो बहना, सच में ही वर्षा की बूंदें जो हुए वो अमृत समान हुए। पुराने लोग या बात को जानते, वे वर्षा को जल भर के हु रखते और याई ते हमारो लोक साहित्य वर्षा गानते भरियो पड़ो है।
0: सही कह रही हूँ वंदना बहन। बरखा ऋतु में चमकती बिजुरिया और वहां में एक नई नवेली नार को सौंदर्य जब वो जल भरवे जावे तो वहां की कछु लचक ही अलग होवे है। वो सबको मन लुभाए लेवे है और कवियन ने तो वाके बारे में बड़ी बड़ी कविता गढ़ी है। और ऐसे ही कछु भाव जागृत कर तो हमऊ एक लोकगीत अपने श्रोतान को सुनवाए देवे। तुम कहो तो
1: बिल्कुल सुनवाए दियो।
0: आओ सुने हैं माधुरी शर्मा के स्वर में ये लोकगीत।

बड़ो ही मनमोहक लोकगीत आपने सुनवायो है बहना। देखो आपने कही है ना कि वर्षा ऋतु में नागरी का सौंदर्य लुभावनो विषय रहो है कवियन को, रचनाकारन को। तो बहना कालीदास के मेघ दूतम में प्रकृति कहू

0: मानव के रूप में वर्णन किया गया है।
1: अच्छा।
0: कितने एक सुंदर वर्णन किया है कि जब आषाढ़ में प्रथम बूंद धरती पर गिरे हैं तो धरती भीनी सुगंध छोड़े हैं और जंगल में हलचल बढ़ने लगे, हिरन चौकड़ी भरे हैं।
1: हाँ, फूलन पे भवरा मंडरावे, जगह जगह तितली और जुगनून ते वन उपवन सुसज्जित है जावे हैं। कदम के फूल की सुगंध दूर दूर तक फैल जावे है। पपीहा और कोयल हु तान लेके सुर में गान करे हैं, चहुओर आनंद ही आनंद होए है वंदना बहन।
0: और बहना ब्रज में जी आनंद दूना है जाए, जब मोर अपने पंख फैलाए रंग बिखेरे है, तब तो ब्रज की गली गली हु झूलेन के गीत अंते गुंजायमान है जाए, जब
1: हाँ
0: नन्ही नन्ही बूंद पड़े हैं। बहना आज चौना आई विषय पे एक वार्ता सुनवाई दे जाए।
1: हाँ हाँ चौना है, आप कहो और हम अभी सुनवाई देवे हैं वार्ता। तो
0: हाँ
1: लियो श्रोताओं सुनो जी वार्ता, ब्रज में वर्षा ऋतु को प्राकृतिक सौंदर्य। वार्ताकार हैं दिनेश दिवाकर।
2: भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपरा में ऋतुओं को विशेष महत्व रहा है। प्रत्येक ऋतु अपने संग कछु न कछु नया सौंदर्य, नवीनता और स्पंदन लेके आवे है। इन्हीं ऋतुओं में वर्षा ऋतु को स्थान अत्यंत विशिष्ट है। जब गर्मी की तपती दोपहरी, सूखी धरती और धूल ते भरी हवा अपने चरम पे हुवे है, तब आकाश में घिरते कारे कारे बादल, उनते बरसतो पानी, बाते भीगी माटी की सुगंध और बहती ठंडी ठंडी हवा मन और तन दोनों में ताजगी भर देवे है। ब्रजभूमि में या को सौंदर्य तो और हु अद्भुत, मनोहारी और भावपूर्ण है जावे है। ब्रजभूमि भक्ति, प्रेम, स्मृति और लीलान की भूमि है। ये वही पावन भूमि है जहाँ श्री कृष्ण ने अपनी बाल लीलांते, रास लीलांते, प्रेम में प्रसंगनते प्रकृति को दिव्यता प्रदान करी। जब यहाँ वर्षा ऋतु आवे है तो ऐसा प्रतीत हुवे है मानो प्रकृति स्वयं कृष्ण भक्ति में डूब गई हो। सरोवर, कुंज, वन, उपवन, यमुना तट, मंदिरन की झांकी, झूलन की सजावट और हरे भरे खेतन की हरियाली सब मिलके ब्रज के सौंदर्य को अनुपम बनाए देवे हैं। ब्रजभूमि को नाम लेते ही मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना, नंदगांव, गोकुल और राधाकुंड जैसे अनेक पवित्र स्थान स्मरण में आवे हैं। यहाँ की धरती, हवा और जल सब में एक विशेष माधुर्य है। वर्षा ऋतु में यह माधुर्य और अधिक निखर जावे है। ब्रज में वर्षा ऋतु को आगमन एक उत्सव की भांति होवे है। बारिश होते ही ब्रज को वातावरण बदलवे लगे है। सूखी धरती में नमी आ जाए है, वृक्षन की पत्ती हरी भरी है जाए हैं और हवा में ठंडक आ जाए है। ऐसो प्रतीत हुए है मानो प्रकृति ने अपनो पुरानो रूप छोड़ के एक नयो रूप धारण कर लियो हुए। या समय मिट्टी ते एक मधुर और भीनी भीनी सुगंध उठे है जो मन को और अधिक आनंद कर देवे है। खेतन में खड़ी हरी भरी फसल लहरावे लगे हैं, छोटे छोटे पौधा, घास, बेल और लता बढ़वे लगे हैं। वृक्षन पे नई नई कोपलें आ जावे हैं और तरह तरह के फूल खिलवे लग जाए हैं। ये हरियाली आंखन को ही ना भावे बल्कि मन को हूँ आनंदित करे है। प्रकृति को प्रत्येक दृश्य अत्यंत मनोहारी लगे है। ब्रज की भूमि या ऋतु में सचमुच एक स्वर्गिक उपवन जैसी दिखाई देवे है। ब्रज के वन, उपवन और कुंज या ऋतु में विशेष रूप से और अधिक सुंदर है जाए हैं। वृक्षन पे बैठी कोयल, मोर, पपीहा और तरह तरह के पक्षी के स्वर और ध्वनि वर्षा के संग मिलके एक प्राकृतिक संगीत उत्पन्न करे हैं। यह संगीत में कोई कृत्रिमता नाए हुए है बल्कि यह प्रकृति की स्वाभाविक लय हुए है। ब्रज में वर्षा ऋतु और सावन आते ही घर घर में पेड़न पे झूला डारवे की हु परंपरा है। ब्रज वाला अपनी अपनी सखीन के संग भीनी भीनी फुहार और पक्षीन के मधुर स्वरण के बीच झूला झूलते हुए मल्हार गीत गावे हैं और लोकगीत गाए गाए के नृत्य करे हैं। सत्य मानो यह वातावरण न केवल मन को मोह लेवे वारो वरन कानन में मिश्री घोरवे वारो, नेत्रन को परम सुख देवे वारो और हृदय को उद्देलित और आनंदित करवे वारो हुए है। यह ऋतु में भक्त तरह तरह के फल, फूल, सुंदर वस्त्र और लतान ते झूला सजाए के वापे श्री राधा कृष्ण को विराजमान करे हैं, भक्ति गीत गावे हैं और उनकी सेवा करे हैं। यह दृश्य धार्मिक अनुष्ठान नए बल्कि सौंदर्य, प्रेम और भक्ति को अनूठो संगम और जीवंत चित्र है। ब्रज की वर्षा ऋतु को सबसे मनोरम सांस्कृतिक पक्ष झूला उत्सव है। यह उत्सव ऋतु की मधुरता और श्री कृष्ण की लीलान को प्रतीक है। यही कारण है कि यह ऋतु में ब्रज को धार्मिक और सांस्कृतिक पक्ष

0: विशेष रूप से समृद्ध दिखाई देवे है। ब्रज में यमुना जी को विशेष स्थान है। यह ऋतु में यमुना जी अपेक्षाकृत और हु भव्य दिखाई देवे है। जल की प्रवाह तेज है जाए है, तटन की हरियाली बढ़ जाए है और आसपास को वातावरण अत्यंत मनोहारी लगे है। नदी के किनारे बने घाट, यमुना जी को जल, बहती शीतल हवा, मंदिरन की घंटन की आवाज और भक्तन की चहल पहल सब मिलके एक दिव्य अनुभूति प्रदान करे हैं। राधा कुंड, श्याम कुंड, कुसुम सरोवर और अन्य पवित्र जलाशयन में वर्षा को जल भर जावे है, उनते उनको स्वरूप और हु अधिक निखर जावे है। वृंदावन ब्रज को हृदय माने जाए है। ये स्थान कृष्ण बाल लीला, रासलीला और भक्ति परंपरा ते विशेष रूप से जुड़ो हुआ है। वर्षा ऋतु में वृंदावन की छटा कई गुना बढ़ जाए है, या कि मार्ग, कुंज, वन, मंदिर, वृक्षावली और वृंदन ते ढकी भूमि एक सुंदर स्वरूप प्रस्तुत करें हैं। ब्रज के मंदिरन में वर्षा ऋतु के समय विशेष सजावट हुए है। झूला उत्सव को आयोजन या मौसम को एक प्रमुख आयोजन हुए है। यह समय प्रकृति और भक्ति एक दूसरे के पूरक बन जाए हैं। या ऋतु में वृंदावन और संपूर्ण ब्रज को सौंदर्य मात्र बाहरी सौंदर्य न रहवे है, वरन एक आंतरिक आनंद और श्रद्धा को अनूठो अनुभव बन जाए है। ब्रज साहित्य में वर्षा ऋतु को अत्यंत सुंदर, रसपूर्ण और भावपूर्ण वर्णन मिले है। कवि ने बादल, बिजली, मोर, कुंज, नदी, जनमानस के जीवन और राधा कृष्ण के संयोग और वियोग को या ऋतु ते जोड़ के साहित्य और लोक गीतन की अद्भुत रचनाएं करी हैं। ब्रज भाषा की कोमलता और संगीतात्मकता या ऋतु के वर्णन को और अधिक मधुर बनाए देवे हैं। वर्षा को मात्र एक ऋतु नाए बल्कि भावनान को प्रतीक मानो गयो है। ये कभी मिलन को संकेत बने है, कभी विरह को, कभी आशा को और कभी निराशा को, कभी प्रेम को और कभी भक्ति को। ब्रज साहित्य में जब आसमान ते उठते घने कार्य बादर, कड़कती बिजली, पुरवाई हवा और झंझन करती फौरन को वर्णन हुए है, तो प्राकृतिक सौंदर्य, स्त्री पुरुष के प्रेम और सौंदर्य के संग संग राधा कृष्ण की प्रेम छवि हु मन में उभर आवे है। यह प्रकार वर्षा ऋतु ब्रज के लोक काव्य में एक मात्र प्राकृतिक विषय नाए बल्कि प्रेम, सौंदर्य और भाव को विषय बन जाए है। वर्षा ऋतु में ब्रज को धार्मिक वातावरण और हु अधिक गहन है जावे है। मंदिरन में घंटी की ध्वनि, भजन, कीर्तन, आरती और झूला उत्सव वातावरण को भक्तिमय बना देवे हैं। भक्तन को मानना है कि या ऋतु में ब्रज के दर्शन करवे ते मन को विशेष शांति मिले है। या समय प्रकृति स्वयं ईश्वर की उपासना करती भई प्रतीत हुए है। यही कारण ते इन दिनन में तीर्थ यात्रियों की संख्या और अधिक बढ़ जाए है। यात्री या पावन भूमि पे आए के मंदिर, सरोवर, हरियाली और लीला स्थल के दर्शन करवे आवे हैं। वर्षा ऋतु ब्रज में धार्मिक पर्यटन और आध्यात्मिक और सांस्कृतिक अनुभव को समृद्ध बनावे है। प्राकृतिक सौंदर्य के संग संग वर्षा ऋतु ब्रज के पर्यावरण के लिए हूँ अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह मौसम भूजल को पुनर्भरित कर रहे है, पेड़ पौधा वन वृक्षन को जीवन देवे है और भूमि को उपजाऊ बनावे है। जहाँ गर्मी में सूखेपन को संकट हुए है, वहीं वर्षा खेत खलिहान, बाग बगीचा और जलाशयन को जलते भर के उनको जीवन की नवीनता प्रदान करें हैं। आज के समय में जब पर्यावरण संरक्षण की चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है गई है, तब ब्रज की वर्षा ऋतु हमें सिखावे है कि प्रकृति को संतुलन कितनो अनमोल है और कितनो आवश्यक है। वृक्ष, जलाशय और हरित क्षेत्रन की रक्षा ते ही या प्राकृतिक सौंदर्य को बनाए रखे जा सके है। यदि हम प्रकृति को सम्मान करेंगे तभी ब्रज जैसी पवित्र भूमि अपनी आभा को बचाए रखेगी। अगर कहो जाए तो ब्रज में वर्षा ऋतु प्राकृतिक सौंदर्य, आध्यात्मिक भाव और सांस्कृतिक समृद्धि को अनुपम और अनूठो संगम है। ये वो भूमि है जहाँ प्रकृति, भक्ति और सौंदर्य एक दूसरे में घुल मिल जाए हैं। यह ऋतु धरती को हरियाली देवे है, जलाशयन को जल देवे है, पक्षियों को गीत देवे है, मनुष्य को आशा, प्रेम, सौंदर्य, आनंद और भक्तन को भक्तिभाव देवे है। ब्रज की वर्षा ऋतु केवल दृश्य सौंदर्य नाए बल्कि एक अनुभूति को सौंदर्य है। यहाँ बादल केवल वर्षा नाए लाए में है बल्कि भावनान की वर्षा करे हैं। यहाँ के जन जीवन को ऐसी दिव्यता प्रदान करे हैं कि वर्षा ऋतु केवल ऋतु नाए रह जाए है बल्कि जीवन को उत्सव बन जाए है। यह मन को शांति, हृदय को आनंद और आत्मा को भक्ति प्रदान करे है। यही सु कहे जा सके है कि ब्रज भूमि में वर्षा ऋतु को सौंदर्य भारतीय प्रकृति और संस्कृति की सबसे सुंदर अभिव्यक्ति में से एक है।
1: ब्रज में वर्षा ऋतु

0: प्राकृतिक सौंदर्य या विषय पर अभी आप वार्ता सुन रहे हैं। वार्ताकार है दिनेश दिवाकर।
1: बहना कितने एक सुंदर वर्णन किया है दिवाकर जी ने वर्षा ऋतु में ब्रज के सौंदर्य को।
0: बिल्कुल सही कह रही हो। आज तो वैसे भी बरसात है रही है, तो
1: हाँ
0: मोकू तो ऐसा लगे हो कि मैं तो सुन सुन के ही भीग गई हूँ।
1: बहना, जब धरती पे टप टप करती बूंद पड़े और घन घन घन घन करते मेघा बरसे हैं, तो संगीत में वातावरण सोना है जाए।
0: और देखो रिमझिम रिमझिम करते मेघ बरसे हैं ना, ये काऊ कविता की रचना करे हैं, काऊ संगीत की रचना करे हैं और मन में तरह तरह की इच्छाएं जागृत करे हैं, चाहत पैदा हुए है मन में। तो बरखा की जो ऋतु है ना, वो एक बड़ी अनोखी ऋतु है जो सबके मन में उल्लास उत्पन्न करे है।
1: हाँ, और देखो कारी बदरिया घिर रही हैं, तो चौनाए एक प्यारा सो लोकगीत अपने श्रोतान को या बादली के बीच में सुनवाई दियो जाए।
0: तो आओ सुने हैं हरिकिशन और साथीन के स्वर में जी लोकगीत।

0: और यह लोकगीत के संगे आज को ब्रजमाधुरी कार्यक्रम अब संपन्न हुए है।
1: मोय यानी वंदना जौहरी को
0: और मोय श्रुति बुरी को देव अनुमति नमस्कार। कार्यक्रम प्रस्तुत करता
1: विवेक कुमार तोमर।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रज माधुरी, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है।
3: ये आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट्स, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।
4: मैं हूं आपका जलदाता ग्रैंड वाटर। कैसे हैं आप सब? आपकी मशीनें यहां धरती में इतने नीचे भी मुझे चैन से नहीं रहने देते। हर साल मेरा ठिकाना धरती में और नीचे हो जाता है। इस वर्ष 2040 में धरती में कितना और नीचे आ गया हूं मैं? क्या लिखूं अपना दर्द? अब तो कलम में बस बूंदे ही बची हैं। अपनी फोटो भेज रहा हूं, खुद ही देख लीजिए मेरी सेहत। क्या पता अगली चिट्ठी लिख भी पाऊंगा या नहीं। आप कर सकते हैं मेरी सहायता। बस दो शब्द याद रखिए, कंट्रोल और सेव। और हाँ, अपना ख्याल रखिएगा।
2: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। अब प्रस्तुत है नाटक स्वयं दीपा, कड़ी 1, प्रथम प्रसारण।
5: आइए सुनते हैं नाटक स्वयं दीपा। नाटककार माधुरी सुबोध, निर्देशन और प्रस्तुति काजल सूरी। आज अब इस नाटक की पहली कड़ी सुनेंगे।
6: जीवन के इस उठान पर खड़े होकर आज जब पीछे मुड़कर देखती हूं तो पूरा धुंधलका धीरे धीरे छंटने लगता है। जीवन का हर घटित क्षण मेरे मानस पटल पर उभर आता है। संपूर्ण जीवन एकाएक चित्रमाला सा सामने घूम जाता है। मैं देवयानी, दैत्य राज के गुरु शुक्राचार्य की लाडली बेटी, राजऋषि ययाति, महर्षि कच्छ, सबके चेहरे घूमने लगते हैं, कभी मुखौटों के साथ कभी बिना मुखौटों के। कितना कठिन होता है अपनों के चेहरों के मुखौटे हटाना। बीता हुआ कल, जीवन में जिया अच्छा समय, लौट आए फिर एक बार, किसका मन नहीं करता अपने अतीत को फिर से जीने की लालसा। काश मैं भी अपने मन में दबा कर रख पाती

0: जीवन की उषा बेला से जीवन के मध्याह्न तक सारा जीवन एक खुली पत्रावली की तरह मेरे सामने पड़ा है। अचानक उसके पन्ने फड़फड़ा उठते हैं। तटस्थ भाव से मैं उन्हें पढ़ने की, देखने समझने की कोशिश करती हूं। सब गड्ढमड हो जाता है, समझ में नहीं आता कि कहां से शुरू करना चाहिए। महर्षि कच्छ तो स्वयं देव जाति के थे, तरुण, सुदर्शन और समवयस्क। उनके साथ घुल मिलकर आत्मीयता से रचा बसा समय मुट्ठी में रेत सा सरकता रहा। कितने वर्ष बीत गए पता ही नहीं लगा, पता चला भी तो तब जब उनसे बिछुड़ने का समय आया, जब मैंने उन्हें बताया मैं उनसे प्रेम करती हूं और उनके बिना जीवित नहीं बचूंगी, तो औचक असमंजस के भाव उनके चेहरे पर उभर आए थे, जैसे कुछ विलक्षण बात कह दी हो। हृदय में कोई कपट नहीं था जो अपनी भावना छिपाती। एक कुमारी कन्या के मन में किसी चिर कुमार के प्रति प्रणय जागना विलक्षण था या उसका स्वीकार, ये आज भी पहेली बना हुआ है। मैंने तुमसे विवाह का ही प्रस्ताव तो किया था। जिस पुरुष ने मेरा दाहिना हाथ पकड़ा वही मेरा पति हो, ये कहते ही झट से मेरी प्रार्थना स्वीकार हो गई। पिताजी ने महाराज ययाति से जीवन भर के लिए मेरा हाथ पकड़ने का आग्रह किया, मेरा पाणी ग्रहण का आग्रह। पर तब क्यों नहीं, जब तुम मेरे जीवन की ड्योढ़ी पर खड़े थे। पिताजी से भी ये संकोच कह दिया था कि आर्य कच्छ मेरे प्राण हैं, उनके बिना जीना कठिन है, तब उन्होंने तुम्हें क्यों नहीं रोका। वे आखिर तक अनिर्णय की स्थिति में रहे, भला क्यों। महर्षि कच्छ, तुम देवलोक लौट गए पर मेरे हृदय से कभी दूर नहीं जा सके। तुम आज भी मेरे जीवन में बसे हुए हो, आज भी वो दृश्य मेरी आंखों में उभर आता है ज्यों का त्यों। तुम पिताजी के आश्रम के आंगन में खड़े होकर बड़े चौकन्नेपन से इधर उधर देखते हुए जैसे कुछ ढूंढ रहे थे।
1: मैं देवताओं के गुरु आचार्य बृहस्पति का पुत्र कच्छ, दैत्यराज वृषपर्वा के राज्य में पहुंच गया हूं। सुना है आचार्य शुक्र का आश्रम यहीं आनंदवन में है, जहां वे अपनी साधना में लीन रहते हैं, पर शुक्राचार्य कहीं दिखाई नहीं दे रहे। देवराज इंद्र उनके मृत संजीवनी ज्ञान से बड़े आतंकित हैं। जिन दैत्यों को देवतागण अपने पराक्रम और कौशल से मार देते हैं, मृत संजीवनी विद्या के प्रयोग से शुक्राचार्य उन्हें फिर से जीवित कर देते हैं। इसीलिए इस विद्या को पाकर ही कुछ समाधान ढूंढना होगा। वे मुझे संजीवनी विद्या सिखाएंगे संदेह है।
2: तुम युवा हो, परिश्रमी और लगन के पक्के हो, शुक्राचार्य से मृत संजीवनी विद्या पाने में अवश्य सफल रहोगे। अपने गुरु ऋषि अंगिरा के पौत्र को शुक्राचार्य ये विद्या अवश्य सिखाएंगे।
1: देवताओं के इसी विश्वास के कारण मुझे शुक्राचार्य के आश्रम में आना पड़ा, पर यहां तो सन्नाटा है।
2: अच्छा, अब तुम अकेले ही आगे बढ़ो, मैं जाता हूं।
3: अतिथि, कौन है आप? कैसे आगमन हुआ इस आश्रम में आने का प्रयोजन? आपत्ति ना हो तो क्या मैं आपका परिचय पा सकती हूँ?
1: मैं शुक्राचार्य के गुरु ऋषि अंगिरा का पौत्र हूँ देवी।
3: ऋषि अंगिरा के पौत्र? इस आश्रम में आपका स्वागत है। पिताजी बाहर गए हैं, कुछ ही समय में लौट आए।

0: आएंगे, तब तक आप यहाँ विश्राम करें। मैं देवयानी हूँ, आचार्य शुक्र की पुत्री।
1: ओम नमः शिवाय।
0: लीजिए, पिताजी भी आ गए। पिताजी, ये आर्य कच्छ हैं, ऋषि अंगीरा के पौत्र, आपसे भेंट के लिए आए हैं।
2: आप प्रणाम आचार्य।
1: ऋषि अंगीरा के पौत्र?
2: जी।
1: मेरे गुरु अंगीरा, तुम देवताओं के गुरु बृहस्पति के पुत्र हो, यहां आकर तुमने अपने प्राणों को संकट में क्यों डाला युवक?
2: आचार्य, मैं कच्छ हूं, पिताजी के ही आदेश से मुझे यहां आना पड़ा।
1: हाँ, भला क्यों?
2: आचार्य, पिताजी का आदेश हुआ कि अपनी कुल परंपरा के संचित ज्ञान कोश को पाने के लिए आपके पास जाऊं, आपका शिष्यत्व प्राप्त करूं। उनके पास जो ज्ञान था वो मुझे मिल चुका है आचार्य, किंतु जो ज्ञान पितामह ने उन्हें न दिया आपको दिया, वो आपसे पाऊं, इसीलिए आपकी शरण में आया हूं आचार्य। अरे, आपका शिष्यत्व पाने के लिए मैं योग्यता की हर परीक्षा देने के लिए तैयार हूं।
1: मेरे मन में भी प्रश्न उठ रहे हैं, इसे जो ज्ञान बृहस्पति से ना मिला, जो केवल मेरे पास है, वो अमृत संजीवनी विद्या पाने की लालसा भी इसके मन में होगी। इसे मृत संजीवनी विद्या सिखाना दैत्यराज के प्रति विश्वासघात तो नहीं होगा? ये उनके शत्रु पक्ष से जो है, ज्ञान की परंपरा तो अजस्त्र रहनी चाहिए। मेरे बात कौन है जो संजीवनी विद्या को अमर रखेगा? गुरु अंगीरा ने जो ज्ञान अपने पुत्र को ना दिया, मुझे दिया, उसे नष्ट नहीं होना चाहिए। उनके स्नेह और गुरु ऋण से कभी मुक्त ना हो पाऊं। ज्ञान की जो निधि मेरे मानस की अतल गहराई में छिपी हुई है, योग्य व्यक्ति को ना सौंपी तो मेरे साथ ही हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। नहीं, यह मैं कभी नहीं चाहता। मैं भी वृद्ध हो चुका हूं, पुत्र ना सही, गुरु भाई का पुत्र, गुरु का पौत्र अपनी संतान की ही तरह है। कच्छ संजीवनी विद्या को पाने का सर्वोत्तम अधिकारी है, उसकी पैतृक परंपरा, उसकी विरासत उसे सौंपने में मुझे भी हर्ष होगा।
2: संभवतः गुरुदेव के मन में राजनिष्ठा और गुरु परंपरा का द्वंद चल रहा है।
1: तुम बहुत बुद्धिमान हो कच्छ
2: आचार्य,
1: स्थिति और स्वभाव के द्वंद को खूब समझ रहे हो। आज से तुम गुरु के संरक्षण में हो, आश्रम की छत्र छाया तुम पर बनी रहेगी। कच्छ, ये तुम्हारे धैर्य की परीक्षा का भी समय होगा
2: आचार्य।
1: ओम नमः शिवा।
2: आचार्य
1: वत्स,
2: प्राणी का जन्म तो होता है ना आचार्य, इसीलिए वो अनादि तो है ही नहीं, पर क्या वो अनंत यानी अमर हो सकता है?
1: अमृत से ही अमरता पाई जा सकती है वत्स।
2: तो क्या मृत्यु को भी जीता जा सकता है आचार्य?
1: मृत को मृत संजीवनी से पुनर्जीवन दिया जा सकता है वत्स। अब विश्राम करो, सांझ हो गई है।
2: जी आचार्य।
1: आज का पाठ इत्यलम।

0: उधर नहीं, हाँ इधर से, हाँ इधर इधर इधर से, घास चरनी है, चलो तो जंगल की ओर चलो, हाँ।
1: सब मस्त होकर घास चर रही हैं। पेड़ की छाया में बैठता हूं, इन पर यहां से दृष्टि रखना सही होगा।
2: अरे कौन हो भाई?
3: पहले तो इस वन प्रांतर में तुम्हें कभी नहीं देखा।
2: नए नए आए लगते हो।
3: क्या नाम है तुम्हारा?
1: कच्छ नाम है मेरा, और आचार्य बृहस्पति मेरे पिता हैं।
2: और शुक्राचार्य के आश्रम में रहते हो।
3: क्या नाम बताया तुमने अपने पिताजी का?
1: आचार्य बृहस्पति।
2: देवताओं के गुरु बृहस्पति,
1: ठीक पहचाना, मैं उन्हीं का पुत्र।
3: सुना वीर,
2: क्या कहते हो, क्या करना चाहिए?
3: दैत्यराज वृषप्रभा को पता चल गया कि

0: ने आश्रम की रक्षा में असावधानी की है तो जीवित न छोड़ेंगे तुरंत।
1: इससे पहले कि महाराज की कृपाण हमारा गला काट दे, क्यों ना इसी उदंड युवक को
0: हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटा दे।
2: संध्या हो गई है, आर्य कच्छ अभी तक गोचारण से नहीं लौटे।
3: अंधेरा बढ़ चला है, कच्छ को अब तक लौटाना चाहिए था।
2: पिताजी, हृदय में अनेक आशंकाएं उठ रही हैं। वन हिंसक पशु, कुछ अनिष्ट तो नहीं हुआ होगा ना? वो देखिए पिताजी, गौएं अपने आप अकेले ही लौट आई। आर्य कच्छ का दूर दूर तक कोई संकेत नहीं।

0: घोर अनर्थ, अनर्थ हो गया देवा, अनर्थ हो गया दैत्यों ने कच्छ को।
1: नहीं नहीं पिताजी, ऐसा अनर्थ नहीं हो सकता। कच्छ को जीवन दीजिए पिताजी, आश्रम के विद्यार्थियों को संरक्षण देना आपका दायित्व है। पिताजी, आपकी मृत संजीवनी विद्या क्या केवल दैत्यों के जीवन की रक्षा के लिए है? यदि कच्छ न लौटे तो मैं भी जीवित नहीं बचूंगी।
0: नहीं बेटी,

0: कितना भटकाया तुम लोगों ने। अरे अब तक तो घास खा ली होगी ना। अरे गुरुजी, देवयानी देखो ना, जरा सी मेरी आंख क्या लगी, सब गायें चुपचाप आश्रम लौट आईं और मैं वन ही वन खोज खोज कर दुखी होता रहा आचार्य।
1: वत्स, अब विश्राम करो।
0: जी आचार्य।
2: अरे ये देखिए, जबा का पुष्प।
0: अरे कितना सुंदर है, एकदम एकदम रक्तिम।
2: हाँ अरे, सिंदूर जैसा, रोली का सा रंग, जैसा बाल अरुण का होता है, किसी सौभाग्यवती के भाल का सौभाग्य बिंदु सा।
0: वैसे बहुत भाता है ये रंग और ये पुष्प तुम्हें।
2: हाँ अरे, इसे बालों में गूंथना भी भाता है मुझे।
0: अभी तक तो केवल देवी पूजन में ही प्रयोग होते देखा है इसे। जब कभी इस पुष्प को देखूंगा तो तुम्हारा स्मरण अवश्य होगा। सांझ ढलने लगी है, अंधेरा उतरने लगा है, जीवन का मधुमिलिंद अब उजला होने लगा है। कौन पंछी कुहकता पीयू पीयू पीयू गाने लगा है, मंद मधुर मुस्कुराती चांदनी बिछलने लगी है, सांझ ढलने लगी है, सांझ ढलने लगी है।
2: अरे कच्छ, आज गौर पूजन का विशेष आयोजन है। महेंद्रादित्य को पूजा के पुष्प लेने भेजा था, पता नहीं कहाँ चला गया। पूजा में अनावश्यक विलंब हो रहा है मुझे।
0: अच्छा, देवी का आदेश हो तो मैं आनंद वन जाकर जबा के पुष्प ले आऊं।
2: अरे यदि ऐसा हो जाए तो समय पर गौर पूजन हो जाएगा, आश्रमवासी भी प्रसाद ग्रहण करके भोजन कर पाएंगे।
0: आदेश दे देवी, मैं अभी लेकर आता हूँ।
2: जी अवश्य जाइए।
3: अब देखो कैसा आनंद आता है।
4: कच को मार डाला।
5: दोबारा शुक्राचार्य जीवित ना कर दें, इसलिए जलाकर भस्म कर दिया।
3: ना होगा बांस ना बजेगी बांसुरी।
2: पिताजी, पिताजी, आ रहे कच्छ को गौर पूजन के लिए फूल लाने आनंद उन भेजा था, पर वो लौट कर नहीं आए।
1: वाह, क्या कहा बेटी, ये तो चिंता का विषय है। भला पुष्प लाने में इतना विलंब क्यों?
2: जबा कुसुमों से आनंद वन भरा पड़ा है पिताजी, अवश्य ही वो किसी संकट में पड़ गए हैं।
1: रुको। मैंने तो कच्छ को पहले ही कहा था कि दैत्य लोग आकर वो अपने प्राणों को संकट में डाल रहा है।
2: पर पिताजी, अब तो वे आश्रमवासी है ना, बाहरी गांव के कोई

0: अमृत संजीवनी विद्या का प्रयोग कर उन्हें जीवन दान दिया।
1: आपकी पूजा के पुष्प लेकर उपस्थित हूँ देवी।
0: पिताजी, आपने आर्य कच्छ को पुनः जीवित कर दिया।
1: देवयानी, मैं देवलोक से यहाँ आया हूँ ये जानकर दैत्यों ने मुझे नष्ट करने की कितनी चेष्टाएं की
0: जी,
1: पर तुम्हारे कारण ही आचार्य ने मुझे पुनर्जीवन दिया, तुम्हारे अनुरोध के कारण।
0: अरे
1: पर देवयानी, ये तुम्हारी सेवा और स्नेह ही है जिसने मुझे मुझे संबल दिया, तभी मैं संयम और एकाग्रता से अध्ययन करता रहा। कच्छ, क्या बात है गंधर्व लालित्य, तुम इस प्रकार गोपनीय तरीके से क्यों आए हो?
2: प्रकट होकर आता तो इस आश्रम से तुम्हारी छुट्टी हो जाती। देवराज इंद्र का संदेश लेकर आया हूँ, बहुत विलंब हो रहा है। क्या अभी तक तुम मृत संजीवनी विद्या प्राप्त नहीं कर सके हो?
1: लालित्य, ज्ञान प्राप्त करने में अनावश्यक शीघ्रता उचित नहीं, धैर्य की आवश्यकता है। समय आने पर गुरु शुक्राचार्य स्वयं मुझे संजीवनी विद्या दे देंगे। जहाँ इतने वर्ष धैर्य पूर्वक आश्रम के नियमों का पालन किया है, आगे भी करना चाहिए। देवराज से मेरा प्रणाम कहकर निवेदन करना कि शीघ्र ही उनकी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। अच्छा, अब जाओ, अन्यथा लेने के देने पड़ जाएंगे लालित्य।
3: अरे, ये कौन है? हमारे वन प्रांत का तो नहीं लगता।
4: निसंदेह दैत्य लोक का तो कदापि नहीं।
3: इसकी सूचना दैत्य राज वृषपर्वा को देनी चाहिए।
5: इससे पहले तो कस से मिलने कभी कोई नहीं आया। हो सकता है कोई नया मित्र हो,
2: अथवा कोई पुराना परिचित। मुझे तो पहले से ही लगता था कच्छ संजीवनी विद्या लेने आया है।
3: हैं? आचार्य बृहस्पति के द्वार पर ज्ञान की कमी थोड़े ही है। उनका बेटा संपूर्ण ज्ञान पाकर भी शुक्राचार्य का शिष्य क्यों बना?
4: केवल मृत संजीवनी का ज्ञान ही तो नहीं है उन्हें।
3: अगर वो मृत संजीवनी पा लेगा तो
6: देवताओं को मारने और पराजित करने में दैत्यराज को कभी सफलता नहीं मिलेगी और देवराज इंद्र विजयी होंगे।
4: हाँ, हमें उनका षड्यंत्र सफल नहीं होने देना चाहिए।
3: मेरी समझ में भी कुछ कुछ यही विचार आ रहा है।
4: कोई ऐसा उपाय सोचो कि इस बार हमारा वार खाली ना जाए।
5: कच्छ को मारा तो शुक्राचार्य ने उसे जीवन दान दे दिया।
3: अब ऐसा उपाय सोचो कि फिर उसे जीवन दान ना दे सके।
0: पिताजी, आज आपको भी लौटने में विलंब हो गया।
7: हाँ बेटी, मार्ग में कुछ नटखट दैत्य मिल गए थे, वही जो अपने आश्रम के आसपास मंडराते रहते हैं।
0: पिताजी, मैंने बहुत देर पहले आर्य कच्छ को हवन की सामग्री लेने के लिए वन की ओर भेजा था, पर वो अभी तक नहीं लौटे। इतना विलंब होना तो नहीं चाहिए। दो बार पहले भी उनके प्राण विपत्ति में पड़ चुके हैं पिताजी, इसलिए अधिक चिंता हो रही है।
7: कहती तो तुम ठीक हो, थोड़ी देर और प्रतीक्षा कर लो।
0: उन्हें कुछ हो गया ना पिताजी, तो मैं भी कहीं की नहीं रहूंगी। सब जानते हुए कि दैत्य उनके प्राणों के शत्रु बने हुए हैं, मैंने ही उन्हें वन में भेज दिया पिताजी।
7: देवा, देवा, तुम्हारी ये बेचैनी मुझे भी घबराहट में डाल रही है।
0: पिताजी,
7: देवा, देवा, कच्छ की विद्याधन की अवधि पूरी हो चुकी है। मैंने मृत संजीवनी के अतिरिक्त अपना संपूर्ण ज्ञान उसे दे दिया है।
0: परंतु पिताजी, संजीवनी के बिना उसका अध्ययन पूरा कैसे होगा? कुछ कीजिए पिताजी, कुछ कीजिए।
7: देवा, धैर्य धारण करना सीखो, संयम।
0: वो मेरे जीवन प्राण है, पता लगाइए पिताजी कहाँ लुप्त हो गए हैं वो।
7: ओम नमः शिवाय।
0: क्या हुआ पिताजी, क्या हुआ, कहाँ है कच्छ?
7: कुछ अनिष्ट हुआ लगता है। हाँ? किंतु कच्छ है कहाँ? कहाँ हो कच्छ, तुम कहाँ हो?
8: मैं यहाँ हूँ गुरुदेव, आपके उधर में।
7: ओ कच्छ, मेरे भीतर, किंतु ये सब कैसे हुआ?
0: अब क्या होगा पिताजी, अब क्या होगा?
7: मैं धर्म संकट में पड़ गया हूं देवा।

0: बाहर आने का एक ही उपाय है।
1: वो क्या पिताजी?
0: मेरा उदर चीर कर बाहर आए।
1: नहीं पिताजी।
0: फिर मेरा जीवन समाप्त।
1: पिताजी नहीं।
0: एक कच ही क्या, अन्य कोई भी तो मृत संजीवनी का प्रयोग नहीं जानता।
1: आपके जीवन के बिना तो मेरा जीवन अधूरा है, किंतु पिताजी अगर कच को कुछ हुआ तो मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा।
0: आज परीक्षा की घड़ी आई है देवयानी, तुम्हें कच अथवा मेरा किसी एक का जीवन चुनना पड़ेगा।
1: क्या?
0: ये भयानक घड़ी है, निर्णय की घड़ी।
1: क्या कोई दूसरा उपाय नहीं है पिताजी? क्या अभी उन्हें संजीवनी विद्या नहीं सिखाई जा सकती पिताजी, ताकि बाहर आके वे अपनी संजीवनी ज्ञान से आपको जीवन दान दे सके? बोलिए पिताजी, कुछ तो बोलिए।
0: इतने वर्ष जिनकी सेवा की, उन्हीं के कारण आज मेरे और मेरे शिष्य के प्राण संकट में। निर्णय मुझे ही लेना है, शुक्राचार्य को ही लेना है। अब वो निर्णय की घड़ी आ गई है कि कच को मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान दिया जाए। ये विद्या कच को मैं दे नहीं रहा हूं, मुझे देनी पड़ रही है। परिस्थितियां ऐसी खड़ी कर दी गई हैं कि उसे देना पड़ रहा है। दैत्यराज वृषपर्वा, तुम्हारे लोगों के कारण विवश शुक्राचार्य तुम्हारे शत्रु देवताओं के वंशज को मृत संजीवनी विद्या देता है। अब मृत संजीवनी के प्रयोग पर तुम्हारा एकाधिकार समाप्त हुआ। आज के बाद कच्छ ही इसके प्रयोग का एकमात्र अधिकारी होगा। मैं भी इसका प्रयोग ना कर सकूंगा। हे कच्छ, अब तुम्हारी विद्या पूरी हुई, मैं तुम्हें संजीवनी विद्या देता हूं। मेरे उदर से बाहर आकर तुम संजीवनी विद्या के प्रयोग से अपने गुरु को जीवन दान देना।
2: मैं आपके प्रति कृतज्ञ रहूंगा गुरुदेव, मेरा ये जीवन सदैव आपका ऋणी रहेगा।
3: अभी आप सुन रहे थे नाटक स्वयं दीपा, नाटककार माधुरी सुबोध, निर्देशन और प्रस्तुति काजल सूरी। आज आप इस नाटक की पहली कड़ी सुन रहे थे। भाग लेने वाले कलाकार थे ममता मलकानी, मनिल मयंक मिश्रा, नितिन गुप्ता, राजीव शर्मा, हर्ष बाला खन्ना, राजेश ढींगरा, विनायक, हिम्मत सिंह नेगी और नीलम मलकानी।
4: मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर।

का जल दाता ग्रैंड वाटर, कैसे हैं आप सब? आपकी मशीनें यहाँ धरती में इतने नीचे भी मुझे चैन से नहीं रहने देती। हर साल मेरा ठिकाना धरती में और नीचे हो जाता है। इस वर्ष 2040 में धरती में कितना और नीचे आ गया हूं मैं? क्या लिखूं अपना दर्द? अब तो कलम में बस बूंदे ही बची हैं। अपनी फोटो भेज रहा हूं, खुद ही देख लीजिए मेरी सेहत। क्या पता अगली चिट्ठी लिख भी पाऊंगा या नहीं। आप कर सकते हैं मेरी सहायता, बस दो शब्द याद रखिए, कंट्रोल और सेव। और हाँ, अपना ख्याल रखिएगा।

लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस न्यूज पॉडकास्ट्स साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट इंफॉर्मेशन एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप

ये है मेरी प्यारी पपेट और मैं इसका पपेटियर। कम थोड़ा सा नियर, हाउ आर यू डियर? अरे क्यों बैठी है मुझे?

0: 印度德里广播电台这次普通话节目播送到这里，谢谢大家收听，再会。
1: खेल खिलाड़ी खेलों का आईना

0: नमस्कार, मैं हूं नवीन कुमार शर्मा और आप सुन रहे हैं खेल और खिलाड़ियों से जुड़ा आपका मनभावन कार्यक्रम खेल खिलाड़ी। दोस्तों, आज की शुरुआत एक खुशखबरी से, और वो खुशखबरी यह है कि ग्लासगो में चल रही राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने पदक तालिका में अपना खाता खोल दिया है। और ये जो शानदार प्रदर्शन है, ये किया है भारतीय पैरा पावर लिफ्टर झंडू कुमार ने, जिन्होंने भारत को पहला पदक दिलाया है। देश का पहला पदक है ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में। इसके अलावा भी शानदार प्रदर्शन जारी है। मुक्केबाजी रिंग से लेकर लॉन बॉल के मैदान तक भारतीय खिलाड़ी अपना शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। और आज शुरुआत हुई है पदकों की, और उसके बाद अब जो मुकाबले होंगे वहाँ भारतीय खिलाड़ी पदक की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और निश्चित रूप से इस बार जिस तरह तैयारी है, जिस तरह जज्बा है और जिस तरह प्रोत्साहन मिला है, तो निश्चित रूप से हालांकि स्पर्धाएं कम हैं, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों का दमखम वही है, जोश वही है और कौशल वही दिखाना है जो अब तक हम शानदार प्रदर्शन करते आए हैं। बहरहाल, इसके अलावा भी बात होगी, और बात होगी क्रिकेट की। भारत और जिम्बाब्वे के बीच मुकाबला खेला जा रहा है, दूसरा T20 मुकाबला है। पहला भारत जीत चुका है 7 विकेट से। इसके अलावा अभी जो लेटेस्ट है, वहां जिम्बाब्वे ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी पर उतारा है। भारत ने 13वें ओवर में अभी 3 विकेट पर 113 रन बना लिए हैं। लेटेस्ट अपडेट भी देंगे और इसके अलावा भी विस्तार से चर्चा करेंगे। बात इसके अलावा शूटिंग की होगी, जहां भारत की दो निशानेबाज सोनम और एलावेलिन ने फाइनल में प्रवेश किया, लेकिन वो पोडियम फिनिश कर नहीं सकी। लेकिन अगर स्क्वैश की बात करेंगे तो वहां अनहत ने शानदार प्रदर्शन किया है, और कनाडा के ओंटारियो में चल रही विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के वो फाइनल में पहुंच गई हैं। अगर वो खिताब जीतने में सफल रहती हैं तो ऐसी पहली भारतीय खिलाड़ी बनेंगी। इसके अलावा भी चर्चा होगी अन्य खेलों पर, जिसमें हॉकी शामिल है, UTT शामिल है। इसके अलावा भी अन्य खबरों पर हम आपसे बात करेंगे। पहले चलते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स की ओर, जहां भारतीय खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, और इस पर भी हम आपको ताजा अपडेट भी देंगे। तो पहले पेश है ये रिपोर्ट।
1: The Commonwealth Games.
0: मंजिलें उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, परों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ग्लासगो में चल रहे राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय पैरा पावर लिफ्टर झंडू कुमार ने देश की झोली में पहला पदक डाल दिया है। इस पदक से भारतीय उम्मीदों को नई परवाज मिली है। बुलंद हौसलों के साथ अन्य स्पर्धाओं में भी भारतीय खिलाड़ियों ने पदक की ओर कदम बढ़ा दिए हैं। मुक्केबाजी के रिंग से लेकर लॉन बॉल्स के मैदान तक भारतीयों के दमखम की धमक गूंजने लगी है। बिहार के नालंदा जिले के हरनौत में रहने वाले पैरा पावर लिफ्टर झंडू कुमार बचपन में पोलियो ग्रस्त हो गए। उनके सामने सिर्फ शारीरिक ही नहीं, आर्थिक चुनौतियां भी थी, लेकिन मुश्किलें लाख हों पर बुलंद हौसलों के आगे कहां टिकती हैं। झंडू कुमार ने 2017 में पैरा एथलीट के रूप में कैरियर शुरू किया, और उसके बाद जिम में ट्रेनिंग के दौरान पावर लिफ्टिंग की ओर रुझान बढ़ गया। पैरालंपिक पदक विजेता कोच राजेंद्र सिंह रहलू ने उनकी प्रतिभा को निखारा। राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारी झंडू कुमार ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में अपनी सफलता का एक नया अध्याय लिख दिया। झंडू कुमार ने कांस्य पदक दिलाया, उन्होंने 190 किलोग्राम वजन उठाया। पहले दो प्रयासों में 181 और 190 की लिफ्ट की, जबकि तीसरे प्रयास में 196 किलो नहीं उठा सके, लेकिन 190 किलोग्राम का वजन उन्हें कांस्य पदक दिलाने में सफल रहा। ग्लासगो रवानगी से पहले ही झंडू कुमार अपने पदक जीतने को लेकर आश्वस्त थे। उन्होंने दल की रवानगी से पूर्व आकाशवाणी से बातचीत में कहा था,
2: पिछली बार भी हमने कोशिश किए थे, दिल से कोशिश किए थे कि अच्छा ही करेंगे। एशिया चैंपियन भी अच्छा किए और वर्ल्ड कप में भी अच्छा किए, इस बार कॉमनवेल्थ में भी अच्छा करेंगे।
3: इतना वजन उठाने के टारगेट रखा, वजन उठाने के।

0: बाकी अभी वहाँ जाएंगे, वहाँ वार्म अप एरिया में जब पता लगता है कि हम कितना, मतलब यहाँ तो 210 220 कर रहे हैं, मगर वहाँ मौसम के हिसाब से थोड़ा देखा जाता है। वहाँ
1: झंडू के कोच राजेंद्र राहुल भी अपने शिष्य की सफलता को लेकर काफी आशावान थे और झंडू कुमार ने उनकी उम्मीदों को परवान चढ़ाया।
2: कॉमनवेल्थ में अच्छी संभावना है, हमारे सारे खिलाड़ी फिट है, हम कोशिश है हमारी कि इस बार पावर लिफ्टिंग में अच्छे मेडल आएंगे। ये बहुत बड़ा दल जा रहा है, इस बार पहली बार इतना बड़ा दल जा रहा है, तो एक नया रिकॉर्ड बनेगा, इंडिया बनाएगा, मुझे श्योर है कि हम जीत जाएंगे।
1: हालांकि बर्मिंघम में हुए पिछले राष्ट्रमंडल खेलों के स्वर्ण पदक विजेता सुधीर अपने खिताब का बचाव नहीं कर सके। पुरुष हैवीवेट वर्ग में सुधीर ने पहले प्रयास में 208 किलो वजन उठाया, लेकिन फिर 211 किलोग्राम वजन उठाने के प्रयास में विफल रहे। उसके बाद उनकी और वजन उठाने की कोशिश भी नाकाम रही और वे चौथे स्थान पर रहकर पदक से वंचित हो गए। पुरुष पैरा लाइटवेट पावरलिफ्टिंग में अशोक कुमार मलिक ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन चौथे स्थान पर पिछड़ गए। उन्होंने अपने सर्वश्रेष्ठ प्रयास में 200 किलोग्राम वजन उठाया, लेकिन 205 किलोग्राम का तीसरा प्रयास विफल रहा। उनका कुल स्कोर 143.8 रहा। परमजीत ने 176 किलोग्राम वजन उठाया, लेकिन 189 किलोग्राम उठाने में विफल रहे। वे 135.6 अंक के साथ सातवें स्थान पर रहे। स्पर्धा का स्वर्ण इंग्लैंड की मार्क स्वान ने 222 किलोग्राम वजन उठाकर जीता। उन्होंने नाइजीरिया के रॉलैंड को पछाड़ा, जिनके नाम रजत पदक रहा। पावरलिफ्टिंग महिला लाइटवेट में जसप्रीत कौर छठे स्थान पर रही। उन्होंने 112 किलोग्राम का सफल प्रयास किया। उनका कुल स्कोर 96.4 अंक रहा। सुमन देवी ने 103 किलोग्राम का सफल प्रयास किया, 88.4 के कुल स्कोर से सातवें स्थान पर रही। स्वर्ण पदक नाइजीरिया की एस्तर ने जीता। महिला हैवीवेट पावरलिफ्टिंग में कस्तूरी राजमणि ने अपने सर्वश्रेष्ठ प्रयास में 100 किलोग्राम वजन उठाया, लेकिन पदक की दौड़ से बाहर रही। भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष देवेंद्र जाजरिया को उम्मीद है इस बार भारत के पैरा एथलीट नया इतिहास रचने में सफल रहेंगे।
3: ग्लासगो जो कॉमनवेल्थ गेम हो रहा है और मैं हर एथलीट को जानता हूँ, अब की बार खिलाड़ियों में एक अलग ही जुनून है। कहीं नहीं कि हम पहले खेलने जाते थे, अब खिलाड़ी मेडल जीतने जा रहे हैं। अब की बार जो परफॉर्मेंस होगी वो एक ऐतिहासिक परफॉर्मेंस होगी। आप देखिए कॉमनवेल्थ में जो पैरा खिलाड़ी विशेष तौर पे, उनकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रहेगी और कम से कम हम 5 से 6 मेडल जीतेंगे।
1: लॉन बॉल्स में भी भारतीय खिलाड़ियों ने अपने शानदार प्रदर्शन से सबको प्रभावित किया है। भारत की रूपारानी टिर्की और पिंकी की जोड़ी ने दक्षिण अफ्रीका को सीधे सेटों में 6-4 7-5 से पराजित किया। भारतीय जोड़ी की ये लगातार दूसरी जीत रही और अब सेमीफाइनल में पहुंचने की संभावनाएं और मजबूत हो गई हैं। पुरुष वर्ग में पुतुल सोनोवाल ने फॉकलैंड द्वीप समूह के सेसिल अलेक्जेंडर को 21-6 से हराकर 15 अंकों के अंतर से बड़ी जीत दर्ज की। इससे पूर्व उन्होंने अपने पहले मुकाबले में कनाडा के विश्व चैंपियन रायन वेस्टर को हराकर बड़ा उलटफेर किया था। अब उनके नॉकआउट चरण में पहुंचने की संभावनाएं और मजबूत हो गई हैं। पैरा तैराकी की S13 100 मीटर फ्री स्टाइल हीट 1 में रवि वीरा वेंकट भवानी कार्तिक बुद्धिगना तीसरे स्थान पर रहे। उनके साथ अली इमाम भी फाइनल के लिए क्वालिफाई करने में सफल रहे। फाइनल में हालांकि वे पोडियम फिनिश नहीं कर सके। रवि वीरा वेंकट 5वें स्थान पर रहे, जबकि अली इमाम ने 8वां स्थान प्राप्त किया। बेशक रवि और अली इमाम पदक जीतने में विफल रहे, लेकिन फाइनल में पहुंचकर उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन करने का वादा निभाया। अली इमाम ने रवानगी से पहले कहा था,
4: कॉमनवेल्थ गेम्स में क्या उम्मीद कर रहे हैं?
5: मैं अपना बेस्ट देने की पूरी कोशिश करूंगा, मेरा ये पहली बार है कोई बड़े कॉम्पिटिशन में मैं खेल रहा हूँ। आई विल गिव माई बेस्ट।
1: पुरुषों के 50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में श्रीहरि नटराज ने 25.52 के समय के साथ सेमीफाइनल में प्रवेश किया था, लेकिन सेमीफाइनल में 25.47 सेकंड के साथ वे 11 स्थान पर पिछड़ने के बाद शीर्ष 8 में जगह नहीं बना सके और फाइनल में पहुंचने से चूक गए। कुल मिलाकर 3 भारतीय तैराकों ने फाइनल या सेमीफाइनल में पहुंचकर अच्छा प्रदर्शन किया। मुक्केबाजी वो स्पर्धा है जहां भारतीय खिलाड़ियों से पंच कदम दिखाने की बड़ी उम्मीदें हैं। महिला वर्ग में लवलीना बोरगोहेन ने सेमीफाइनल में पहुंचकर पहले ही पदक पक्का कर लिया है, बस पदक का रंग तय होना है। पुरुष वर्ग की बात करें तो जादूमणि सिंह मांडेग बाम ने बैंटम वेट यानी 55 किलोग्राम भार वर्ग में मेजबान स्कॉटलैंड के ऑरन कलन को 1-0 से हरा दिया। पहले राउंड से ही जादूमणि ने तेज फुटवर्क और राइट और लेफ्ट हुक से जबरदस्त हमला बोला। उन्होंने पूरे मुकाबले में दूरी बनाकर मजबूत रक्षण भी कर दिखाया और बीच बीच में काउंटर अटैक किए। इस जीत से जादूमणि प्री क्वार्टर में पहुंच गए हैं और अब उनका मुकाबला पाकिस्तान के सुमामा रहमान से होगा। कलात्मक जिम्नास्टिक में पुरुष टीम और व्यक्तिगत क्वालिफिकेशन में भारतीय जिम्नास्टों ने हिस्सा लिया। पुरुष टीम में तपेश्वर नाथ, तपन मोहंती, योगेश्वर सिंह और स्वास्तिक केपी शामिल थे। तपेश्वर नाथ ने फ्लोर एक्सरसाइज में अच्छा स्कोर बनाया, वहीं योगेश्वर ने वॉल्ट और स्वास्तिक ने पैरेलल बार्स में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन यह पदक के लिए नाकाफी था। कनाडा ने स्वर्ण, इंग्लैंड ने रजत और ऑस्ट्रेलिया ने कांस्य पदक जीता।

0: टीम ने कुल 208.55 अंक बनाए, जबकि कनाडा 241.40 के साथ टॉप पर रहा।
1: जी हाँ बिल्कुल, और जिस तरह भारतीय खिलाड़ियों ने रवानगी से पूर्व हमारे वरिष्ठ सहयोगी शाहिद आजमी से खास बातचीत की थी, और वो देखने में आ रहा है जिस तरह झंडू ने प्रदर्शन किया, झंडू कुमार का प्रदर्शन शानदार रहा, कांस्य पदक जीतने में सफल रहे। इसके अलावा जी जो खिलाड़ी अपनी तैयारियों और जिन्हें अपना यकीन था वो शानदार प्रदर्शन करने में सफल रहे हैं, और उम्मीद है यही प्रदर्शन आगे आने वाले दिनों में रहेगा और भारत का पदक तालिका में स्थान और मजबूत होगा। फिलहाल भारत 9वें स्थान पर चल रहा है, और पदक तालिका की स्थिति अगर आपको बता दें तो ऑस्ट्रेलिया 6 गोल्ड 2 रजत और 5 ब्रॉन्ज मेडल के साथ कुल 13 पदक लेकर टॉप पर चल रहा है। इसके अलावा नाइजीरिया 3 गोल्ड 3 सिल्वर और के साथ 6 पदक के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि स्कॉटलैंड 2 गोल्ड 2 सिल्वर के साथ 4 पदक लेकर तीसरे स्थान पर चल रहा है। इंग्लैंड 1 गोल्ड 4 सिल्वर 3 ब्रॉन्ज के साथ चौथे स्थान पर है। तो अभी भारतीय झोली में और पदक आने हैं। बहरहाल जो ताजा अपडेट है प्रवीण, क्यों ना उससे अवगत करा दें। लॉन बॉल्स में रूपा रानी टिर्की और पिंकी की भारतीय महिला जोड़ी ने टोंगा की पेरिस बेकर और मिल्का नाथन के खिलाफ 2-0 से जीत हासिल की है, और यह भारतीय महिला जोड़ी की लगातार तीसरी जीत है। और मुक्केबाजी की अगर बात करें तो भारत के सचिन सिवाच ने 60 भार वर्ग में शानदार प्रदर्शन किया है और वो राउंड ऑफ 16 में पहुंच गए हैं। सचिन ने 60 भार वर्ग में जो कनाडा के मुक्केबाज थे क्योमो अल अहमदी को, उनको 4-1 से पराजित किया। अब उनकी टक्कर इंग्लैंड के विल हैबिट के साथ होगी। इसके अलावा अरुंधति चौधरी, प्रवीण हुड्डा भी आज रिंग में उतरेंगे, और जैसे ही अपडेट हमको मिलती है हम आपको जरूर अवगत कराएंगे। 3x3 व्हील चेयर बास्केटबॉल में भी मीनाक्षी रीना और लक्ष्मी पुलबू के ग्रुप चरण में वेल्स की टीम के सामने है, अगर अपडेट मिलता है तो हम आपको जरूर अवगत कराएंगे। इसके अलावा रात 7:30 बजे पुतुल सोनीवाल, जो कि भारत के लॉन बॉल्स खिलाड़ी हैं, पिछली बार बर्मिंगम में लॉन बॉल्स ने भारत ने शानदार प्रदर्शन किया था और वही सिलसिला अभी जारी होता नजर आ रहा है। महिला जोड़ी अच्छा कर रही है। पुतुल सोनीवाल भी अगले मुकाबले में मलेशिया के इजाजत शमीर के सामने होंगे, और वो 2 मुकाबले जीत चुके हैं जिसमें पहले ही मुकाबले में उन्होंने विश्व चैंपियन को हराया, जैसा हमने अभी जिक्र किया था। तो इसके अलावा रात 8:15 बजे कलात्मक जिम्नास्टिक में महिला टीम स्पर्धा में पदक दिलाने का लक्ष्य लेकर उतरेगी। इसके अलावा भारतीय टीम की अगर बात करें तो इसमें प्रगति नायक है, निशिका अग्रवाल हैं, प्रतिष्ठा सामंता हैं और रशिता रेवाले हैं। व्यक्तिगत क्वालिफिकेशन भी हो गए जहां प्रगति नायक से एक अच्छी उम्मीद की जा रही है। रात 11:37 पुरुषों की 400 मीटर की फ्री स्टाइल तैराकी होगी, और यहां भारत की दक्षिण कुमार, शशि कुमार और इसके अलावा आर्यन नेहरा उतरेंगे, और अगर वो अब हीट में अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो फाइनल में भी पहुंचेंगे। फाइनल 11:30 बजे होगा। इसके अलावा कल अगर रविवार की अगर बात करें तो ये दिन महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत की झोली में एक और पदक आ सकता है, और ये उम्मीद की जा रही है भारत की स्टार भारोत्तोलक मीराबाई चानू से, जो कि 49 भार किलो वर्ग में उतरेंगी। पिछली बार बर्मिंगम में हुए खेलों में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। उनके नाम राष्ट्रमंडल खेलों में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक सहित कुल 3 पदक हैं। इस बार वह उनमें और इजाफा कर सकती हैं। इसके अलावा 60 किलो पुरुष वर्ग में ऋषिकांता और एमराजा उतरेंगे। मुक्केबाजी की बात करें, जिस तरह मुक्केबाजों ने शानदार शुरुआत की है और अपने पंच का दम दिखाया है मुक्केबाजी में, जैस्मिन लंबोरिया, जादूमणि भी अपना अगला मुकाबला खेलने उतरेंगे। इसके अलावा कपिल पोखरिया और नरेंद्र बरवाल भी रिंग में नजर आएंगे पंच चलाते। इसके अलावा एथलेटिक्स में बात करें तो सर्वेश कुचारे ऊंची कूद स्पर्धा में उनसे बड़ी उम्मीदें हैं। इसी तरह 110 मीटर बाधा दौड़ में तेजस फिर से भी अपना बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हैं। पैरा एथलीटों में राकेश भाई भट्ट और श्रेयांत त्रिवेदी T37-38 100 मीटर रेस में अपनी रफ्तार दिखाएंगे। तो राष्ट्रमंडल खेलों की ताजा खबरों के लिए जुड़े रहिए आकाशवाणी से, जो लगातार इस पर अपना एक शानदार जो भारतीय प्रदर्शन है उस पर आपको अवगत करा रही है।

और बात अब क्रिकेट की करते हैं तो भारत और जिम्बाब्वे के बीच जो दूसरा T20 मुकाबला खेला जा रहा है वहां अभी बात करें तो 13वें ओवर में जैसे हमने बताया 3 विकेट पर 113 रन बना चुकी थी भारतीय

हुई हैं। है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं। ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है। ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

0: नमस्कार जी।
1: नमस्कार जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
0: मैं जगदीश खिलाड़िया बोल रहा हूँ जी, डाणा निशांत जिला भिवानी से जी।
1: जगदीश भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
0: बलराम बैसला को सुना देना जी,
1: जरूर सुनवाएंगे
0: बच्चों के नाम लेना चाहूंगी।
1: जी।
0: राजवीर खिलाड़िया, सतीश खिलाड़िया, ऋतिक खिलाड़िया, जगदीश खिलाड़िया, केड़ा देवी जी, नमस्कार जी।
1: नमस्कार जी। हेलो ग्राम संसार।
2: नमस्कार सर।
1: नमस्कार जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
2: सर मैं गांव बागोत महेंद्रगढ़ से प्रकाश अम्बावता बोल रहा हूँ सर।
1: प्रकाश भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
2: आज सर बलराम बैसला जी को सुनवा दिए, कुछ साथी हैं सूबेदार खेमचंद, हवालदार रामपल जी हैं बनवारी लाल नेहरूगढ़ से।
1: चलिए, कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए सुनते हैं आप सभी भाइयों की पसंद पर बलराम बैसला से ये रागनी, खिस्सा रहेगा सरवर नीर का।

0: तो बहन भाइयों, ये था आज का फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम संसार। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप भी हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमें प्रत्येक मंगलवार को दोपहर 1 बजे से 1:30 बजे तक फोन कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, फोन करने के लिए नंबर है 0112347331 और दूसरा नंबर है 0112347332। इन दोनों नंबरों पर आप फोन करके अपने पसंद के कलाकार को सुनने के लिए फरमाइश रिकॉर्ड करवा सकते हैं।
0: और बहन भाइयों, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का। इसी के साथ कार्यक्रम ग्राम संसार के प्रस्तुतकर्ता तुषार पाराशर और कार्यक्रम के संयोजक शिव नंदन लाल के साथ दीजिए अनुमति। सभी बहन भाइयों को राम
1: राम
0: राम।
1: राम।
2: ग्राम संसार, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 7 बजने को है, थोड़ी देर में हिंदी में समाचार सुनेंगे।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। कॉकरोच जनता पार्टी CJP ने सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद आंदोलन को तत्काल प्रभाव से समाप्त करने की घोषणा की है। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ CJP प्रतिनिधिमंडल की तीसरे दौर की वार्ता के बाद पार्टी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने ये घोषणा की।
4: तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे।
3: श्री नड्डा ने कहा कि सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने की मांग स्वीकार कर ली है।
5: सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी एक्शन FIR न हो और अगर है तो वो विड्रॉ

0: विड्रॉ हो और उसको विड्रॉ करने के बाद कोई भी एक्शन नहीं होगा, इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है।
1: श्री नड्डा ने कहा कि परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए दिए गए CGPA के सुझावों पर विचार किया जाएगा।
0: हम एजुकेशन के एग्जामिनेशन के रिफॉर्म्स के लिए जो आपका चार्टर है उस पर हम गहन चिंतन भी करेंगे और आपके डेलीगेशन के साथ बातचीत करके जो कुछ भी हम डेलीबरेट कर सकेंगे वो हम करने का प्रयास करेंगे।
1: आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजे के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार को पूरी सहानुभूति है और सरकार नियमों के अनुसार अधिकतम मुआवजा सुनिश्चित करेगी। इससे पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिन से छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति से व्यथित हैं। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। श्री प्रधान ने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठा सकें, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को अपना इस्तीफा सौंपने का निर्णय लिया। श्री प्रधान ने कहा कि नीट UG परीक्षा में अनियमितताओं के बाद सरकार ने जांच CBI को सौंप दी और परीक्षा रद्द कर दी। भारतीय जनता पार्टी ने संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा से कांग्रेस के पीछे हटने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों का एकमात्र उद्देश्य राजनीतिक लाभ उठाना है, न कि छात्रों की चिंताओं का समाधान करना। दिल्ली पुलिस ने भारी भीड़ और यातायात जाम के कारण लोगों को नई दिल्ली क्षेत्र की ओर जाने से बचने की सलाह दी है। पुलिस ने यात्रियों को निर्देश दिया है कि वे देरी से बचने और सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करें। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने सभी 18 मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश द्वार यात्रियों के लिए खोल दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसे हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण बताया। श्री मोदी ने कहा कि सारनाथ का भगवान बुद्ध से गहरा संबंध है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे दुनिया भर के लोग सारनाथ आने और भगवान बुद्ध के आदर्शों से जुड़ने के लिए प्रेरित होंगे। प्रधानमंत्री कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोल्दोवा, उत्तरी मैसिडोनिया और रोमानिया की यात्रा पूरी करने के बाद नई दिल्ली के लिए रवाना हो गई हैं। यात्रा के अंतिम चरण में उन्होंने रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसियर डैन के साथ व्यापार, निवेश, रक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, शिक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा और संस्कृति सहित विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक चर्चा की। हरारे में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने जिम्बाब्वे को 220 रन का लक्ष्य दिया है। ईशान किशन ने 81 और तिलक वर्मा ने नाबाद 60 रन की शानदार पारी खेली। ताजा समाचार मिलने तक जिम्बाब्वे ने 7वें ओवर में 4 विकेट पर 49 रन बना लिए थे। अनाहत सिंह विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स फाइनल में पहुंच गई हैं। फाइनल में उनका सामना आज मिस्र की रुकैया सलीम से होगा। अनाहत सिंह जोशना चिनप्पा के बाद इस प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी भारतीय हैं। मौसम विभाग ने आज गुजरात में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान में भी इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को राम
1: राम
0: राम।
1: राम।
0: तो नीलम बहन, हम हाजिर हैं अपने किसान बहन भाइयों का मनपसंद कार्यक्रम कृषि जगत लेकर के। जैसा कि हमारे किसान बहन भाई जानते हैं, बरसात का मौसम चल रहा है और बारिश के इस मौसम में आप किसान भाई टमाटर और मिर्च की खेती करके अच्छी आमदनी कर सकते हैं।
1: बिल्कुल शशि भाई, इन दोनों की अच्छी फसल उगाने के लिए पौधे का स्वस्थ होना बेहद जरूरी है। इसलिए मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में जैविक पदार्थ होने चाहिए और साथ ही नर्सरी के लिए ऐसी जगह का चुनाव करना चाहिए जहाँ पानी नहीं भरता हो, और इसके अलावा बरसात में होने वाले रोगों और कीटों से भी फसलों की सुरक्षा करनी चाहिए। भारी बारिश की वजह से पौधे सड़ सकते हैं, इसके लिए जल निकासी का भी उचित प्रबंध होना चाहिए।
0: बिल्कुल, तो इन बातों का हमारे जो किसान भाई हैं ज़रूर ध्यान करें। जिन किसान बहन भाइयों ने नर्सरी तैयार कर ली है तो वो रोपण कर सकते हैं, और जो करना चाहते हैं तो वो अपने नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र में जा करके जो उन्नत किस्में हैं टमाटर की, मिर्च की, उनका पता करके नर्सरी तैयार कर सकते हैं। और नर्सरी के लिए जैसे हमने बताया है कि ऊंचा स्थान होना चाहिए ताकि आप आसानी से नर्सरी तैयार कर सकें। और नर्सरी तैयार करने के बाद आपको उसका रोपण भी करना है, तो खेत की 2 से 3 बार अच्छी तरह से जुताई कर दें और उसमें सड़ी हुई गोबर की खाद या कंपोस्ट मिलाएं। और रोपण है वो शाम के समय करें ताकि पौधे धूप और गर्मी से बचें, और आप मेड़ बना के रोपण करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उनसे पौधों की पानी से सुरक्षा होगी। क्योंकि अगर पौध में पानी भर जाता है तो कहीं ना कहीं जो जड़ गलन की समस्या है उससे पौधे खराब हो जाते हैं। तो मेड़ बनाकर आप रोपाई करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा।
1: बिल्कुल, और रोपाई के बाद पौधों की नियमित निगरानी करें और आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें, और खरपतवार की समय समय पर सफाई करें ताकि पौधों को पर्याप्त पोषण मिल सके।
0: बिल्कुल, और संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करें और पौधों की बढ़वार के अनुसार पोषक तत्व उपलब्ध कराएं, और साथ ही जल निकासी का विशेष ध्यान रखें ताकि पौधों की जड़ों में पानी ना रुक सके। तो इन सब बातों का ध्यान रख करके आप किसान बहन भाई इस बरसात के मौसम में मिर्च और टमाटर की खेती करके अच्छी आमदनी कर सकते हैं। और नीलम बहन, जो हमारे किसान बहन भाई कुछ हटकर करना चाहते हैं तो वो आधुनिक तकनीक का उपयोग करके मशरूम की खेती कर सकते हैं। और देखिए, बहुत सारे हमारे जो किसान बहन भाई हैं वो तकनीकों का उपयोग करके मशरूम की खेती कर भी रहे हैं और अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं।
1: बिल्कुल, और अब नई तकनीकी और नई फसलों में किसानों की रुचि बढ़ रही है। इसी के साथ अब किसान भाई कम लागत में अधिक मुनाफा देने वाली फसलों की खेती कर रहे हैं। इन फसलों में मशरूम भी शामिल है। मशरूम ने बाजार में बहुत ही कम समय में अपना स्थान कायम कर लिया है।
0: बिल्कुल, और वर्तमान समय में शहरों से लेकर गांव तक लोगों के बीच मशरूम बहुत ही पसंदीदा सब्जी बन गई है। बाजार के पहले की तुलना में बदलते स्वरूप को देख आप किसान भाई भी अब परंपरागत खेती को छोड़कर नए सिरे से आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके मशरूम की खेती कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, और साथ ही किसान भाई ऐसी खेती करके कम लागत में अधिक मुनाफा भी कमा सकते हैं, और किसानों के लिए मशरूम की खेती फायदे का सौदा बन सकती है।
0: तो बात हम तकनीक की कर रहे हैं, तो संरक्षित खेती द्वारा आप किसान भाई मशरूम की उन्नत खेती कैसे कर सकते हैं, इन सब बातों की जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर DK राणा। आप अध्यक्ष हैं कृषि विज्ञान केंद्र उजबा नई दिल्ली में। तो डॉक्टर DK राणा जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: धन्यवाद।
0: आज हम संरक्षित तकनीक द्वारा मशरूम की उन्नत खेती की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो संरक्षित तकनीक है वो क्या है।
2: ये बड़ा एक ही इंटरेस्टेड विषय भी है और किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छा आय का साधन भी है, क्योंकि जैसे आप जानते हो कि जो खेती होती है जनरली खेत में होती है, बीज लगाया जाता है, खाद डाला जाता है, पर मशरूम की खेती थोड़ा अलग हटके है। इसके लिए आपको, अगर हम प्रोटेक्टेड बात करते हैं, संरक्षित बात करते हैं, इसके पहले तो मैं फायदे बताना चाहूंगा कि क्या फायदा है।
0: जी
2: क्योंकि जब आप संरक्षित खेती करते हो मशरूम की, तो इसको पूरे साल भर आप इसका उत्पादन कर सकते हो, इसको उगा सकते हो। क्योंकि जब मार्केट की बात आएगी आपको बेचने की, तो सबसे पहले जरूरी होता है कि जहां भी इसको आप बेचेंगे, चाहे वो होटल्स हो, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, चाहे कैटर्स हो, वहां आपको अच्छा मुनाफा मिलता है। तो वो चाहता है ये कि भाई पूरे साल मुझे मशरूम मिलती रहे। तो प्रोटेक्टेड की अगर हम बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि हम पूरे साल मशरूम की खेती करते रहें, और उससे हमको क्या है कि पूरे साल आमदनी मिलती रहेगी।

0: दूसरी हम बात करें जिसको कहते हैं हम फील्ड में खेती, एक सीधे तरीके से हम बात करते हैं, क्योंकि इसको उत्पादन करने के लिए दो तीन चीज महत्वपूर्ण है। एक तो चीज है कि तापमान, सबसे पहली जरूरत है तापमान। इसके लिए अगर हम बटन मशरूम की बात करें तो 15 से लेके 25 डिग्री सेल्सियस तापमान इसके उत्पादन के लिए होना चाहिए। और हम नमी की बात करें यानी कि ह्यूमिडिटी की बात करें तो 80 से लेके 90% के बीच जो है आर्द्रता यानी कि नमी होनी चाहिए। अगर हम बात करें कि ये हमको कम मिलती है, अगर हम नेचर की बात करते हैं तो जाके मिलती है हमको नवंबर से लेके फरवरी तक। अगर हम इन दोनों चीज को कंट्रोल कर लेते हैं तो पूरे साल हम इसकी मशरूम की खेती कर सकते हैं। इसके अलावा जो चीज की हम बात करें तो सबसे पहले जरूरी है कि इसके लिए मशरूम घर होना चाहिए। तो कुछ चीजें हैं हमको, पहले तापमान और आपकी ह्यूमिडिटी अगर हमारे पास है, इस चीज को अगर हम कंट्रोल कर लेते हैं तो हम इसकी राउंड द ईयर पूरे साल इसकी खेती कर सकते हैं।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, तापमान कंट्रोल की बात की आपने, ह्यूमिडिटी की बात की, तो किन किन उपकरणों का इसमें इस्तेमाल किया जाता है?
0: इसको करने के लिए सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि हमको कितने क्षेत्र में मशरूम की खेती करनी है। और एक और भी ध्यान रखना होगा कि जब हम प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन करेंगे मशरूम का तो हमको साथ साथ तीन कम से कम रूम एक साथ रखने पड़ेंगे। एक रूम में हमने क्या किया, पहले कंपोस्टिंग की, दूसरे में हमने 15-20 दिन के बाद कंपोस्टिंग की, तीसरे में उससे 15 दिन बाद की। तो ये क्या होगा, ये रेगुलर राउंड द ईयर चलती रहेगी। एक बार अगर हमारे पास एक ही कमरा है या कोई भी हमने कंट्रोल किया हुआ है पैलन से किया है तो उसमें क्या है कि एक बार किया फिर बीच में गैप नहीं होना चाहिए। अगर गैप होगा तो मार्केट में आप रेगुलर जो मशरूम सप्लाई नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए सबसे पहले तो उपकरण की बात करें तो मशरूम का जो घर होना चाहिए, और कंट्रोल कंडीशन की हम बात कर रहे हैं तो इसके लिए प्रॉपर वे में पूरे की पूरी तरह से इतना कंट्रोल होना चाहिए हमारा कि हवा भी उसके अंदर हम चाहें तो आए, अन्यथा हवा भी ना आ पाए। दूसरा, आप इसको पक्का बना सकते हो, इसके अलावा भी आप पैनल के द्वारा बना सकते हो जिसमें कि आपका जो तापमान है, ह्यूमिडिटी है, वो प्रॉपर से आपका मैनेज हो जाए। इसके लिए आपको इंस्ट्रूमेंट की एसी की भी जरूरत पड़ेगी, आपको आपको जो है डक्टिंग की भी आवश्यकता पड़ेगी, आपको जहां आप कंपोस्ट डालोगे स्पान मिलाओगे वो रैक होना चाहिए या पोलोथीन होनी चाहिए, स्प्रे मशीन पानी की होनी चाहिए ताकि उसमें जो आप ह्यूमिडिटी मेंटेन करने के लिए, या जब आप उसके अंदर जो केसिंग मिट्टी आप डालते हो उसकी ऊपर की परत को गीला करने के लिए स्प्रेयर भी आपके पास होना चाहिए, तापमान नापने का थर्मामीटर आपके पास होना चाहिए, ह्यूमिडिटी भी नापने का थर्मामीटर आपके पास होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड नापने का इंस्ट्रूमेंट आपके पास होना चाहिए। तो ये कुछ चीजें तो जनरली हैं कि जब आप कंट्रोल कंडीशन में करोगे तो ये चीजें आपको चाहिए ही चाहिएंगी।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, तो आपने जो चीजें बताई हैं उनमें लागत भी काफी आएगी, तो सरकार की तरफ से कुछ अनुदान मिलता है हमारे किसान भाइयों को?
0: हाँ, किसान भाइयों के लिए अगर हम कंट्रोल कंडीशन की बात करें तो इसके लिए अगर हम हरियाणा में बात करें, उत्तर प्रदेश में बात करें, राजस्थान में बात करें तो वहां पे 40% यानी 40-50% सब्सिडी MIDH के माध्यम से भी दी जाती है किसानों को, जो मिशन है भारत सरकार का बागवानी मिशन उसके माध्यम से भी दी जाती है। और वहां का जो डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर है यानी कि बागवानी का जो अधिकारी है उससे किसान भाई अपने जो डिस्ट्रिक्ट का है उससे संपर्क कर सकते हैं, जो वहां की जो सब्सिडियां हैं मशरूम के बारे में हो, चाहे मधुमक्खी के बारे में हो या स्प्रिंकलर के बारे में हो या बागवानी के क्षेत्र में हो, तो आप वहां से संपर्क करके पूरी जानकारी ले सकते हैं।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, मशरूम तो कई प्रकार की होती हैं और खासकर हम संरक्षित तकनीक की बात कर रहे हैं, तो इसमें कौन सी किस्म की मशरूम हमारे किसान भाई उगा सकते हैं?
0: अगर भारत में हम बात करते हैं तो अधिकतर जो है व्हाइट बटन मशरूम जो है उसको किसान भाई उगाते हैं, क्योंकि बाजार जो है, मांग जो है वो व्हाइट बटन मशरूम की है। तो इसको जो उगाने के लिए सबसे पहले जरूरी है, देखो दो तरीके से मैंने बताया, एक तो हम कंट्रोल कंडीशन में जिसको प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन हम कह रहे हैं
1: जी,
0: दूसरा है कि नेचुरल कंडीशन में या झोपड़ी वगैरह बना के वो भी हम वहाँ मशरूम सीजन में, वो भी सीजन में हम पैदा कर सकते। तो इसके लिए सबसे पहले मशरूम घर आपके पास हो। मशरूम घर के अलावा जो आप बात करते हो तो इसकी खाद होती है जिसको कहते हैं कंपोस्ट, यानी कि मशरूम की खाद, वो साधारण गोबर की खाद नहीं होती, उसको बनाने के लिए वो कई चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, उसकी भी बनाने की कई तकनीक हैं, जैसे एक को कहते हैं हम लॉन्ग मेथड द्वारा, जो लगभग 30 दिन में बनकर तैयार होती है। तो इसमें सबसे पहले गेहूं का भूसा हो, चाहे आपका धान का भूसा हो, चाहे वो सरसों का भूसा हो, चाहे वो बाजरे का भूसा हो, उसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ कुछ जो अलग मिश्रण होते हैं जैसे यूरिया का भी इस्तेमाल किया जाता है, म्यूरेट ऑफ पोटास का भी

0: इस्तेमाल किया जाता है, आपका आटे का जो चोकर होता है जिसको बोलते हैं वो भी इस्तेमाल किया जाता है, तो इसके अलावा जिप्सम का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो बनाने की कई सारी तकनीक है, जैसे लॉन्ग मेथड होगा, शॉर्ट मेथड होगा, एक होता है इंडोर मेथड, उसके द्वारा हम कंपोस्ट बना सकते हैं। और कंपोस्ट हम बाहर से भी ले सकते हैं, वो अगर परचेज भी करना तो वो भी ले सकते हैं। इसके अलावा फिर जरूरत पड़ती है स्पान की, जिसको कहते हैं मशरूम का बीज। तो मशरूम का बीज भी जो है लगभग मार्केट में 80 से 100 रुपए किलो के आसपास मिलता है। 100 किलो कंपोस्ट जो होगी हमारी, लगभग 1 किलो बीज उसमें हमारा बटन मशरूम का लगेगा। तो इस हिसाब से अगर आप स्पान है तो स्पान को आप ले सकते हैं। इसके अलावा जरूरत पड़ती है जिसको कहते हैं हम केसिंग मिट्टी। केसिंग मिट्टी की आवश्यकता तब पड़ती है जब पूरी तरह से जो आपकी खाद है माइसीलियम उसमें फैल जाता है, यानी कि मशरूम, जैसे मशरूम का बताया, मशरूम एक फंगस है, इसकी फ्लोटिंग बॉडी खाई जाती है। तो मशरूम फंगस है, यानी कि जीव है, कवक है। तो ये धीरे धीरे क्या होता है कि जो इस खाद है कंपोस्ट उसमें धीरे धीरे फैलता है, वो लगभग 12 से 15 दिन के अंदर पूरी तरह से खाद में माइसीलियम फैल जाता है, कवक जाड़ उसका अच्छी तरह से फैल जाता है। उसके बाद केसिंग मिट्टी हम उसमें बिछाते हैं। केसिंग मिट्टी बिछाने के बाद धीरे धीरे उसके अंदर फिर माइसीलियम फैलने लगता है। तो अब हमको मॉइस्चर की, नमी की आवश्यकता पड़ती है। तो केसिंग मिट्टी को बनाने के लिए भी कई मिश्रण होते हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है। फिर केसिंग मिट्टी बिछा दी तो लगभग 12 से 15 दिन बाद फिर धीरे धीरे उसमें से पीनिंग निकलने लगती है, यानी कि धीरे धीरे से मशरूम की बॉडी निकलने लगती है, फूटिंग बॉडी, और वही 4-5 दिन में धीरे धीरे बढ़कर पूर्ण हो जाती है। फिर उसको तुड़ाई करके मार्केट में बेच दिया जाता है। साथ ही साथ मैनेजमेंट की हम बात करेंगे इसमें, कि साफ सफाई का ध्यान रखना, और कहीं भी किसी भी चीज की कोई इंसेक्ट आ रहा है या कोई डिजीज दूसरी आ रही है उनसे कंट्रोल करना, समय समय पर मॉइस्चर का ध्यान रखना, तापमान का ध्यान रखना, वो भी एक बहुत बड़ा पार्ट है मशरूम के लिए। अच्छा उत्पादन करने के लिए हमको मैनेजमेंट जो है, यानी कि प्रबंधन जो है, वो अच्छा होना चाहिए।
1: बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, ये तो आपने बताया कि सफेद मशरूम उत्पादन के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं, कोई भी हम काम शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें उसकी जानकारी की या प्रशिक्षण की भी आवश्यकता होती है। तो जो भी किसान भाई मशरूम की खेती करना चाहते हैं, खास करके संरक्षक तकनीक द्वारा, तो कहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं?
0: क्योंकि जो इसकी खेती है अन्य खेतियों की तुलना में बिल्कुल अलग है, तो इसकी जानकारी प्रॉपर वे में होनी चाहिए। तो इसकी जानकारी के लिए जो इच्छुक किसान भाई हैं, वो नजदीक के अपने कृषि विज्ञान केंद्र में, क्योंकि सभी जिलों में देश के कृषि विज्ञान केंद्र है, वहां से संपर्क कर सकते हैं। वहां से लगभग उनको 10 दिन का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण देने में सारी चीजों को बताया जाता है कि किस प्रकार से जो है मशरूम को हम कर सकते हैं, स्पान कैसे तैयार कर सकते हैं, क्या क्या सावधानी आपको रखनी है, टेम्परेचर कैसे मेंटेन करना, रूम कैसे आपका होना चाहिए, रेक एक दूसरे से कितनी दूरी पे होनी चाहिए, तो वो पूर्णतः आपको जानकारी दी जाती है। साथ ही साथ जो डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिस है जिसको हम कहते हैं, उनके माध्यम से भी, कृषि इकाई के माध्यम से भी ट्रेनिंग दी जाती है। तो किसान भाई सबसे पहले तो आपके नजदीक के कृषि विज्ञान केंद्र में, इसके अलावा जो देश में कृषि विश्वविद्यालय है किसी विश्वविद्यालय में भी इनका प्रशिक्षण दिया जा सकता है। तो अपने नजदीक के जो कृषि विश्वविद्यालय, वहां से किसान भाई वहां से भी संपर्क कर प्रशिक्षण ले सकते हैं और अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं।
1: बिल्कुल। तो हमारे जो भी किसान भाई इस तरफ आना चाहते हैं तो जरूर अपने जो नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विश्वविद्यालय, वहां जाकर के संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, बात आती है जैसे कोई भी किसान भाई इस संरक्षित तकनीक को सीखकर उसने मशरूम का उत्पादन कर लिया, अब बात आती है बाजार की या मार्केटिंग की, बेचे कहाँ पर, तो किस तरह से कहाँ पे वो संपर्क करें?
0: देखो, बेचने के लिए वैसे तो जब आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा, उस जिले की इकाई जो आपको प्रशिक्षण देगी, चाहे वो कृषि विश्वविद्यालय है चाहे कृषि विज्ञान केंद्र है, उनको बाजार का पता होता है कि भाई यहाँ आप आसानी से बेच सकते हैं। इसके अलावा भी मैं बताना चाहूंगा कि सबसे पहले बड़ी बड़ी मंडियां, सब जगह मशरूम को आप बेच सकते हैं। इसके अलावा जो होटल्स हैं, होटल्स में आप बेच सकते हो, क्योंकि आज कल जो है सभी जगह छोटे छोटे रेस्टोरेंट में भी, छोटे छोटे आपके जो ढाबे हैं वहां भी मशरूम का प्रयोग किया जाता है, इस सब्जी आपको मिल जाएगी। तो बहुत सारे कैटल्स हैं, उनके माध्यम से भी आप इसको सेल कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐप बनाए रखा है, उनके माध्यम से भी इसको सेल करते हैं। रिटेल में भी, मार्केट में आप जो है वहां सेल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से धीरे धीरे मार्केट आपको पकड़ना पड़ेगा, और जब आप कंट्रोल कंडीशन में करते हैं तो मार्केट आपको आसानी से मिल जाती है। यानी कि जब आप प्रोटेक्टिव कल्टिवेशन करते हैं तो आपको आसानी से मार्केट की दिक्कत नहीं आती। तो इस तरह से किसान भाई जब मशरूम पैदा करेंगे तो धीरे धीरे आप अपना मार्केट में इन जगह आप बेच सकते हैं।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, जैसे कोई भी हमारे किसान भाई मशरूम उत्पादन करके बाजार ले जाते हैं तो खासकर उस वक्त

0: कितना ध्यान रखना जरूरी, किन किन बातों का ध्यान आवश्यक है?
1: मशरूम क्योंकि एक ऐसी चीज है कि आप इसको एक बार तुड़ाई करने के बाद में, क्योंकि इसकी जो सेल्फ लाइफ है बहुत नहीं होती, तो इसको आप तुड़ाई करने के बाद में 8-10 घंटे के बीच में आप इसको सेल भी कर लेते हैं, मार्केटिंग सारी चीज कर लेते हैं तो अच्छा है, नहीं तो कई बार उसके बाद क्या होता है कि वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है, कई बार नीचे से खुल भी जाती है, और खुल जाएगी तो मार्केट में अच्छा उसका रेट नहीं मिलेगा। साथ ही साथ प्रोटेक्टिव कल्टिवेशन में मैं किसान भाइयों को एक चीज और बताना चाहूंगा, ये ध्यान रखना है कि आपको कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों का अनुपात आपको जो है सही रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको CO2 की मात्रा ज्यादा होगी कार्बन डाइऑक्साइड की तो भी आपको मशरूम उगाने में दिक्कत आएगी, और अगर कम होगी तो भी आपको दिक्कत आएगी। कि जब आपने स्पानिंग की है यानी कि खाद के अंदर जब आपने बीज मिलाया, उसके बाद जब माइसिलियम धीरे धीरे फैलना शुरू होता है तो उस समय 10,000 से 20,000 PPM के बीच आपकी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होनी चाहिए। उसके बाद ये होता है पहला चरण। दूसरा चरण जब स्टार्ट होता है कि जब आप उसके ऊपर केसिंग बिछा देते हो और फिर उसके बाद जब फ्रूटिंग बॉडी की तरफ चलते हैं हम, तो वो दूसरा चरण होता है मशरूम का। तो उस समय आपको 800 से 1500 ppm के बीच आपका जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होनी चाहिए। अब ये ध्यान रखना, अगर दोनों में ही अगर 800 से इस समय जब आप फ्रूटिंग बॉडी आपकी निकल रही है 800 से अगर कम CO2 हो जाएगी तो भी कहीं ना कहीं मशरूम को निकलने में दिक्कत आएगी। अगर 2000 से ऊपर हो जाती है तो जो मशरूम का जो तना है वो पतला हो जाएगा, उसकी जो लंबाई है तने की वो ज्यादा बढ़ जाएगी, तो उससे मार्केट में भी उसको अच्छा रेट नहीं मिलेगा, उनको वो अच्छी मशरूम नहीं मानी जाएगी। तो ये ध्यान रखना है कि फ्रेश एयर यानी कि ऑक्सीजन को भी टाइम टाइम पर आपको सुबह के टाइम आपको देना है, इन चीजों को आपको मेंटेन रखना है। दूसरा आपकी नमी जो है, मॉइस्चर जो है, उसको प्रॉपर वे में आपने मेंटेन करना है। अगर नमी आपका, कई बार क्या होता है अगर आपकी जो केसिन की ऊपर की लेयर है वो ड्राई होगी, सूखगी, नमी कम है तो पीनिंग निकलने में दिक्कत आ जाएगी, फिर आप समझोगे कि ऊपर मशरूम आ ही नहीं रही है, और अगर नमी ज्यादा होगी तो उसका क्या रोटिंग हो जाएगी, सड़ने लगेगी वो अंदर ही अंदर। तो ये जरूरी है कि मॉइस्चर का आप पूरी तरह से मेंटेन उसको रखें, और इसी तरह से तीसरा टेम्परेचर का, अगर ये चीजें आपने सही से मेंटेन कर ली तो बिल्कुल आप अच्छा मुनाफा कमा पाओगे।
0: बिल्कुल, तो जरूरी है कि हमारे जो किसान भाई हैं मशरूम की खेती कर रहे हैं, करना चाहते हैं, तो जैसे डॉक्टर ने बताया है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और तापमान, नमी, इनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आखिर में डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे, जो हमारे युवा साथी हैं उनके लिए मशरूम के क्षेत्र में रोजगार की क्या कुछ संभावना है?
1: नहीं, मशरूम आज की डेट में बहुत तेजी के साथ बढ़ता हुआ व्यवसाय है। वो जो नवयुवक हैं उनको बुलाया जाता है, उनको प्रेफरेंस दी जाती है कि भाई वो सीखें और अपना स्वयं का रोजगार वो करें। इसीलिए भारत सरकार जो है कई क्षेत्रों में इसके लिए आपको सब्सिडी के रूप में भी मदद करती है, तो नए यूथ के लिए तो बहुत अच्छा एक व्यवसाय है।
0: बिल्कुल डॉक्टर डीके राणा जी, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी आज हमारे किसान मित्रों को, किसान भाइयों को दी है। हमारे खासकर जो युवा साथी हैं जरूर इस बारे में सोचेंगे और इस तरफ रोजगार की संभावनाएं तलाश करेंगे, क्योंकि साल भर का ये रोजगार है। और जो हमारे किसान भाई अभी तक मशरूम की खेती नहीं करते हैं तो वो शुरुआत करेंगे कार्यक्रम में आने के लिए, और इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब नीलम बहन अपने किसान बहन भाइयों को सुनवाते हैं एक देशभक्ति गीत। कलाकार है इंद्रपाल शर्मा।

0: किसान बहन भाइयों, आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत और कलाकार थे इंद्रपाल शर्मा।
1: और अब घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि आपसे अनुमति ली जाए, लेकिन अनुमति लेने से पहले आपको बताते चलें कल प्रसारित होने वाले ग्राम संसार और कृषि जगत कार्यक्रम के बारे में।
0: ग्राम संसार में कल बहन भाई सुनेंगे पत्रोत्तर पर आधारित लोक संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम। इसके साथ ही बहन भाई चर्चा सुनेंगे कारगिल विजय दिवस और मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर, और इसके अलावा भारतमाला परियोजना योजना की जानकारी दी जाएगी।
1: और कल के कृषि जगत कार्यक्रम में आप किसान बहन भाइयों के पत्रों के उत्तर और आपकी पसंद के लोक गीत सुनवाए जाएंगे। और इसके अलावा किसानों के लिए मौसम आधारित कृषि सलाह पर आप चर्चा सुन सकेंगे। तो किसान बहन भाइयों, ये तो जानकारी रही कल प्रसारित होने वाले ग्राम संसार और कृषि जगत कार्यक्रम की। लेकिन आज का ग्राम संसार और कृषि जगत कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस बारे में कोई भी प्रतिक्रिया आप देना चाहते हैं तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि एवं गृह एकांश द्वारा केंद्र निदेशक कमरा नंबर 610 नव प्रसारण भवन आकाशवाणी नई दिल्ली। और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी है feedback@gmail.com। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि जगत के प्रस्तुतकर्ता तुषार पाराशर और कार्यक्रम के संयोजक शिव नंदन लाल के साथ दीजिए अनुमति। सभी किसान बहन भाइयों को राम राम, राम।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, टीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए अब सुनते हैं गजल और कव्वाली का कार्यक्रम।

0: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। 7:45 होने को है, थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
2: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
5: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। कॉकरोच जनता पार्टी ने तत्काल प्रभाव से आंदोलन समाप्त करने की घोषणा की, कहा तीनों मांगे मानी गईं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना त्यागपत्र सौंपा। दिल्ली मेट्रो के सभी स्टेशन खोले गए। दिल्ली पुलिस ने

0: मादक पदार्थ तस्करी मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने 27वें करगिल विजय दिवस पर वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कॉमनवेल्थ गेम्स में पुरुषों की हैवीवेट पैरा पावर लिफ्टिंग में भारत का पहला पदक जीतने पर बधाई दी। सरकार के साथ बातचीत के बाद कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी ने तत्काल प्रभाव से आंदोलन वापस लेने की घोषणा की है। सीजेपी ने कहा कि हमारी सभी 3 मांगे मान ली गई हैं, इसलिए अब जंतर बंतर से लोग शांतिपूर्वक वापस लौट जाएं। नई दिल्ली में सरकार के साथ वार्ता के बाद सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास ने इसकी घोषणा की।
1: तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे।
0: केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने बताया कि सरकार प्रदर्शनकारियों पर दर्ज सभी मामले वापस लेगी।
2: सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी एक्शन FIR न हो और अगर है तो वो विड्रॉ हो और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा, इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है।
0: श्री नड्डा ने कहा कि परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए दिए गए सीजीपी के सुझावों पर विचार किया जाएगा।
2: हम एजुकेशन के एग्जामिनेशन के रिफॉर्म्स के लिए जो आपका चार्टर है उस पर हम गहन चिंतन भी करेंगे और आपके डेलीगेशन के साथ बातचीत करके जो कुछ भी हम डेलीबरेट कर सकेंगे वो हम करने का प्रयास करेंगे।
0: इससे पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना त्याग पत्र सौंप दिया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिन से छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति से वे व्यथित हैं और ये उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। उन्होंने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठा सकें और किसी भी छात्र का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में न उलझे, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को अपना त्याग पत्र सौंपने का निर्णय लिया। श्री प्रधान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन, विश्वास और निरंतर सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा है कि राष्ट्र सेवा उनके जीवन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और वे इसके प्रति सदा समर्पित रहेंगे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कहा कि उनका 10 साल का सफर सार्वजनिक जीवन और विद्यार्थी कल्याण के प्रति आजीवन समर्पण का प्रमाण है। उन्होंने श्री धर्मेंद्र प्रधान को उनकी अथक सेवा, सुधारों के प्रति प्रतिबद्धता और मजबूत भारत के निर्माण में योगदान के लिए धन्यवाद दिया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के पद से त्यागपत्र देने पर कहा कि यह निर्णय सार्वजनिक जीवन में नैतिक मूल्यों, मर्यादा और सिद्धांतों के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता दर्शाता है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि श्री प्रधान ने अपने सार्वजनिक जीवन में हर दायित्व को निष्ठा, ईमानदारी और पूर्ण समर्पण के साथ निभाया। दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने पंजाब में कथित पेपर लीक मामलों को लेकर पंजाब सरकार की आलोचना की है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के बावजूद अब तक स्पष्ट जवाबदेही तय नहीं की गई है।
3: श्री सिरसा ने कहा कि यदि छात्रों के भविष्य की चिंता है तो ये केवल दिल्ली तक सीमित नहीं होनी चाहिए बल्कि पंजाब के युवाओं के साथ भी समान न्याय होना चाहिए। उन्होंने पंजाब सरकार से सभी कथित पेपर लीक मामलों की समयबद्ध और निष्पक्ष जांच, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई तथा नैतिक जिम्मेदारी के आधार पर पंजाब के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। साथ ही उन्होंने कहा कि छात्रों के भविष्य के मुद्दों पर दोहरे मानदंड नहीं अपनाए जाने चाहिए। आरजू की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीषा।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामले में कड़ा कानून लाने को लेकर जारी किए गए अपने वीडियो संदेश पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए देश के युवाओं को धन्यवाद दिया। श्री मोदी ने युवाओं के जबरदस्त समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया।
4: थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं।

0: मंत्रालय ने बताया कि एयर सुविधा 2.0 की सेवाएं पूरी तरह से निशुल्क हैं और स्वघोषणा पत्र जमा करने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता। मंत्रालय ने कहा कि एकमात्र आधिकारिक एयर सुविधा 2.0 पोर्टल airsuvidha.civilaviation.gov.in है। भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी ने निर्बाध रूप से 1200 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय की है। इससे 3000 लीटर से अधिक डीजल की बचत हुई है और इससे केवल जल वाष्प उत्सर्जित हुआ है। इस हाइड्रोजन रेलगाड़ी को इस महीने की 17 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जींद और सोनीपत के बीच झंडी दिखाकर रवाना किया था। रेल मंत्रालय ने बताया कि रेलगाड़ी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच रासायनिक प्रतिक्रिया के माध्यम से बिजली उत्पन्न करती है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने मादक पदार्थ तस्करी मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक रिपोर्ट।
1: पुलिस ने इस दौरान लगभग 12 किलोग्राम से अधिक मात्रा में मादक पदार्थ बरामद किया है। इसके अलावा 28,800 रुपए और 13 मोबाइल फोन भी जब्त किया गया है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों में एक नाइजीरियाई महिला भी शामिल है। वहीं एक अन्य मामले में पुलिस ने अंतर्राज्यीय मादक पदार्थ तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से लगभग 19,70,000 की नशीली गोलियां बरामद की हैं, जिनका कुल वजन लगभग 470 किलोग्राम है। पुलिस ने बताया कि यह गिरोह दिल्ली, नोएडा और उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ तक फैला हुआ है। दोनों मामलों में जांच जारी है। आरजू की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए करिश्मा राय।
0: दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने अवैध शराब तस्करी मामले में एक आरोपी को द्वारका क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 150 क्वार्टर अवैध शराब और तस्करी में इस्तेमाल होने वाली एक दोपहिया वाहन बरामद किया है। मामले की जांच जारी है। दिल्ली पुलिस ने एक बार फिर साफ तौर पर उन वायरल सोशल मीडिया अफवाहों को खारिज कर दिया है, जिनमें दावा किया गया है कि नई दिल्ली जिले में ऐप आधारित फूड डिलीवरी सेवाओं पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। पुलिस ने कहा कि ये जानकारी तथ्यों के आधार पर गलत और गुमराह करने वाली है। वहीं दिल्ली यातायात पुलिस ने नई दिल्ली जिले में भारी भीड़ और अत्यधिक यातायात जाम को देखते हुए नागरिकों को नई दिल्ली क्षेत्र की ओर से यात्रा करने से बचने की सलाह दी है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम NCRTC ने 27वें करगिल विजय दिवस के अवसर पर भारतीय सशस्त्र बलों के वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक रिपोर्ट।
2: इस अवसर पर आज बेगमपुर नमो भारत स्टेशन पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली विद्यार्थियों के साथ NCRTC के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर स्कूली छात्रों के लिए गार्डिंग द बॉर्डर्स विषय पर चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें बच्चों ने सैनिकों के साहस को चित्रों के माध्यम से श्रद्धांजलि दी। NCRTC ने कहा कि नमो भारत स्टेशनों को सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का भी केंद्र बनाया जा रहा है। आरजू की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: कल करगिल विजय दिवस है। इसी संदर्भ में हमारी पर्सन बिहाइंड द स्टोरी श्रृंखला के अंतर्गत आगामी कड़ी में हम करगिल युद्ध के वयोवृद्ध और भारत के पहले ब्लेड रनर मेजर डीपी सिंह से बातचीत करेंगे। दिल्ली नगर निगम ने भारत मंडपम में आयोजित दिल्ली सरकार अचीवमेंट एंड स्कीम एक्सपो 2026 में अपने समर्पित स्टॉल के माध्यम से नागरिक केंद्रित पहलों, जन कल्याणकारी योजनाओं, नवाचारों और विभिन्न नागरिक सेवाओं का प्रदर्शन किया है। निगम के स्टॉल पर बड़ी संख्या में विद्यार्थियों, नागरिकों और विभिन्न संस्थानों के प्रतिनिधियों ने उत्साहपूर्वक भ्रमण किया तथा निगम की प्रमुख जन कल्याणकारी योजनाओं और नागरिक सेवाओं की जानकारी प्राप्त की। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने के नेतृत्व में दिल्ली पुलिस राष्ट्रीय राजधानी में कई पहलों के माध्यम से जुलाई महीने को बाल संरक्षण माह के रूप में मना रही है। कार्यक्रम के अंतर्गत दिल्ली पुलिस ने 321 सेशन के माध्यम से 1,12,000 से अधिक विद्यार्थियों को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया। शिक्षा निदेशालय ने पॉक्सो और बाल सुरक्षा नियमों के पालन की जांच के लिए 1,503 स्कूलों का निरीक्षण किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने कहा कि विद्यालय में शपथ समारोह, साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम और पुलिस स्टेशन के दौरे से बच्चों में पुलिसिंग के प्रति भरोसा और आत्मविश्वास बढ़ रहा है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने आज दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू के लोक निवास में मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सूद ने बताया।

इस दौरान राष्ट्रीय राजधानी से जुड़े प्रमुख नीतिगत विषयों और विकासात्मक पहलों पर विचार विमर्श हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 136वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कॉमनवेल्थ गेम्स में पुरुषों की हैवीवेट पैरा पावर लिफ्टिंग स्पर्धा में भारत का पहला पदक जीतने वाले झंडू कुमार को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि उपलब्धि देश के युवाओं और खिलाड़ियों को बड़े सपने देखने और उन्हें साकार करने की प्रेरणा देती है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली की पूर्व महापौर शकुंतला आर्य के निधन पर शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली के विकास, जनसेवा और संगठन के प्रति उनका समर्पण सदैव याद रखा जाएगा। राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में आज सवेरे हल्की वर्षा हुई, वहीं दिन भर लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने कल आमतौर पर बादल छाए रहने के साथ साथ कई जगहों पर सवेरे और दोपहर के समय हल्की हवा चलने की संभावना व्यक्त की है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 33 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने आज राजधानी में कांवड़ यात्रा को सुचारू, सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से संबंधित अधिकारियों तथा उच्च स्तरीय कांवड़ समिति के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज देवशयनी एकादशी पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने भगवान विष्णु के सभी के स्वस्थ, सुखी, समृद्ध और मंगलमय जीवन की कामना करते हुए कहा कि प्रभु की कृपा सदैव सभी पर बनी रहे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कॉकरोच जनता पार्टी ने तत्काल प्रभाव से आंदोलन समाप्त करने की घोषणा की, कहा तीनों मांगे मानी गई। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना त्याग पत्र सौंपा। दिल्ली मेट्रो के सभी स्टेशन खोले गए। दिल्ली पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने 27वें करगिल विजय दिवस पर वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में पुरुषों के हैवीवेट पैरा पावर लिफ्टिंग में भारत का पहला पदक जीतने पर बधाई दी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम मुशायरा।
1: सामईन की खिदमत में मोहम्मद अली कमाल का पुरखलूस आदाब। सामईन किसी अच्छे फनकार में ये खूबी होती है कि वो न सिर्फ ज़हनी और कलबी कैफियतों को समझता है और महसूस करता है, बल्कि जो कुछ लोगों पर गुजरती है उसका अपनी तख्लीकी काविश से बरमला इजहार भी करता है। शायरी के हवाले से अगर बात की जाए तो शायर ज़हनी और कलबी कैफियत को जो महसूस करता है शायरी में ढालता है और उन सब को लोगों के रूबरू पेश कर देता है। यही शायर का एक बड़ा कमाल है। अजीम फिलासफर हुमर का कहना है, शायरी तो की जाए लेकिन शायर का फ़र्ज ये है कि जो कुछ वो अपनी शायरी में बयान करे वो सच भी हो। इस तरह शायरी में जब हकीकत को बयान किया जाता है तो वो सबके दिलों की आवाज़ बन जाती है। वो किसी एक फ़र्द या शख्स के ख्यालात, जज्बात और एहसासात ना होकर आफाकी बन जाते हैं। आइए सामईन शायरी सुनी जाए, यानी सुनते हैं मुशायरा। इस मुशायरे की निजामत फरमा रहे हैं जनाब एजाज अंसारी।

0: आइए सुनते हैं।
1: आकाशवाणी के इस मुशायरे में जिन शोरे कराम को आज अपना कलाम पेश करना है, उसमें जनाब राशिद रहमान, जनाब शाकिर दहलवी, जनाब सलीम अमरोहवी और ये खादिम एजाज अंसारी। तो आइए आकाशवाणी के इस मुशायरे का आगाज किया जाए और मैं सबसे पहले जहमत देना चाहूँगा जनाब राशिद रहमान साहब को, जिनका ताल्लुक मेरठ से है और वो वहाँ से तशरीफ लाए हैं।
2: एक मतला और चंद शेर पेश कर देता हूँ, समाप्त फरमाए कि जब से तेरी आंख मेरी आंखों से लड़ी है,
1: जब से तेरी आंख मेरी आंखों से लड़ी है,
2: जब से तेरी आंख मेरी आंखों से लड़ी है, दुनिया की हर एक शय मेरे कदमों में पड़ी है।
1: क्या कहने क्या कहने,
2: दुनिया की हर एक शय मेरे कदमों में पड़ी है, और पूछो न सनम मुझसे जुदाई का ये आलम।
1: वाह।
2: पूछो न सनम मुझसे जुदाई का ये आलम, लगता है कि जैसे ये कयामत की घड़ी है।
1: वाह।
2: लगता है कि जैसे ये कयामत की घड़ी है। वाइज ये तेरा रोजे कयामत तो नहीं है,
1: वाइज ये तेरा रोजे कयामत
2: तो नहीं है, क्यों अपनी तुझे और मुझे अपनी पड़ी है।
1: वाह।
2: क्यों तुझे अपनी और मुझे अपनी पड़ी है, और कोई भी यहाँ मेरी हिमायत नहीं करता, कोई भी यहाँ मेरी हिमायत नहीं करता, ये भीड़ तो सूली पे चढ़ाने को अड़ी है, ये भीड़ तो सूली पे चढ़ाने को अड़ी है, और तदबीर ने तो अर्श पर पहुंचा दिया हमको, तदबीर ने तो अर्श पर पहुंचा दिया हमको, तकदीर से हर हाल में तदबीर बड़ी है।
1: अच्छा है, अच्छा है भाई,
2: तकदीर से हर हाल
1: में साहब अच्छा है,
2: बहुत बहुत शुक्रिया, तदबीर बड़ी है।
3: क्या कहने हैं?
2: और बतौर खास कि सब रस्ते चले जाते हैं, रुकता नहीं कोई, सब रस्ते चले जाते हैं, रुकता नहीं कोई, हालांकि बहुत देर से एक लाश पड़ी है।
1: हालांकि
2: बहुत देर से एक लाश पड़ी है।
1: वाह, क्या मंजर बनाया।
2: और जब से तेरी आंख मेरी आंखों से लड़ी है, दुनिया की हर एक शय मेरे कदमों में पड़ी है, और मक्कारों दगाबाजों की चलती है यहाँ पर, मक्कारों दगाबाजों की चलती है यहाँ पर, सच बोलने वाले की यहाँ खाट खड़ी है, सच बोलने वाले की यहाँ खाट खड़ी है। और मक्ता पेश है, मैं कई रोज से राशिद ये सोच रहा हूँ, वो कौन सी शय है जो मोहब्बत से बड़ी है।
1: वाह।
2: वो कौन सी शय है जो मोहब्बत से बड़ी है। एक मतला और चंद शेर और पेश कर देता हूँ,
1: इशारा
2: करें कि देखिए क्या से क्या हो गया,
1: देखिए क्या से क्या हो गया,
2: हमसे अपना जुदा हो गया।
3: वाह।
2: हमसे अपना जुदा हो गया, और हमसे कैसी खता हो गई, हमसे कैसी खता हो गई, बावफा बेवफा हो गया, बावफा बेवफा हो गया, और हुस्न जब से खफा हो गया,
1: हुस्न जब से खफा,
2: हुस्न जब से खफा हो गया, मुनफईल आईना हो गया, मुनफईल आईना हो गया, और जिंदगी एक उलझन बनी, जिंदगी एक उलझन बनी, सांस लेना सजा हो गया।
1: वाह वाह।
2: सांस लेना
1: वा,
2: वा, सजा हो गया, और रात भर खाक छानी मगर, रात भर
1: खाक
2: छानी मगर, ख्वाब भी लापता हो गया, ख्वाब भी लापता हो गया, और कोई शिकवा नहीं अब हमें,
1: कोई
2: शिकवा नहीं अब हमें, जो हुआ मौजिजा हो गया,
1: जो
2: हुआ मौजिजा हो गया, ढूंढता है उन्हें अब कहां, राशिद उनसे जुदा हो गया। और एक गजल के चंद शेर, कि मेरे ख्याल में दिन रात आ रहा है वो, मेरे ख्याल में दिन रात आ रहा है वो, मुझे सदाए लगा के बुला रहा है वो।
1: वाह।
2: और चमन में छाई है जैसे प्यार की बदली, चमन में छाई है जैसे ये प्यार की बदली, दिलो दिमाग पे इस तरह छा रहा है वो, दिलो दिमाग पे इस तरह छा रहा है वो, और जफाओ जुल्म की जहनों में तीरगी है बहुत, जफाओ जुल्म की जहनों में तीरगी है बहुत, मोहब्बतों का दिया यूं जला रहा है वो, मोहब्बतों का दिया यूं जला रहा है वो, और ज़बाने उर्दू का ये भी तो एक करिश्मा है।

0: ज़बाने
1: ज़बाने
0: उर्दू
1: उर्दू
0: का
1: का
0: ये
1: ये
0: भी
1: भी
0: तो
1: तो
0: एक
1: एक
0: करिश्मा
1: करिश्मा
0: है,
1: है।
0: गजल की बज्म को हर दिन सजा रहा है वो,
1: वाह
0: गजल की बज्म को हर दिन सजा रहा है वो। और वो जितने शेरों में पिन्हा है हसरते गम की, वो जितने शेरों में पिन्हा है हसरते गम की, वही कलाम दोबारा सुना रहा है वो,
1: वाह,
0: वही कलाम दोबारा
1: सुना
0: सुना रहा है वो। और ये देखता हूँ मैं नफरत की खेतियाँ करने, ये देखता हूँ मैं नफरत की खेतियाँ करने, मेरे दयार में हर रोज आ रहा है वो,
1: जी।
0: मेरे दयार में हर रोज आ रहा है वो। और मक्ता पेश है कि दुआ
1: इशारा
0: को हाथ उठाने थे अब जिसे राशिद, दुआ को
1: दुआ।
0: हाथ उठाने थे अब जिसे राशिद, हर एक बात पे खंजर उठा रहा है वो,
1: वाह
0: हर
1: वाह
0: एक
1: वाह वाह,
0: बात पे
1: क्या
0: खंजर उठा रहा है वो।
1: कहने
0: बहुत बहुत शुक्रिया।
1: हैं। वाह वाह
0: और एक मतलब और चंद शेर और
1: सर,
0: अर्ज करता हूं कि लड़कियां जब बनाने लगी हैं, लड़कियां जब बनाने लगी हैं, रोटियां मुस्कुराने लगी हैं, रोटियां मुस्कुराने लगी हैं। और रहा आसान होगी यकीनन, रहा आसान
1: आसान होगी
0: होगी
1: यकीनन।
0: यकीनन, मुश्किलें आजमाने लगी हैं,
1: वाह वाह,
0: मुश्किलें आजमाने लगी हैं,
1: रहा आसान होगी यकीनन। वाह
0: मुश्किलें आजमाने लगी हैं। और कोई उनसे ये जाकर बता दे, कोई उनसे ये जाकर बता दे, उनकी यादें सताने लगी हैं,
1: वाह,
0: उनकी यादें सताने लगी हैं। और मक्ता पेश है कि तेरी गजलों को राशिद सुना है, तेरी गजलों को राशिद सुना है, बुलबुले गुनगुनाने लगी हैं,
1: वाह वाह।
0: बुलबुले गुनगुनाने लगी हैं। शुक्रिया, आदाब।
1: अभी आप जनाब राशिद रहमान को समाअत फरमा रहे थे, और अब मैं गुजारिश करने जा रहा हूं जनाब शाकिर दहलवी साहब से, जो अपने मुनफरिद लहजे की वजह से पहचाने जाते हैं, एक अच्छी शायरी जदीद लबो लहजे के शायर जनाब शाकिर दहलवी।
2: एक गजल के चंद अशआर।
1: इरशाद।
2: रेशम के एक जाल में उलझे हुए हैं हम,
1: रेशम के एक जाल में उलझे हुए हैं हम।
2: रेशम के एक जाल में उलझे हुए हैं हम, यानी किसी ख्याल में
1: उलझे।
2: उलझे हुए हैं
1: हाँ
2: हम।
1: हाँ हाँ
2: बहुत
1: वाह
2: अच्छा,
1: वाह
2: बहुत
1: वाह
2: अच्छा
1: वाह वाह
2: मतलब
1: वाह
2: है।
1: वाह,
2: क्या
1: क्या
2: कहने
1: कहने
2: हैं।
1: हैं।
2: रेशम के एक जाल में उलझे हुए हैं हम,
1: वाह वाह वाह,
2: यानी किसी ख्याल में उलझे हुए हैं हम। माहौल जश्न का है मगर दिल उदास है,
1: माहौल जश्न का
2: जश्न
1: है
2: का
1: मगर
2: मगर
1: दिल
2: दिल
1: उदास
2: माहौल जश्न का
1: है,
2: है मगर दिल
1: दिल उदास
2: उदास
1: है।
2: है, ऐसे तेरे मलाल में उलझे
1: उलझे
2: हुए
1: हुए
2: हैं
1: क्या
2: हम।
1: कहने
2: वाह
1: शाकिर
2: वाह वाह
1: साहेब,
2: वाह,
1: वाह वाह वाह वाह
2: बहुत
1: वाह वाह
2: अच्छे।
1: वाह,
2: माहौल जश्न का है मगर दिल उदास है, ऐसे तेरे मलाल में उलझे हुए हैं हम। शेर देखिए सलीम साहब
1: जी
2: के,
1: हाँ,
2: फूलों
1: गोश
2: के खैर ख्वाह तो हर समत है यहाँ,
1: फूलों की
2: फूलों के
1: खैर ख्वाह
2: खैर
1: तो हर
2: ख्वाह तो
1: सम हर
2: हर समत
1: संत
2: है
1: है
2: यहाँ,
1: यहाँ,
2: खुशबू की देखभाल में उलझे हुए
1: उलझे
2: हैं
1: क्या
2: हम।
1: कहने
2: वाह
1: क्या
2: वाह
1: कहने
2: वाह वाह वाह
1: क्या
2: वाह वाह,
1: कहने।
2: बहुत प्यारा शेर है। वाह वाह वाह, फूलों के खैर ख्वाह तो हर समत है यहाँ,
1: क्या कहने।
2: खुशबू की देखभाल में उलझे हुए हैं हम, खुशबू की देखभाल में उलझे हुए हैं हम। आया ना आज तक कोई उम्मीद भी नहीं,
1: वाह,
2: आया ना आज तक कोई
1: कोई उम्मीद
2: उम्मीद भी
1: नहीं,
2: नहीं, उस लम्हे विसाल में उलझे
1: उलझे
2: हुए
1: हुए।
2: हैं
1: वाह
2: हम।
1: वाह
2: बहुत
1: वाह
2: अच्छा,
1: वाह वाह वाह
2: बहुत
1: वाह
2: अच्छा।
1: वाह,
2: आया ना आज तक कोई उम्मीद भी नहीं, उस लम्हे विसाल में उलझे हुए हैं हम। दुश्मन की ये मजाल कहाँ घेर ले हमें,
1: वाह,
2: दुश्मन की ये मजाल
1: मजाल कहाँ
2: कहाँ
1: घेरे
2: घेर
1: ले
2: ले हमें,
1: हमें,
2: अपनी ही एक चाल में उलझे
1: उलझे
2: हुए
1: हुए
2: हैं
1: हम।
2: हम।
1: वाह
2: अच्छा है
1: वाह
2: भाई,
1: वाह
2: क्या कहने
1: वाह
2: हैं। वाह
1: वाह
2: बहुत
1: वाह
2: बढ़िया।
1: वाह
2: दुश्मन की ये मजाल कहाँ घेर ले हमें,
1: वाह,
2: अपनी ही एक चाल में
1: उलझे
2: उलझे हुए
1: हुए
2: हैं
1: हैं
2: हम।
1: हम।
2: एक और गजल से चंद अशआर देखिएगा।
1: जी
2: इर्शाद।
1: इरशाद।
2: एक खता की और कहीं से हम कहीं के हो गए, एक खता की
1: और
2: और
1: कहीं से
2: कहीं
1: हम
2: से
1: कहीं के
2: हम
1: हो गए,
2: कहीं
1: कहीं
2: के
1: के
2: हो
1: हो गए,
2: गए, आसमां के रहने वाले थे जमी के
1: जमी के
2: हो
1: हो गए।
2: गए।
1: अच्छा
2: वाह
1: है,
2: वाह वाह वाह,
1: अच्छा है,
2: एक
1: बहुत अच्छा
2: खता की और कहीं से हम कहीं के हो गए,
1: है। वाह वाह वाह
2: आसमां
1: वाह वाह,
2: के रहने वाले
1: भाई
2: थे
1: बहुत प्यारा है।
2: जमी के हो गए, आसमां के रहने वाले थे जमी के हो गए। हो खुशी कोई भी दिल में देर तक ठहरी नहीं, हो
1: वाह,
2: खुशी कोई भी दिल में देर तक ठहरी नहीं, आए गम मेहमान बनकर और यहीं के हो गए।
1: अच्छा
2: बहुत अच्छा,
1: है,
2: वाह
1: अच्छा
2: बहुत अच्छा,
1: है,
2: बहुत अच्छा।
1: बहुत अच्छा है
2: हो
1: शाकिर साहेब,
2: खुशी कोई भी दिल में देर तक ठहरी
1: भाई क्या
2: नहीं,
1: कहने हैं। वाह वाह वाह वाह,
2: आए गम मेहमान बनकर और
1: और
2: यहीं
1: यहीं
2: के
1: के
2: हो
1: हो गए।
2: गए। हमने दिल

0: दी जगह यारों को, लेकिन यार लोग
1: हाँ
0: हमने दिल में दी जगह यारों को, लेकिन यार लोग छोड़कर दिल की हवेली आस्तीन के हो
1: हो
0: गए।
1: गए। अरे
0: अरे
1: वाह
0: बहुत
1: वाह
0: अच्छा,
1: वाह वाह,
0: बहुत
1: क्या
0: अच्छे हैं।
1: कहने,
0: हमने
1: वाह वाह
0: दिल में दी जगह यारों को, लेकिन
1: क्या
0: यार
1: बात
0: लोग
1: है
0: वाह वाह
1: शाकिर
0: वाह
1: साहब,
0: वाह वाह वाह,
1: वाह वाह वाह
0: छोड़कर
1: वाह,
0: दिल की हवेली आस्तीन के हो गए, और
1: क्या कहने हैं, वाह वाह।
0: आपका हर बात पर कहना वो हमसे जी नहीं, आपका हर बात पर कहना वो हमसे जी नहीं, हम भी आशिक आपकी उस जी नहीं के हो गए।
1: वही क्या कहने
0: वाह
1: हैं, वाह
0: वाह
1: वाह
0: वाह
1: वाह
0: वाह,
1: वाह, जी नहीं के
0: हम
1: हो
0: भी
1: गए,
0: आशिक आपकी उस जी नहीं के हो गए।
1: क्या
0: और
1: कहने
0: शेर
1: हैं
0: दिखेजा साहब
1: जनाब,
0: कि उनसे भी तरके ताल्लुक निभ न पाया देर तक,
1: उनसे भी तरके ताल्लुक निभ न पाया देर तक,
0: उनसे भी तरके ताल्लुक निभ न पाया देर तक, हम भी सब शिकवे भुलाकर फिर उन्हीं के हो गए।
1: अच्छा है, बहुत
0: बहुत
1: अच्छा
0: अच्छा,
1: है, वाह
0: वाह वाह
1: वाह
0: वाह वाह,
1: वाह वाह
0: बहुत
1: वाह
0: बढ़िया,
1: वाह,
0: उनसे भी तरके ताल्लुक निभ न पाया देर तक,
1: क्या
0: क्या
1: कहने,
0: कहने,
1: क्या कहने,
0: हम
1: बहुत
0: भी
1: बढ़िया,
0: सब शिकवे भुलाकर फिर उन्हीं के हो
1: वाह
0: गए।
1: वाह वाह
0: बहुत
1: वाह वाह वाह
0: बहुत
1: वाह वाह
0: शुक्रिया।
1: वाह वाह वाह।
0: और एक गजल देखिए,
1: इरशाद,
0: दिले सियाह में शम्मे जलाने वाला शख्स,
1: आह दिले सियाह,
0: दिले सियाह में शम्मे
1: हमें
0: जलाने
1: जलाने
0: वाला
1: वाला
0: शख्स,
1: शख्स,
0: मिला था हमको भी एक बार एक उजाला शख्स,
1: अच्छा है, बहुत
0: दिले
1: अच्छा,
0: सियाह में शम्मे
1: शम्मे
0: जलाने
1: जलाने
0: वाला
1: वाला शख्स,
0: शख्स, मिला था हमको भी एक बार उजाला शख्स, और तुम्हें ये चाहिए उसको सदाएं देते रहो,
1: वाह,
0: बहुत खूब, तुम्हें ये चाहिए उसको सदाएं देते रहो, वगरना लौट भी सकता है आने वाला शख्स, बहुत
1: वाह
0: अच्छा
1: वाह
0: बहुत
1: वाह
0: अच्छा,
1: वाह वाह वाह वाह,
0: तुम्हें ये चाहिए उसको सदाएं देते रहो,
1: वे
0: वाह
1: क्या
0: वाह
1: कहने
0: वाह
1: हैं,
0: वाह
1: वाह
0: वाह,
1: वाह वाह
0: वगरना लौट भी सकता है आने वाला शख्स।
1: वाह वाह वाह वाह
0: और
1: वाह,
0: शेर देखिए कि वगरना लौट भी सकता है आने वाला शख्स, ये शख्स खुद जो बजाहिर खंडर सा लगता है,
1: वे क्या कहने हैं, वाह, ये शख्स
0: ये
1: बहुत
0: शख्स खुद जो बजाहिर
1: खंडर
0: खंडर सा
1: खंडर सा
0: लगता
1: लगता
0: है,
1: है
0: बनाए हैं कई इसने बुलंदो बाला
1: शख्स,
0: शख्स,
1: भाई
0: बहुत अच्छे हैं, बहुत
1: वाह
0: अच्छे,
1: वाह
0: बहुत
1: वाह
0: अच्छे,
1: वाह वाह, भाई बहुत प्यारा शेर कह दिया है, वाह वाह
0: ये
1: वाह, बहुत
0: शख्स
1: बढ़िया,
0: खुद जो बजाहिर
1: क्या
0: खंडर
1: कहने
0: सा
1: हैं
0: लगता
1: भाई,
0: है,
1: क्या कहने हैं, वाह वाह वाह वाह
0: बनाए हैं कई इसने बुलंदो बाला शख्स,
1: वाह वाह वाह
0: और
1: वाह,
0: मशाल उठा के जो निकला था रोशनी करने,
1: हाँ मशाल उठा के
0: मशाल
1: निकला था
0: उठा के जो
1: जो
0: निकला
1: निकला
0: था
1: था
0: रोशनी
1: रोशनी
0: करने,
1: करने,
0: अंधेरी भीड़ ने कल शब वो मार डाला शख्स।
1: अरे
0: वाह
1: भाई
0: वाह
1: भाई भाई
0: वाह,
1: भाई, अच्छा
0: मतलब
1: है भाई,
0: बहुत
1: अच्छा है
0: बढ़िया,
1: शाकिर साहब,
0: भाई वाह वाह
1: दोबारा
0: वाह
1: पढ़िए
0: वाह
1: इसको,
0: वाह,
1: वाह वाह
0: मशाल
1: वाह
0: उठा
1: वाह
0: के जो
1: वाह,
0: निकला था रोशनी करने,
1: भाई क्या कहने हैं, वाह वाह वाह,
0: अंधेरी भीड़ ने कल शब वो मार डाला
1: क्या बात
0: शख्स,
1: है भाई,
0: बहुत
1: वाह
0: अच्छा,
1: वाह वाह वाह,
0: चराग लेके जहां भर में घूम लीजिएगा,
1: आहा
0: चराग लेके जहां भर में घूम लीजिएगा, कहीं ना पाएंगे हम जैसा भोला भाला
1: भाला
0: शख्स,
1: शख्स, वाह वाह वाह वाह
0: बहुत
1: वाह
0: बढ़िया,
1: वाह, भाई क्या
0: चराग
1: पूरा दीप को
0: लेके जहां
1: निभाया
0: भर में
1: आपने,
0: घूम
1: वाह वाह
0: लीजिएगा,
1: वाह वाह वाह वाह,
0: कहीं ना पाएंगे हम जैसा भोला
1: भोला
0: भाला
1: भाला
0: शख्स,
1: शख्स,
0: बहुत
1: वाह वाह
0: शुक्रिया।
1: वाह, खंडर वाला शेर एक बार फिर जहमत हो गया आपको, वाह वाह
0: ये
1: वाह,
0: शख्स खुद जो बजाहिर खंडर सा
1: खंडर सा
0: लगता
1: लगता
0: है,
1: है, हा,
0: ये शख्स खुद जो बजाहिर खंडर सा लगता है, बनाए हैं कई इसने बुलंदो बाला शख्स,
1: वाह वाह
0: बहुत
1: वाह वाह
0: अच्छे,
1: वाह
0: बहुत
1: वाह वाह
0: बढ़िया,
1: वाह वाह, क्या
0: बहुत
1: कहने
0: खूब।
1: हैं, हाँ बनाए हैं कई इसने बुलंदो वाला शख्स, वाह वाह। सामईन, अभी आप जनाब शाकिर दहलवी को समाअत फरमा रहे थे, और अब मैं जिस शायर के हुजूर हाजिर हो रहा हूँ उसे जनाब सलीम अमरोही के नाम से जाना जाता है। सलीम अमरोही साहब अपने मुतरन्निम आवाज़ और लहजे की वजह से भी अपनी खास शनाख्त रखते हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब सलीम अमरोही से।
2: गजल के चंद अशआर पेश कर रहा हूँ, समाअत फरमाइए, आपका हुक्म है। आपने कहा कि मुतरन्निम शायर, लेकिन आज कोशिश करूँगा कुछ तहत में आप तक कुछ अशआर पहुँचा सकूँ।
1: बहुत
2: अर्ज
1: अच्छा,
2: किया है कि आदमी ने उरूज पाया भी, आदमी ने उरूज पाया भी, पर जमी में यही समाया भी,
1: वाह
2: बहुत अच्छे,
1: बहुत
2: आदमी ने उरूज पाया भी,
0: बढ़िया,
2: पर जमी में यही समाया भी, पर जमी में यही समाया भी, इस तरह बेकरार करके मुझे,
1: इस कदर बेकरार करके
2: इस
1: मुझे,
2: तरह बेकरार करके मुझे, आपको कुछ करार आया भी, इस
1: आया,
2: तरह बेकरार करके मुझे,
0: आपको कुछ करार आया भी,
2: आपको कुछ करार आया भी,
1: बहुत
2: आपको
1: अच्छा,
2: कुछ قرار آیا بھی.

0: शेर समाप्त होना, ये याद देखिएगा कि घर अंधेरे में होता है इंसान,
1: घर अंधेरे में होता है
0: घर अंधेरे में होता है इंसान, छोड़ देता है साथ साया भी।
1: अच्छा है,
2: बहुत अच्छा है।
0: घर अंधेरे में होता है इंसान,
3: छोड़ देता है साथ,
0: छोड़ देता है साथ साया भी, छोड़ देता है साथ साया भी। कौन है जो ये पूछे माँ की तरह, कौन है जो ये पूछे माँ की तरह, कुछ मेरे लाल तूने खाया भी।
1: अच्छा है, अच्छा है भाई।
0: कौन है जो ये पूछे माँ की तरह,
1: क्या बात है सलीम साहब,
0: कुछ मेरे लाल तूने खाया भी, कुछ मेरे लाल तूने खाया भी। और हमसे दूरी ये बेसबब क्यों है,
1: हमसे दूरी ये बेसबब क्यों है,
0: हमसे दूरी ये बेसबब क्यों है, क्या कभी हमको आजमाया भी।
1: वाह वाह वाह वाह।
0: हमसे दूरी ये बेसबब क्यों है,
1: वाह वाह वाह वाह वाह,
0: क्या कभी हमको आजमाया भी। ये शेर कुछ हटके हो गया, देखिएगा शायद किसी लायक हो, के क्या कभी हमको आजमाया भी। खर्च करने से पहले ये सोचें,
1: खर्च करने से पहले ये सोचें,
0: खर्च करने से पहले ये सोचें, आपने कुछ कभी कमाया भी।
1: वाह वाह,
0: खर्च करने से पहले ये,
1: अच्छा शेर है सलीम साहब, अच्छा शेर है। वाह वाह वाह,
0: खर्च करने से पहले ये सोचें, आपने कुछ कभी कमाया भी। सादगी थी तुम्हारे शेरों में,
1: वाह वाह वाह वाह,
0: सादगी थी तुम्हारे शेरों में, यूं ही सबकी समझ में आया।
1: वाह वाह,
0: सादगी थी तुम्हारे शेरों में। मख्ता देखिएगा शायद किस लायक हो, जाकिर साहब देखिएगा कि इतनी लंबी हयात पाई सलीम,
1: इतनी लंबी हयात,
0: इतनी लंबी हयात पाई सलीम, कुछ जमाने को कर दिखाया भी।
1: वाह,
0: इतनी लंबी हयात पाई सलीम, कुछ जमाने को कर दिखाया भी।
1: गजल
0: के चंद अशआर और समाअत फरमा लीजिए,
1: इरशाद।
0: मतलब देखें कि जब भी आवाज में मिली आवाज,
1: जब भी आवाज में मिली आवाज,
0: जब भी आवाज में मिली आवाज, खुद ब खुद दूर तक गई आवाज। जब भी आवाज में मिली आवाज, खुद ब खुद दूर तक गई आवाज, और धीमा धीमा सा आपका लहजा,
1: धीमा धीमा सा आपका लहजा,
0: धीमा धीमा सा आपका लहजा, और फिर उस पर मखमली आवाज। धीमा धीमा सा आपका लहजा, और फिर उस पर मखमली आवाज। मुद्दतों बाद है सुना लेकिन, मुद्दतों बाद है सुना लेकिन, लग रही है सुनी सुनी आवाज।
1: वाह वाह वाह,
0: लग रही है सुनी सुनी आवाज, और हैं बहुत सी जहां में आवाजें, हैं बहुत सी जहां में आवाजें, पर नहीं कोई आपसी आवाज।
1: अच्छा है, अच्छा है। वाह वाह वाह,
0: बहुत सी जहां में आदाब हैं, बहुत सी जहां में आवाजें, पर नहीं कोई आपसी आवाज। और दिल से उठती है मुख्तलिफ लय में, दिल से उठती है, दिल से उठती है मुख्तलिफ लय में, और बनती है शायरी आवाज।
1: अच्छा है, अच्छा है।
0: दिल से उठती है मुख्तलिफ लय में,
1: सलीम अमरोही साहब, वाह वाह वाह।
0: दिल से उठती है मुख्तलिफ लय में, और बनती है शायरी आवाज। किसी सूरत वो दब नहीं पाती,
1: किसी सूरत वो दब नहीं
0: किसी
1: पाती,
0: किसी सूरत वो दब नहीं पाती, हक की खातिर अगर उठी आवाज।
1: वाह वाह वाह वाह,
0: हक की खातिर अगर उठी आवाज, वो कहीं बनती है मौत का ये सबब, कहीं बनती है मौत का ये सबब, कहीं देती है जिंदगी आवाज।
1: वाह वाह वाह वाह,
0: कहीं बनती है मौत का ये सबब, कहीं देती है जिंदगी आवाज। और ये भी देखा है हमने दुनिया में,
1: वाह ये भी देखा है,
0: देखा है हमने दुनिया में, मार देती है अनसुनी आवाज।
1: अच्छा है, अच्छा है।
0: मार दे आदा, मार देती है अनसुनी आवाज, और खुद दिखा देती है।

0: असर अपना,
1: खुद दिखा देती है असर अपना,
0: खुद दिखा देती है असर अपना, हो अगर दर्द में भरी आवाज।
1: अच्छा है, अच्छा है।
0: खुद दिखा देती है असर अपना, हो अगर दर्द में भरी आवाज, और स्वर उठाकर वो चल नहीं पाता,
1: सर उठाकर वो
0: चल नहीं पाता, जिसकी दुनिया में दब गई आवाज।
1: वाह वाह वाह,
0: जिसकी दुनिया में दब गई आवाज, मैंने लफ्जों में जब पिरोई सलीम, मैंने लफ्जों में जब पिरोई सलीम, पूरी महफिल में गूंज उठी आवाज।
1: वाह वाह,
0: पूरी महफिल में गूंज उठी आवाज, जब भी आवाज में मिली आवाज, खुद ब खुद दूर तक गई आवाज।
1: वाह वाह, अभी आप जनाब सलीम अमरोही को समाअत फरमा रहे थे।
2: बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहता हूं अब एक ऐसी शख्सियत के हुजूर पहुंचा जाए जो न सिर्फ अपनी निजामत के हवाले से पूरी दुनिया में अपनी एक मुनफरिद पहचान रखते हैं, बल्कि शायरी भी वो इस अंदाज से करते हैं कि लोग उनके सुनने के लिए बेचैन रहा करते हैं। मैं बहुत अदब और एहतराम के साथ आज के इस मुशायरे के सीनियर शायर जनाब एजाज अंसारी साहब के हुजूर पहुंचता हूं और उनसे दरख्वास्त करता हूं कि वो अपना कलाम पेश करें।
1: शुक्रिया सलीम अमरोही साहब। सबसे पहले एक दो कतात समत फरमा लीजिए, फिर गजल तक पहुंचूंगा। पता बफैज़े शिद्दते एहसास क्या महसूस होता है, बफैज़े शिद्दते एहसास क्या महसूस होता है, सभी का दर्द अपना दर्द सा महसूस होता है, बफैज़े शिद्दते एहसास क्या महसूस होता है, सभी का दर्द अपना दर्द सा महसूस होता है। मैं जब फुटपाथ पर बच्चों को सोता देख लेता हूँ, मेरा बिस्तर मुझे कांटों भरा महसूस होता है,
3: बहुत बहुत खूब,
1: मेरा बिस्तर मुझे कांटों भरा महसूस होता है। मैं जब फुटपाथ पर बच्चों को सोता देख लेता हूँ,
3: बहुत अच्छा,
1: मेरा बिस्तर मुझे कांटों भरा महसूस होता है।
0: वाह वाह वाह,
1: गजल का मतला यहीं से समाज फरमाए और देखें ये मतला सलीम साहब, आप भी मोहतरम रहमान साहब और शाकिर भाई के, फकत मंजर नहीं अक्से पसे मंजर भी जाता है, फकत मंजर नहीं अक्से पसे मंजर भी जाता है, बहुत दिन तक न मिलने से ताल्लुक मर भी जाता है।
3: बहुत अच्छे, बहुत खूब,
0: वाह वाह वाह वाह।
1: फकत मंजर नहीं अक्से पसे मंजर भी जाता है,
0: वाह वाह वाह,
1: बहुत दिन तक न मिलने से ताल्लुक मर भी जाता है,
0: वाह वाह वाह।
1: जरूरी इसलिए है हादसों का सामना करना, झिझक भी खत्म होती है दिल से डर भी जाता है,
3: डर भी जाता है।
1: जरूरी इसलिए है हादसों का सामना करना, झिझक भी खत्म होती है दिल से डर भी जाता है, और वो मेरा दोस्त जिसकी दोस्ती पर नाज है मुझको सुना है, अब वो मेरे दुश्मनों के घर भी जाता है।
3: बहुत अच्छे, बहुत वाह
0: वाह।
1: वो मेरा दोस्त जिसकी दोस्ती पर नाज है मुझको सुना है, अब वो मेरे दुश्मनों के घर भी जाता है। ये कैसा इम्तहान लिखा है उसने मेरी किस्मत में, अगर पगड़ी बचाता हूँ तो मेरा सर भी जाता है।
3: बहुत,
1: ये कैसा इम्तहान लिखा है उसने मेरी किस्मत में, अगर पगड़ी बचाता हूँ तो मेरा सर भी जाता है। जिसे होती है धुन एजाज मंजिल तक पहुँचने की, जिसे होती है धुन एजाज मंजिल तक पहुँचने की, वो मंजिल तक हजारों ठोकरे खाकर भी जाता है, वो मंजिल तक हजारों ठोकरे खाकर भी जाता है। और यहीं से दूसरी गजल का मतला समाज फरमा लें सलीम साहब के, कई दिनों से इनायत ही आपकी कम है, कई दिनों से इनायत ही आपकी कम है, इसीलिए मेरे चेहरे पे ताजगी कम है।
3: क्या कहने, क्या कहने,
1: कई दिनों से इनायत ही आपकी कम है रहमान साहब, इसीलिए

0: ये मेरे चेहरे पे ताजगी कम है। और शेर अब सुनिए शागिर भाई कि उसे लम्हे को कैसे करूं नजरअंदाज, वो एक लम्हा के जिसके लिए सदी कम है।
1: बहुत अच्छा,
2: बहुत अच्छा है।
0: उस एक लम्हे को कैसे करूं नजर अंदाज, वो एक लम्हा के जिसके लिए सदी कम है।
1: सदी कम है।
0: वाह। फरेबो मकर नहीं मेरे खून में शामिल, फरेबो मकर नहीं मेरे खून में शामिल, यही सबब है कि लोगों से दोस्ती कम है।
2: कम है।
0: यही सबब है कि लोगों से दोस्ती कम है। यहाँ खुलूसो वफा के हैं लफ्ज बेमानी, यहाँ खुलूसो वफा के हैं लफ्ज बेमानी, हमें तलाश है जिस चीज की वही
2: कम है।
1: बहुत खूब, बहुत खूब। क्या कहें,
0: यहाँ खुलूस व वफा के हैं लफ्ज बेमानी, हमें तलाश है जिस चीज की वही कम है। और शेर सुन लीजिए साहब, ये तुमने कर लिया हिजरत का फैसला कैसे, ये तुमने कर लिया हिजरत का फैसला कैसे, हमारे गांवों की मिट्टी में क्या नमी कम है। शागिर भाई, ये तुमने कर लिया हिजरत का फैसला कैसे, हमारे गांव की मिट्टी में क्या नमी कम है। और मेरी जिंदगी का बहुत सच्चा शेर के गिरा गुजरता है पल भी किसी के साथ मुझे, गिरा गुजरता है पल भी किसी के साथ मुझे, किसी के साथ बिताने को जिंदगी कम है।
1: बहुत, बहुत,
0: गिरा गुजरता है पल भी किसी के साथ मुझे, किसी के साथ बिताने को जिंदगी कम है। ये तुमने कर लिया हिजरत का फैसला कैसे, हमारे गांव की मिट्टी में क्या नमी कम है।
1: बहुत अच्छा,
0: शुक्रिया,
1: बहुत
0: बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, इससे पहले के अख्तिताम का ऐलान किया जाए, मैं एक बार फिर उन शोरे कराम के नामे नामी का ऐलान करना चाहूंगा जिन्होंने आज के इस आकाशवाणी के मुशायरे में हिस्सा लिया और अपना कलाम पेश किया। जनाब राशिद रहमान, जनाब शाकिर देहलवी, जनाब सलीम अमरोही और ये खादिम एजाज अंसारी।
3: सामीन, अभी आप मुशायरा सुन रहे थे, निजामत के फराइज अंजाम दे रहे थे जनाब एजाज अंसारी। इस मुशायरे की तरतीब पेशकश थी इंतज़ार अली सैफी की। अब अपने दोस्त मोहम्मद अली कमाल को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।
4: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत। फिल्म संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सबसे पहले सुनिए उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में फिल्म मन का ये गीत।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। 8:45 होने को है, आइए अब सुनते हैं समाचार संध्या।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। कॉकरोच जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह के साथ बातचीत और सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद विरोध प्रदर्शन तत्काल प्रभाव से समाप्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना। उत्तर प्रदेश में सारनाथ के प्राचीन बौद्ध स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। और हरारे में भारत ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 90 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिनों से छात्रों के

0: विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति से वे व्यथित हैं। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। श्री प्रधान ने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठा सकें, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को इस्तीफा सौंपने का निर्णय लिया है। श्री प्रधान ने कहा कि नीट यूजी परीक्षा में अनियमितताओं के बाद सरकार ने जांच सीबीआई को सौंप दी और परीक्षा रद्द कर दी। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री प्रधान का मंत्रिपरिषद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी नए शिक्षा मंत्री होंगे। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का 10 साल का सफर सार्वजनिक जीवन और विद्यार्थी कल्याण के प्रति आजीवन समर्पण का प्रमाण है। श्री रिजिजू ने देश के शिक्षा तंत्र को सुदृढ़ करने और लाखों युवा विद्यार्थियों को हर निर्णय के केंद्र में रखने के लिए श्री प्रधान के ईमानदार प्रयासों की सराहना की। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि श्री प्रधान ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सफल कार्यान्वयन और अन्य पहलों के माध्यम से भारत की शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी ने सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद आंदोलन को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ प्रतिनिधिमंडल की तीसरे दौर की वार्ता के बाद सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने लोगों से शांतिपूर्वक घर लौटने की अपील की।
1: तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे।
0: श्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने की मांग स्वीकार कर ली है।
2: सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी एक्शन FIR न हो और अगर है तो वो विड्रॉ हो और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा, इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है।
0: नीट यूजी पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजे के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार नियमों तथा विनियमों के अनुरूप अधिकतम मुआवजा सुनिश्चित करेगी।
2: कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम।
0: परीक्षा सुधारों पर सीजेपी के 5 सूत्री प्रस्ताव पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा से कांग्रेस के पीछे हटने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने यह बात कही।
3: कांग्रेस पार्टी से स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूं कि सोमवार को संसद के वर्तमान सत्र का दूसरा सप्ताह प्रारंभ होगा, आप इस समस्या पर और आपके द्वारा जो भी विषय रखे गए जब सरकार संसद में चर्चा करने के लिए तैयार है तो आप सोमवार से संसद की चर्चा में भाग लेंगे अथवा पुनः चर्चा से भागेंगे।
0: श्री त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों का एकमात्र उद्देश्य राजनीतिक लाभ उठाना है, न कि छात्रों की चिंताओं का समाधान करना। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सरकार से देश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है। नई दिल्ली में उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को छात्रों की जीत बताया। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा TET पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी विजेंद्र कुमार गुप्ता और उसके सहयोगी इंद्रजीत विनय कुमार सिंह को भिवंडी की एक अदालत ने 30 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। दोनों को बिहार के समस्तीपुर से गिरफ्तार किया गया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की आलोचना करते हुए कहा कि पेपर लीक माफिया इन्हीं पार्टियों की देन है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पेपर लीक माफिया के खिलाफ सख्त कानून ला रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी

0: बुखारेस्ट में उन्होंने भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत की। राष्ट्रपति ने भारतीय समुदाय को दोनों देशों के बीच बढ़ती साझेदारी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बताया।
1: भारतीय प्रवासी समुदाय एकजुट होकर रोमानिया में भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए। भारतीय आईटी इंजीनियरिंग स्कॉलर्स, रिसर्चर्स, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स तथा विद्यार्थियों की नई पीढ़ी अब रोमानिया को अपना घर बना रहे हैं। रोमानिया की अर्थव्यवस्था और समाज में अपना योगदान तथा यहाँ भारतीय संस्कृति और मूल्यों के प्रसार के लिए आपके प्रयास आपको भारत का सच्चा प्रतिनिधि बनाते हैं।
0: विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नई दिल्ली में सिंगापुर के कानून मंत्री एडविन टोंग एससी के साथ द्विपक्षीय बैठक की। श्री मेघवाल ने दोनों देशों के बीच कानूनी सहयोग मजबूत करने, वैकल्पिक विवाद समाधान को बढ़ावा देने और संस्थागत तथा न्यायिक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। सरकार नियमित संवाद और रचनात्मक परामर्श के माध्यम से कर्मचारी संगठनों के साथ जुड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध भारतीय डाक कर्मचारी संघ के 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत के दौरान ये बात कही। डॉ सिंह ने बताया कि लगभग 3 दशकों से लंबित कई पुरानी सेवा संबंधी शिकायतों का समाधान पारदर्शी और कर्मचारी केंद्रित संचालन के माध्यम से किया गया है। रसायन और उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा ने आज नई दिल्ली में लघु उद्योग भारती फार्मा कॉन्क्लेव 2026 का उद्घाटन किया। श्री नड्डा ने कहा कि भारत का फार्मास्यूटिकल सेक्टर राष्ट्र निर्माण का एक प्रमुख स्तंभ है, जो नवाचार को बढ़ावा देता है, रोजगार सृजित करता है और सस्ती स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। उत्तर प्रदेश के सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व का क्षण बताया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सारनाथ भारत की शाश्वत आध्यात्मिक और दार्शनिक विरासत का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे दुनिया भर के लोग सारनाथ आने और भगवान बुद्ध के आदर्शों से जुड़ने के लिए प्रेरित होंगे। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि सारनाथ मानवता के लिए भारतीय सभ्यता के गहन आध्यात्मिक और दार्शनिक योगदान को दर्शाता है। ओडिशा के पवित्र नगर पुरी में ग्रैंड रोड पर भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की भव्य रथ यात्रा देश विदेश से आए श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पुरी में ग्रैंड रोड पर अपने शानदार रथों पर विराजमान भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा आज पवित्र सुना वेश, स्वर्ण वेश में बेहद भव्य लग रहे हैं। उन्होंने बेहद खूबसूरती से बने मुकुट, हार, बाजूबंद, झुमके और अन्य पारंपरिक आभूषण पहने हैं। सालाना रथ यात्रा की सबसे भव्य रस्मों में से एक इस पवित्र स्वर्ण वेश के दर्शन के लिए आम लोगों को आधी रात तक का समय मिलने का उम्मीद है, जिससे लाखों भक्त इन तीनों पवित्र देव रूपियों की दिव्य भव्यता के दर्शन कर सकेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
0: लद्दाख में 27वें करगिल विजय दिवस समारोह का पहला दिन आज शाम द्रास स्थित करगिल युद्ध स्मारक पर आयोजित शौर्य संध्या समारोह के साथ संपन्न हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्रास पहुंचे और समारोह में शामिल हुए। समारोह के दौरान रक्षा मंत्री ने करगिल शहीदों के परिजनों को श्रद्धांजलि अर्पित कर ऑपरेशन विजय के वीर योद्धाओं के सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। आकाशवाणी कल करगिल विजय दिवस के अवसर पर पर्सन बिहाइंड द स्टोरी श्रृंखला के अंतर्गत करगिल युद्ध के वयोवृद्ध और भारत के पहले ब्लेड रनर मेजर डीपी सिंह से बातचीत प्रसारित करेगा। कार्यक्रम का प्रसारण कल दोपहर 12:30 बजे 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर होगा। आप इसे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। भारत की पहली हाइड्रोजन चालित रेलगाड़ी ने 1200 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय की है। इससे 3000 लीटर से अधिक डीजल की खपत कम हुई है। इस रेलगाड़ी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 जुलाई को जींद और सोनीपत के बीच रवाना किया था। ये परियोजना भारतीय रेलवे के नेतृत्व में एक स्वदेशी पहल है। राजस्व खुफिया निदेशालय ने सोने की तस्करी करने वाले गिरोह के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 27 किलो से अधिक विदेशी सोना जब्त किया है और 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस सप्ताह देशभर में खुफिया जानकारी के आधार पर कई अभियान चलाए गए। मौसम विभाग ने मध्य

और ओडिशा में कल अत्यधिक वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा में भी अगले 2 दिन के दौरान तेज बारिश की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उत्तराखंड, पश्चिमी राजस्थान और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कल तेज वर्षा होने की आशंका है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिककाल में सोमवार तक बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ बारिश का पूर्वानुमान है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने असम में बाढ़ से हुई जानमाल की हानि और तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने इस आपदा से प्रभावित सभी लोगों की सुरक्षा और बचाव, राहत और पुनर्वास कार्यों में लगे सभी कर्मियों के कुशल मंगल की कामना की। उन्होंने आश्वासन दिया कि पूरा देश असम के लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है। और अब बात खेलों की। हरारे में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने जिम्बाब्वे को 90 रन से हरा दिया है। 220 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए जिम्बाब्वे की टीम 18वें ओवर में 129 रन पर सिमट गई। ईशान किशन ने शानदार 81 रन की पारी खेली और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत ने 2-0 की बढ़त बना ली है। अनाहत सिंह ने इतिहास रचते हुए विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली है। फाइनल में उनका सामना आज रात मिस्र की रुकैया सलीम से होगा। अनाहत सिंह जोशना चिनप्पा के बाद इस प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। कॉकरोच जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह के साथ बातचीत और सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद विरोध प्रदर्शन तत्काल प्रभाव से समाप्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना। उत्तर प्रदेश में सारनाथ के प्राचीन बौद्ध स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। और हरारे में भारत ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 90 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: warning for extremely heavy rainfall tomorrow over Madhya Maharashtra and Odisha. Heavy to very heavy rainfall conditions are also likely to prevail over Chhattisgarh, Gujarat, Konkan and Goa during the next 2 days. The weather department said coastal Andhra Pradesh, East Madhya Pradesh, Gangetic West Bengal, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Ladakh, Jharkhand, Uttarakhand, West Rajasthan and parts of Northeast India are expected to witness heavy rainfall conditions tomorrow. In men's cricket, India defeated hosts Zimbabwe by 90 runs in the second T20 international of the three-match series in Harare. With this win, the men in blue have registered an unassailable 2-0 lead in the series. A report.
1: This win for the men in blue marks the first series win under the captaincy of new T20 skipper Shreyas Iyer. Chasing a huge target of 220 runs set by India, Zimbabwe got bundled out for just 129 runs in the 18th over. India's batting all-rounder Abhishek Sharma impressed with his bowling skills and bagged 3 wickets. Moreover, debutant Yash Thakur and Prince Yadav each picked up 2 wickets. Earlier, after being invited to bat first, India posted 219 for 5 in stipulated 20 overs, riding on Ishan Kishan's 81 runs of just 44 balls. Tilak Verma also contributed crucial 60 runs in just 29 deliveries and remained unbeaten at the crease. Chirag Jha from Sports Desk.
0: In Ladakh, the first day of the 27th Kargil Vijay Diwas commemorations concluded with the solemn Shaurya Sandhya ceremony at the Kargil War Memorial in Dras this evening. Defence Minister Rajnath Singh arrived in Dras and participated in the ceremony. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Union Education Minister Dharmendra Pradhan resigns. CJP calls off protests as government agrees to their demands after talks with Union Ministers JP Nadda and Dr. Jitendra Singh. Prime Minister Narendra Modi to share his thoughts in Man Ki Baat program on Akashwani tomorrow. President Draupadi Murmu concludes her three-nation visit to Moldova, North Macedonia and Romania. Ancient Buddhist site of Sarnath in Uttar Pradesh added to UNESCO World Heritage List. And in cricket, India beat hosts Zimbabwe in second T20 international by 90 runs in Harare. That is all in the news at 9. Good night.
2: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं शबाना बेगम। मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। सीजेपी ने एहतजाज खत्म कर दिया है क्योंकि नई दिल्ली में मरकजी वुजरा जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ मुजाकरात के बाद उनके मुतालबात को हुकूमत ने मंजूर कर लिया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने मोल्डोवा, शिमाली मकदूनिया और रोमानिया का 3 मुल्कों का अपना दौरा मुकम्मल कर लिया है। उत्तर प्रदेश में सारनाथ के कदीम बौद्ध मजहबी मकाम को यूनेस्को की आलमी सकाफती फहरिस्त में शामिल किया गया है। और क्रिकेट में भारत ने हरारे में दूसरे T20 बैन अलावामी मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 90 रन से शिकस्त दी। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा वजीर आजम नरेंद्र मोदी को सौंपा। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब प्रधान ने कहा कि तलबा के एहतजाज के बाद गुज़िश्ता 10 दिन से जारी सूरत हाल से उन्हें दुख पहुंचा है। उन्होंने कहा कि उनके लिए यह अना का मामला नहीं था। उन्होंने कहा कि उन्होंने नई दिल्ली जंतर मंतर और पूरे मुल्क की सूरत हाल को मद्देनजर रखा। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क की खिदमत उनकी जिंदगी की अव्वलीन तरजीह रही है और वह हमेशा इस बात पर अहद बस्ता रहेंगे। जनाब प्रधान ने कहा कि 16 जुलाई को ऐलान किए गए नीट यूजी नतायज इत्मीनान बख्श थे। इनमें कमजोर तबकों से वाबस्ता कई तलबा ने इम्तियाजी कामयाबी हासिल की। जनाब प्रधान ने कहा कि अलबत्ता ऐसे वक्त में भी जिम्मेदार ओहदों पर फायज अफराद ने रुकावटें पैदा करने की कोशिश की और तलबा को गुमराह किया। उन्होंने कहा कि इन बातों से उन्हें गहरी तकलीफ पहुंची है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी नए वजीर तालीम होंगे। जनाब जोशी को उनके मौजूदा कलमदान के साथ साथ वजारत

0: तालीम का चार्ज सौंपा गया है। जनाब जोशी, इस वक्त सारिफिन के उमूर, खुराक और अवामी निज़ाम तकसीम नेज नई और काबिल तजदीद तवानाई के वजीर के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने वुजरा की मरकजी कौंसिल से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। सीजेपी ने हुकूमत के जरिए अपने मुतालबात पूरे किए जाने के बाद अपना एहतजाज खत्म कर दिया है। मरकजी वुजरा जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज सीजेपी के वफद के साथ तीसरे दौर की बातचीत की, जिसमें इम्तहान के निजाम में असलाहत और पेपर लीक को रोकने के इकदाम के लिए उसके मुतालबात पर तवज्जो मरकूज की गई। बाद में नई दिल्ली में सीजेपी के वफद के साथ एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनाब नड्डा ने कहा कि मीटिंग के दौरान हुकूमत ने सीजेपी के उन मुतालबात से इत्तेफाक किया है कि एहतजाज करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई और ना ही उनके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए।
1: सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी एक्शन एफआईआर न हो, और अगर है तो वो विड्रॉ हो, और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा। इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं, उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है।
0: सीजेपी के चीफ तर्जुमान सौरव दास ने इस उम्मीद का इजहार करते हुए एहतजाज खत्म करने का ऐलान किया कि जिन उमूर पर इत्तेफाक हुआ है उन पर मुतफक्का वक्त की मुद्दत में अमल दरामद किया जाएगा। नीट यूजी पेपर लीक के बाद खुदकुशी करने वालों के कुनबों को मुआवजे देने के मामले पर जनाब नड्डा ने कहा कि इस जिम्न में हुकूमत को पूरी हमदर्दी है और वो उसूल जवाबित के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा मुआवजा फराहम करने को यकीनी बनाएगी।
1: कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस, व्हाट एवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल, दैट विल बी गिवन टू देम।
0: इस दौरान सीजेपी के कौमी तर्जुमान आशुतोष रांका ने तमाम एहतजाज करने वालों से अपील की है कि वो फौरी तौर पर एहतजाज खत्म करें और पुरअमन तरीके से अपने घरों को वापस लौट जाएं।
2: तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं, और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे।
0: लोकसभा में हज़्ब इख्तलाफ के लीडर और कांग्रेस के रुकन पार्लियामान राहुल गांधी ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो मुल्क के तालीमी निज़ाम में इस्लाहात के लिए ठोस इकदामात करे। आज शाम नई दिल्ली में मीडिया से खिताब करते हुए उन्होंने मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को तालिब इल्मों की जीत करार दिया। दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के तमाम स्टेशन अब मुसाफिरों की खिदमात के लिए खुल गए हैं। इससे कबल दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC ने सिक्योरिटी वजूहात के बाइस 18 मेट्रो स्टेशंस को बंद कर दिया था। असम में सैलाब की सूरत हाल बदस्तूर संगीन बनी हुई है और तकरीबन 1,15,000 लोगों ने इमदादी कैंपों में पनाह ली हुई है। शिवसागर, चराइदियो और जोरहाट सैलाब से सबसे ज्यादा मुतासिर हैं। सैलाब से मजीद 14 लोगों के अमवात की खबर है, जिससे रियासत में हलाक होने वालों की कुल तादाद 61 हो गई है। मुतासर इलाकों में राहत और बचाव कार्रवाइयां जारी हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आसाम में सैलाब से इंसानी जानों के नुकसान और उससे होने वाली तबाही पर दुख का इजहार किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्वा सरमा से टेलीफोन पर बात की और रियासत में सैलाब की सूरत हाल का जायजा लिया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क लोगों से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये महाना रेडियो प्रोग्राम का 136वां नशरिया होगा। ये प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन के तमाम नेटवर्क्स, AIR न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी नशर होगा। इसे AIR न्यूज, DD न्यूज, वजीर आजम के दफ्तर और इत्तलात नशरियात की वजारत के YouTube चैनलों पर बराह रास्त सुना जा सकेगा। हिंदी नशरिए के फौरन बाद आकाशवाणी से इस प्रोग्राम को इलाकाई जबानों में नशर किया जाएगा।

0: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू का रोमानिया का सरकारी दौरा मुकम्मल हो गया है और वो आज तीसरे पहर नई दिल्ली के लिए रवाना हो गई हैं। इससे कबल दिन में सदर जमहूरिया मुर्मू ने भारतीय बिरादरी के अराकीन के साथ बातचीत की। बुखारेस्ट में भारतीय बिरादरी के लिए मुनाकिदा एक इस्तकबालिया से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने रोमानिया में भारतीय बिरादरी के तआवुन की ये कहते हुए सताइश की कि वो दोनों मुल्कों के दरमियान बढ़ती हुई शराकत दारी के अहम सुतून हैं।
1: भारतीय प्रवासी समुदाय एकजुट होकर रोमानिया में भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए। भारतीय आईटी इंजीनियरिंग स्कॉलर्स रिसर्चर्स हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स तथा विद्यार्थियों की नई पीढ़ी अब रोमानिया को अपना घर बना रहे हैं। रोमानिया की अर्थव्यवस्था और समाज में अपना योगदान तथा यहाँ भारतीय संस्कृति और मूल्यों के प्रसार के लिए आपके प्रयास आपको भारत का सच्चा प्रतिनिधि बनाते हैं।
0: अपने दौरे के दौरान सदर जमहूरिया ने रोमानिया के अपने हम मनसब के साथ वसी मुजाकरात किए। उनका मकसद तिजारत, सरमायाकारी, दिफा, डिजिटल टेक्नोलॉजी, तालीम, काबिल तजदीद तवानाई और सकाफत के शोबों में बाहमी तआवुन को मुस्तहकम करना था। सदर जमहूरिया मुर्मू ने रोमानिया के वजीर आजम और पार्लियामानी लीडरों से भी मुलाकात की। नीज भारत रोमानिया कारोबारी फोरम से खिताब किया। उन्होंने अननोन सोल्जर मकबरे पर खराज अकीदत पेश किया। उन्हें इक्तसादी मुतालियात की बुखारेस यूनिवर्सिटी के जरिए डॉक्टरेट की एजाजी डिग्री से नवाजा गया। ये एजाज उन्हें अवामी खिदमत और भारत रोमानिया ताल्लुकात में उनके खिदमत के मद्देनजर दिया गया है। रोमानिया सदर जमहूरिया मुर्मू के तीन रोजा सरकारी दौरे का आखिरी मरहला था। तीन मुल्कों के इस दौरे में मोल्डोवा और शिमाली मकदूनिया का दौरा भी शामिल था। उत्तर प्रदेश का कदीमी बौद्ध मजहबी मकाम सारनाथ यूनेस्को की आलमी मीरास की फहरिस्त में शामिल हो गया है। आज जनूबी कोरिया के बुसान में आलमी मीरास से मुतालिक कमेटी के 48वें इजलास के दौरान इसे बाजाब्ता शामिल किया गया। आलमी मीरास की सरकर्दा फहरिस्त में भारत की ये 45वीं इमलाक है। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधा कृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सारनाथ को आलमी मीरास की फहरिस्त में शामिल किए जाने पर मसर्रत का इजहार किया है और इसे हर भारतीय के लिए फख्र का एक लम्हा करार दिया है। नायब सदर ने कहा कि सारनाथ अमन, दानिशमंदी और हमदर्दी की एक लाजवाल अलामत रहा है जिससे भारत के रूहानी और फलसफियाना दायमी विरसे की अक्कासी होती है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि इसे फहरिस्त में शामिल किया जाना मुल्क की तहजीबी और रूहानी विरासत का जश्न है। सकाफत और सियाहत के वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसे भारतीय सकाफती विरासत के लिए एक अहम लम्हा करार दिया है। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी के ग्रैंड रोड पर भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा सोना बेशा यानी सोने से तैयार मलबूसात के साथ रथ पर सवार देखे जा सकते हैं। रिवायती खूबसूरत जेवरास्ते आरास्ता इन देवी देवताओं के दर्शन के लिए पूरे मुल्क और बैरून मुल्क से बड़ी तादाद में अकीदतमंद मौजूद हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
2: भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा आज सोनावेशा में निहायत शान शौकत के साथ रथ पर सवार हैं, जो खूबसूरत ताज, हार, बाजूबंद, बालियां और दीगर रिवायती जेवरात से आरास्ता हैं और ये तकरीबन 208 किलोग्राम सोने और दीगर कीमती जवाहरात से तैयार किए गए हैं। ये पवित्र सुनहरे लिबास, जो सालाना रथ यात्रा की अहम तरीन रसूमात में से एक है, अकीदतमंदों के दर्शन के लिए आधी रात तक जारी रहेगा। पूरा शहर अकीदत के जज्बे से सरशार है। इस तकरीब के पुरम इनेकाद के लिए सिक्योरिटी के खातिरखा इंतजाम किए गए हैं। भुवनेश्वर से प्रकाश दाश की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: मुल्क शाम की राजधानी दमिश्क को मशरकी सूबे दैरिल जोर से मरबूत करने वाली कौमी शाहरा पर दो बसों के आज आपस में टकराने के बाद कम अज कम 35 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। मकामी मीडिया ने खबर दी है कि सहराई शाहरा पर शहरियों की एक बस और दाखिली उमूर की वजारत की एक बस के दरमियान टक्कर में तकरीबन 30 अफराद जख्मी हुए हैं। इस हादसे की वजह अभी मालूम नहीं हुई है। भारतीय मौसमियात महकमे आईएमडी ने मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में कल इंतहाई शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। आइंदा दो रोज के दौरान छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा में भी शदीद से बहुत शदीद बारिश का इम्कान है। आईएमडी ने इस माह की 27 तारीख तक अंडमान और निकोबार जजायर, आंध्र प्रदेश, गंगा के तराई वाले मगरबी बंगाल, शिमाली अंदरूनी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी गरज चमक के साथ छींटे

बढ़ने और तेज हवाएं चलने की पेशगोई की है। मर्दों की क्रिकेट में हरारे में 3 मैचों की सीरीज के दूसरे T20 बैन अलावामी मैच में भारत ने मेजबान जिम्बाब्वे को 89 रन से हरा दिया। भारत ने जिम्बाब्वे को 220 रन का बड़ा निशाना दिया था, लेकिन उसकी पूरी टीम 18वें ओवर में महज 129 रन पर आउट हो गई। भारत के बल्लेबाज ऑलराउंडर अभिषेक शर्मा ने शानदार खेल का मुजाहिरा करते हुए 3 विकेट हासिल किए। अपना पहला मैच खेल रहे यश ठाकुर और प्रिंस यादव ने 2-2 विकेट लिए। इससे कबल पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने मुकर्रर 20 ओवर में 5 विकेट पर 219 रन बनाए थे। इस जीत के साथ भारतीय टीम ने 3 मैचों की सीरीज 2-0 से जीत ली है। भारत ने T20 के नए कप्तान सुरेश अय्यर की कप्तानी में पहली सीरीज जीती है। आज कनाडा के ओंटारियो में भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी अनहित सिंह ने मिस्र की बार्ब सामे को 3-1 से हराने के बाद आलमी जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के खवातीन सिंगल्स के फाइनल में पहुंचकर तारीख रकम की है। इसी मकाम पर अब उनका सामना खिताबी मुकाबले में मिस्र की रुकैया सलेम से होगा। इस मैच के भारतीय वक्त के मुताबिक रात तकरीबन 10:30 बजे शुरू होने का इम्कान है। अनहित सिंह तारीख में महज दूसरी खिलाड़ी हैं जो जोशना चिनप्पा के बाद इस सरकर्दा खिताबी मुकाबले में पहुंची हैं। और अब आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। सीजेपी ने एहतजाज खत्म कर दिया है क्योंकि नई दिल्ली में मरकजी वुजरा जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ मुजाकरात के बाद उनके मुतालबात को हुकूमत ने मंजूर कर लिया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मोल्डोवा, शिमाली मकदूनिया और रोमानिया का 3 मुल्कों का अपना दौरा मुकम्मल कर लिया है। उत्तर प्रदेश में सारनाथ के कदीम बौद्ध मजहबी मकाम को यूनेस्को की आलमी सकाफती फहरिस्त में शामिल किया गया है। और क्रिकेट में भारत ने हरारे में दूसरे T20 बैन अलावामी मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 90 रन से शिकस्त दी। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

فأتت به قومها تحمل.

0: हाँ इसकी रंग लगती है।
1: तो हमने तो देखा ना, मेरे सामने ये असाइनमेंट पे काम करता था मैम, ये जर्नलिस्ट वाला काम ही करता था, ही वॉज ऑन असाइनमेंट कि हाँ ये कैमरा यहाँ गया कि नहीं, ये यूनिट यहाँ गई कि नहीं, वो रिपोर्टर वहाँ पहुँचा कि नहीं, ये फुटेज आई कि नहीं, ये स्क्रिप्ट आई कि नहीं, ये गेस्ट को बुलाओ वो उसको बस।
0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना त्याग पत्र सौंप दिया। श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिनों से छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति से व्यथित हैं। उन्होंने कहा कि उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। श्री प्रधान ने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठा सकें, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को त्यागपत्र सौंपने का निर्णय लिया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का 10 साल का सफर सार्वजनिक जीवन और विद्यार्थी कल्याण के प्रति आजीवन समर्पण का प्रमाण है। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि श्री प्रधान ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सफल कार्यान्वयन और अन्य पहल द्वारा के माध्यम से भारत की शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री प्रधान का मंत्रिपरिषद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से मंजूर कर लिया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी शिक्षा मंत्री होंगे। उपभोक्ता कार्य, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी ने सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद आंदोलन तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की तीसरे दौर की वार्ता के बाद सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने लोगों से शांतिपूर्वक घर लौटने की अपील की। श्री नड्डा ने कहा कि सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने की मांग स्वीकार कर ली है। नीट यूजी पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजा के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार नियम अनुसार अधिकतम मुआवजा सुनिश्चित करेगी।
2: कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम।
0: परीक्षा सुधारों पर सीजेपी के 5 सूत्री प्रस्ताव पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करेगी। सरकार सोमवार को लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षाएं अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक सदन के सोमवार के कामकाज सूची में शामिल है। इस विधेयक का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ये विधेयक पेश करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 136वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। सिक्किम में नाथुला मार्ग से कैलाश मानसरोवर यात्रियों का 5वां जत्था माउंट कैलाश और मानसरोवर झील की पवित्र यात्रा पूरी कर गंगटोक सुरक्षित लौट आया है। यात्रा के सफल समापन के उपलक्ष्य में सिक्किम पर्यटन विकास निगम लिमिटेड ने शनिवार को गंगटोक में सम्मान समारोह आयोजित किया। आंध्र प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी विवेक यादव ने बताया है कि मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण में 15,22,000 मृत मतदाताओं और 14,43,000 ऐसे मतदाताओं की पहचान की गई है जो स्थायी रूप से दूसरे निर्वाचन क्षेत्रों में चले गए हैं। इसके अलावा 7,37,000 ऐसे मतदाता पाए गए हैं जिनका नाम एक से अधिक जगह दर्ज है। आज जारी प्रेस विज्ञप्ति में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 3,71,00,000 मतदाताओं के गणना प्रपत्र प्राप्त हुए हैं जो राज्य के कुल 4,16,00,000 मतदाताओं का 89.22% है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: do have registered an unassailable 2-0 lead in the series. And that is the end of this news bulletin.
1: स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक 1:10 हो गया है, जो अब वक्त हो गया है कार्यक्रम गीत सुनहरे का। आइए सुनते हैं कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में ये गीत।

साथियों, अभी आपने सुना फिल्म खुदा गवाह से कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में ये गीत, और आइए अब आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत आशा भोसले की आवाज़ में।

साथियों, अभी आपने सुना फिल्म मौसम से यह खूबसूरत सा गीत, और गाया था लता मंगेशकर और भूपेंद्र ने। आइए फिल्म से गाना सुनते हैं। फिल्म है उत्सव, और गायक हैं सुरेश वाडकर और अनुराधा पौडवाल।

अभी आपने सुना फिल्म एतबार से इस गीत को, गायक भूपेंद्र और लता मंगेशकर। और आइए अब अगला गीत सुनते हैं फिल्म सिलसिला से, गायक अमिताभ बच्चन और लता मंगेशकर।

मैं और मेरी तन्हाई, अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है या तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

0: आइए अगला गीत सुनते हैं, फिल्म आंधी से, गायक किशोर कुमार और लता मंगेशकर।
1: और सर्दी की बात थी।
2: शायद उन दिनों की बात होगी जब ये इमारत अभी उजड़ी नहीं थी।
1: हाँ? पिछले किसी जन्म की बात ही तो लगती है।
2: एक काम करें, जब तक तुम यहां हो रोज घर पे खाने के लिए तो आया ही करोगी, खाने के बाद घूमने निकल आया करेंगे। कम से कम ये इमारत कुछ दिनों के लिए तो बस जाएगी। तुम्हारी शॉल कहाँ है?
1: भूल गई ना ना।
2: तुम नहीं बदलोगी,

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे
1: कहाँ आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है।
2: तो अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत सुनहरे, और अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना त्याग पत्र सौंप दिया। श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिनों से छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न

0: स्थित से व्यवस्थित हैं। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। श्री प्रधान ने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठा सके, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को त्यागपत्र सौंपने का निर्णय लिया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का 10 साल का सफर सार्वजनिक जीवन और विद्यार्थी कल्याण के प्रति आजीवन समर्पण का प्रमाण है। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि श्री प्रधान ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सफल कार्यान्वयन और अन्य पहल के माध्यम से भारत की शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री प्रधान का मंत्रिपरिषद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से मंजूर कर लिया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी नए शिक्षा मंत्री होंगे। उपभोक्ता कार्य, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। कांग्रेस जनता पार्टी CJP ने सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद आंदोलन तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की तीसरे दौर की वार्ता के बाद CJP प्रवक्ता आशुतोष रांका ने लोगों से शांतिपूर्वक घर लौटने की अपील की। श्री नड्डा ने कहा कि सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने की मांग स्वीकार कर ली है। नीट UG पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजे के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार नियमानुसार अधिकतम मुआवजा सुनिश्चित करेगी।
1: कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम।
0: परीक्षा सुधारों पर CJP के 5 सूत्री प्रस्ताव पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करेगी। सरकार सोमवार को लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षाएं अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक सदन के सोमवार के कामकाज सूची में शामिल है। इस विधेयक का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ये विधेयक पेश करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम का 136वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में अधिकारियों द्वारा संचार सेवाएं लगातार ठप करने, मनमाने ढंग से लोगों को गिरफ्तार करने और उनकी आवाजाही पर कड़ी पाबंदी लगाने पर गहरी चिंता व्यक्त की है। चीन में ग्वांगडोंग प्रांत में शक्तिशाली तूफान नोल के तट के समीप पहुंचने पर शनिवार शाम 4 बजे तक 340,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। इसकी तीव्रता सामान्य से लेकर भीषण हो सकती है। सिक्किम में नाथुला मार्ग से कैलाश मानसरोवर यात्रियों का 5वां जत्था माउंट कैलाश और मानसरोवर झील की पवित्र यात्रा पूरी कर गैंगटोक सुरक्षित लौट आया है। यात्रा के सफल समापन के उपलक्ष्य में सिक्किम पर्यटन विकास निगम लिमिटेड ने शनिवार को गैंगटोक में सम्मान समारोह आयोजित किया। दिल्ली में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तहत गणना प्रपत्रों के डिजिटाइजेशन का काम 46 लाख का आंकड़ा पार कर गया। घर घर जाकर फॉर्म वितरण का काम भी लगभग पूरा हो गया है और तकरीबन सभी मतदाताओं को फॉर्म मिल गए हैं। हरारे में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने जिम्बाब्वे को 90 रन से हरा दिया है। जीत के लिए 220 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए जिम्बाब्वे की टीम 18 ओवर में 129 रन पर सिमट गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। Union Education Minister Dharmendra Pradhan has resigned and tendered his resignation to Prime Minister Narendra Modi. In a social media post, Mr. Pradhan said that he was pained by the prevailing situation.

0: तो अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत बहार, और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना त्याग पत्र सौंप दिया। श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिनों से छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति से वे व्यथित हैं। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। श्री प्रधान ने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठा सके, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को त्यागपत्र सौंपने का निर्णय लिया है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का 10 साल का सफर सार्वजनिक जीवन और विद्यार्थी कल्याण के प्रति आजीवन समर्पण का प्रमाण है। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि श्री प्रधान ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सफल कार्यान्वयन और अन्य पहल के माध्यम से भारत की शिक्षा व्यवस्था में

0: महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री प्रधान का मंत्रिपरिषद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से मंजूर कर लिया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी नए शिक्षा मंत्री होंगे। उपभोक्ता कार्य, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। कांग्रेस जनता पार्टी CJP ने सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद आंदोलन तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की तीसरे दौर की वार्ता के बाद CJP प्रवक्ता आशुतोष रांका ने लोगों से शांतिपूर्वक घर लौटने की अपील की। श्री नड्डा ने कहा कि सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने की मांग स्वीकार कर ली है। नीट UG पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजे के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार नियम अनुसार अधिकतम मुआवजा सुनिश्चित करेगी।
1: कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम।
0: परीक्षा सुधारों पर CJP के 5 सूत्री प्रस्ताव पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करेगी। सरकार सोमवार को लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षाएं अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक सदन के सोमवार के कामकाज सूची में शामिल हैं। इस विधेयक का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ये विधेयक पेश करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 136वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। सिक्किम में नाथुला मार्ग से कैलाश मानसरोवर यात्रियों का 5वां जत्था माउंट कैलाश और मानसरोवर झील की पवित्र यात्रा पूरी कर गैंगटोक सुरक्षित लौट आया है। इस यात्रा के सफल समापन के उपलक्ष्य में सिक्किम पर्यटन विकास निगम लिमिटेड ने शनिवार को गैंगटोक में सम्मान समारोह आयोजित किया। उत्तर प्रदेश के सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसे हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण बताया है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में अधिकारियों द्वारा संचार सेवाएं लगातार ठप करने, मनमाने ढंग से लोगों को गिरफ्तार करने और उनकी आवाजाही पर कड़ी पाबंदी लगाने पर गहरी चिंता व्यक्त की है। चीन में ग्वांगडोंग प्रांत में शक्तिशाली तूफान नोल के तट के समीप पहुंचने पर आज शाम 4 बजे तक 340,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। हरारे में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने जिम्बाब्वे को 90 रन से हरा दिया है। जीत के लिए 220 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए जिम्बाब्वे की टीम 18वें ओवर में 129 रनों पर सिमट गई। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल पर अभी आप सुन रहे थे गीत और गजल का कार्यक्रम। सुबह के 4 बजने को है, आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम अर्चना।
1: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

त्रिशिव पुरेश सुप्रभातम सुनिए। रचना ज्ञानानंद सरस्वती की है, स्वर दिया है पारसाला पुन्नमाल ने।

0: इसी के साथ अर्चना कार्यक्रम संपन्न होता है।
1: श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल पर अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम अर्चना। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक वक्त हो चला है 4:20 और 11 सेकेंड और ये वक्त है कार्यक्रम नाद ब्रह्म का। इसके अंतर्गत लीजिए सुनिए SR जानकी रमन की प्रस्तुति।

आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल पर अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नाद ब्रह्म। इसके अंतर्गत अभी आपने एस आर जानकी रमन की प्रस्तुति सुनी। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आज रविवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की चौथी तिथि, तदनुसार 26 जुलाई 2026। सुबह के 4:53 और 40 सेकेंड हुए हैं। अब हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आइए आपको आगे प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दें।

5:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आओ योग करें। इसके अंतर्गत आज आप अश्वत्थासन और तितली क्रिया के बारे में जानेंगे। 5:20 का वक्त होगा देशभक्ति गीत का।

5:30 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम स्वर रंजनी, जबकि 6 बजे का वक्त होगा हिंदी में समाचार का, और 6:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार।

0: सुबह के 5 बजने वाले हैं, आइए सुनते हैं हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट तथा न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी इस कार्यक्रम का प्रसारण विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में भी करेगा। प्रधानमंत्री मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 के प्रतिभागियों से बातचीत करेंगे। इस अवसर पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 400 से अधिक युवा प्रतिभागी प्रधानमंत्री से बातचीत करेंगे। विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का आयोजन पिछले महीने की 4 से 30 तारीख तक 2 चरणों में किया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोल्दोवा, उत्तर मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा संपन्न कर आज नई दिल्ली लौट आई हैं। यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ने 3 देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता की और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने के साथ साथ व्यापार, शिक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, नवाचार और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। ये मोल्दोवा और उत्तर मैसेडोनिया की किसी भारतीय राष्ट्रपति की पहली राजकीय यात्रा थी। रोमानिया में बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज ने राष्ट्रपति को मानद सम्मान से भी सम्मानित किया। सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक सोमवार के लिए लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत करेंगे। इसका उद्देश्य लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्नपत्र लीक और परीक्षा में अनियमितताओं के मामलों में त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना तथा

0: कांग्रेस जनता पार्टी सीजीपी ने सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद आंदोलन तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की तीसरे दौर की वार्ता के बाद सीजीपी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने लोगों से शांतिपूर्वक घर लौटने की अपील की। नीट यूजी पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजा के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार नियम अनुसार अधिकतम मुआवजा सुनिश्चित करेगी।
1: कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम।
0: केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी नए शिक्षा मंत्री होंगे। उपभोक्ता कार्य, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। उन्हें धर्मेंद्र प्रधान की जगह शिक्षा मंत्री का कार्यभार सौंपा गया है। सिक्किम में नाथुला मार्ग से कैलाश मानसरोवर यात्रियों का पांचवा जत्था माउंट कैलाश और मानसरोवर झील की पवित्र यात्रा पूरी कर गंगटोक सुरक्षित लौट आया है। यात्रा के सफल समापन के उपलक्ष्य में सिक्किम पर्यटन विकास निगम लिमिटेड ने शनिवार को गंगटोक में सम्मान समारोह आयोजित किया। उत्तर प्रदेश के सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसे हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण बताया है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में अधिकारियों द्वारा संचार सेवाएं लगातार ठप करने, मनमाने ढंग से लोगों को गिरफ्तार करने और उनकी आवाजाही पर कड़ी पाबंदी लगाने पर गहरी चिंता जताई। भारतीय सब जूनियर पुरुष टीम ने मस्कट में आयोजित एफआईएच यूथ हॉकी 5 एशियाई चैंपियनशिप 2026 के फाइनल में चीर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 1-3 से हराकर चैंपियनशिप जीत ली है। और हरारे में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने जिम्बाब्वे को 90 रन से हरा दिया है। जीत के लिए 220 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए जिम्बाब्वे की टीम 18वें ओवर में 129 रनों पर सिमट गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, मैं योगाचार्य सुनील गौतम ऐसे आसन के बारे में बात करेंगे जिसको करने से हमारी कमर का दर्द दूर होता है। किसी भी प्रकार के कार्य को करते हुए, ऑफिस में बैठे हुए चेयर पर, पढ़ाई करते हुए, किचन में काम करते हुए हम थकान अनुभव करने लगते हैं, पीठ में अकड़न या जकड़न अनुभव करने लगते हैं, तो इस आसन का अभ्यास ऑफिस में भी किसी भी कार्य स्थिति में होते हुए थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाएं, एक दो लंबी गहरी श्वास भरें, दोनों हथेलियां थाइस के बराबर में रखें और श्वास भरते हुए धीरे धीरे बाएं हाथ को सीधा ऊपर उठाएं, कान के बराबर में ले जाएं, श्वास छोड़ते हुए दाहिना हाथ 90 डिग्री पर अपने कंधे की सीध में लाएं, पुनः श्वास भरते हुए दाहिना पांव, यानी कि जो पैर हम जो हाथ साइड में किया है उसी पांव को पीछे ले जाना है, धरती से ऊपर उठाना है बिना मोड़े यथासंभव, और तीन लंबी गहरी श्वास लें। चेस्ट ऊपर की ओर फूली हुई रहेगी, गर्दन हल्का सा पीछे की ओर, हाथ भी पीछे की ओर, और पूरे पीठ में तनाव अनुभव करें। अनुभव करेंगे लोअर बैक में इमीडिएटली हमको तनाव आता है, अर्थात

पेन दर्द दूर करने में मदद मिलेगी। धीरे धीरे 3 श्वास पूरी होने के बाद वापस आएं और इसी आसन को दूसरी तरफ से दोहराएं, अर्थात श्वास भरते हुए दाहिना हाथ ऊपर की ओर सीधा ले जाएं, बायां हाथ 90 डिग्री कंधे के सीध में लाएं और बाएं पैर को पीछे की ओर ले जाएं, शरीर में तनाव देते हुए लंबी गहरी 3 श्वास का अभ्यास करें और उसी अवस्था में अभ्यास के दौरान लंबी गहरी श्वास प्रभाव को अनुभव करते रहें। कहां शरीर के किस भाग पर इम्पैक्ट है, प्रभाव है, और धीरे धीरे 3 श्वास के बाद श्वास छोड़ते हुए वापस अपनी पुरानी स्थिति में आ जाए। यह हुई हमारी 1 आवृत्ति। इसी आवृत्ति को 2-3 बार दोहरा लें तो देर तक बैठे रहने की थकान, कमर का दर्द दूर हो जाएगा। बल्कि मैं सबको सलाह देना चाहूँगा जो विद्यार्थी हैं, पढ़ने लिखने का काम करते हैं, जो ऑफिस में बैठकर लिखाई, कंप्यूटर, कोई भी काम करते हैं, और मेरी माता बहनें जो किचन में काम करते करते कमर में दर्द कर लेती हैं, वो कभी भी इस आसन को अवश्य दोहराएं। आपका कमर का दर्द निश्चित रूप से दूर होगा और लंबी गहरी श्वास से आपका शरीर और मन स्वस्थ व शांत रहेगा। धन्यवाद।

नमस्कार, मैं योगाचार्य सुनील गौतम हापुड़िया। आज बात करेंगे सबसे सरल और आवश्यक योग क्रिया की। योग में आसन भी होते हैं, क्रियाएं भी होती हैं। जहां स्थिरता आती है वहां आसन होते हैं, और जहां मूवमेंट रहता है वहां क्रिया होती है। तो आज एक ऐसी क्रिया के बारे में बात करने जा रहे हैं।